आवा गौण मिटै गुर शब्दी आपे परखे बख्श लया एका बेदन दूजै व्यापी नाम रसायन विसरिया सो बूजै जिस आप बुझाए गुर कै शब्द सो मुक्त पाया नानक तारे तार नहारा हम मैं दूजा पर हरिया मनमुख पूलै जमकी कान पार कर जो है हाणे हाण मनमुख परम पवै बेबाण वे मार्ग मूसै मंत्र मसान शब्द ना चीनै लवै कुबाण नानक साचर ते सुख जान गुरमुख साचे का पौ पावै गुरमुख बाणी अगड़गड़ावै गुरमुख निर्मल हर गुण गावै गुरमुख पवित्र परम पद पावै गुरमुख रोम रोम हर त्यावै नानक गुरमुख साज समावै गुरमुख परचै वेद विचारी गुरमुख परचै तरियै तारी गुरमुख परचै सो शब्द ज्ञानी गुरमुख परचै अंतर विद जानी गुरमुख पाईऐ अलख अपार नानक गुरमुख मुक्त द्वार गुरमुख अकथ कथै विचार गुरमुख निभै सब परवार गुरमुख जपियै अंतर प्यार गुरमुख पाईऐ शब्द आचार शब्द भेद जाने जानाई नानक हौं मैं जाल समाई गुरमुख तरती साचै साजी तिसमै ओपत खपत सो बाजी गुर कै शब्द रपै रंग लाए साच रतौ पत स्यों कर जाए साच शब्द बिन पत नहीं पावै नानक बिन नामै क्यों साच समावै गुरमुख अष्टो सिद्धि सब बुद्धि गुरमुख पव जल तरियै सच सुद्धि गुरमुख सारे अवसर बिद जाणै गुरमुख पर विरत नर विरत पछाणै गुरमुख तारे पारो तारे नानक गुरमुख शब्द निस्तारे।

सुन शब्द अपरंपर तोहार है, कहते मुक्त शब्द निस्तार है। गुर की दीखिया से सच राते, नानक आप गवाए मिलन नहीं प्राते। कबुद चवावे सो कित ठाए, क्यों तत ना बूझे चोटा खाए। जम दरबा दे कोई न रखे, बिन शब्द नाही पत साख। क्यों कर बुझे पावे पार, नानक मन खना बुझे गवार। कबुद मिटे गुर शब्द विचार।

आए अंबे से पी अंबर लिया बहुड़ नानक से आ जाए। नानक गुरमुख चलत है वेखो लुका आए। लोक के वेखे बपड़ा जिसनों सोजी ना आए। जिस वे खाले सो वेखे जिस वसिया मन माहे। महला तीजा मन मुख दुख का खेत है। दुख बीजे दुख खाए दुख विच जमे दुख मरे होमे करत विहाए। आवन जान ना सुजई अंधा अंध कुमाए। जो देवे तिसे ना जानई दिते को लपटाए। नानक पूर्व लिखिया कमावना अवरना करना जाए। महला तीजा सतगुर मिले सदा सुख जिसनो आपे मिले सोए। सुख है एहो बबेक है अंतर निर्मल होए। अज्ञान का प्रम कटी है ज्ञान प्राप्त होए। नानक एको नदरी आया जै देखा तै सोए। पौड़ी सच्चे तख्त रचाया बैसन को जाई। सब किछ आपे आप है गुर शब्द सुनाई। आपे कुदरत साजियां नू कर महल सराई। चंद सूरज दोए चानने पूरी बणत बनाई। आपे वेखे सुने आप गुर शब्द ते आई। वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई।

अभ्यागत है ना आखिया न जे पर कर भोजन करे न उदर कारण अपने बहले पे करे न अभ्यागत से ही नानका जे आत्म गौण करे न पाल लहन सौ अपना निज कर रहन करे न पौड़ी अंबर तरत विछोड़िया न विच सच्चा असराओ कर दर सबो सच है जिस विच सच्चा नाओ सब सच्चा हुक्म वरतदा गुरमुख सच समाओ सच्चा आप तख्त सच्चा बह सच्चा करे न्याओ सब सचो सच वरतदा गुरमुख लख लखाई वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। श्लोक महला।

रैन आयर मह सब किश है, करमी पल्ले पाए, नानक नौ निद पाई है, जे चले तसैर जाए। महला तीजा, सहजे सतगुर ना सेवियो, विच होमै जन्म बिनास, रसना हरस ना चखियो, कमला होयो परगास। बिख खादी मन मुख मुआ, माया मोहे विनाश, एक सहर के नाम विण, त्रिग जीवन त्रिगवास। जा आपे नदर करे प्रभ सच्चा, ता होवै दासन दास। ताय अंदन सेवा करे सतगुरु की, कबै न छोड़ै पास। ज्यों जल मैं कमल अलिप तो वरतै, त्यों विचे ग्रह उदास। जन नानक करे कराया सबको, ज्यों पावै तिव हर गुणतास। पौड़ी छत्ती जोग वारसा, आपे गणत कीनी, आपे सिरट सब साजिया नो, आप मत दीनी। सिमरत शास्त्र साजियान, पापुन गणत गणिनी, जिस बुझाए सो बुझसी, सच्चे शब्द पतिनी। सब आपे आप वरतदा, आपे बख्स मिलाई, वाह वाह सच्चे पातशाह, तू सच्ची नाई। सलोक महला तीजा।

ज्यों बै संतर तात सुध होए, त्यों हर का पौ दुरमत मैल गवाए। नानक तेजन सोहने जो रते हर रंग लाए, महला तीजा। राम कली राम मन वसिया, ता बनिया सिंगार। गुर कै शब्द कमल बिकसिया, ता सौंपिया भगत भंडार। परम गया ता जागया, चूका अग्ञान आधार। तिसनो रूपया त्यागला, जिस हर नाल प्यार। सदा रवै पिर अपना, सोभावंती नार। मन मुख सिंगार न जाननी, जसन जन्म सभार। बिन हर भगती सिंगार करै, नित जमै होए खुआर। संसार विच सोभ ना पाए नी, अगै जे करे सो जाने करतार। नानक सच्चा एक है, दोह विच है संसार। चंगै मंदै आप लायन, सो करन जे आप कराए करतार। महला तीजा, बिन सतगुर सेवे सांत ना आवई, दूजी नाही जाए। जे बहु तेरा लोची है, बिन कर्मा पाया ना जाए। अंतर लोभ विकार है, दूजे पाए खुवाए। तन जम्मण मरण न चुकई, हम मैं विच दुख पाए। जिन्नी सतगुर स्यों चितलाया, सो खाली कोई ना है। तन जम की तलब ना हो वई, ना होए दुख सहाए। नानक गुरमुखी उबरे, सच्चे शब्द समाहे। पौड़ी आप अलिप्त सदा रह, होर तंदै सब तावै। आप नि चलिया चल है, होर आवै जावै। सदा सदा हर त्याई, गुरमुख सुख पावै। निज कर वासा पाई, सच सिफत समावै। सच्चा गहर गंभीर है, गुर शब्द बुझाई। वाह वाह सच्चे पातशाह, तू सच्ची नाई। श्लोक

नाम जपे नामो वारादे तिस जन कौ करो सब नमस्कार। मल कूड़ी नाम उतारियन जप नाम होआ सचियार। जन नानक जिस दे एह चलत है सो जीवो देवनहार। पौड़ी तुद जेवड़ दाता नाहे किस आख सुनाई है गुर प्रसादी पाए जिथों हम मैं जाई है। रस कस साधा बाहरा सच्ची वड़ियाई है जिसनों बख्शे तिस दे आप लै मिलाई है। घट अंतर अमृत रखियोन गुरमुख सह प्याई वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला तीजा बाबाणिया कहानिया पुत सपुत करेन जे सतगुर पावै सो मन लैन से ही कर्म करेन। जाए पुछो सिमरत शास्त ब्यास सुख नारद बचन सब सृष्ट करेन सच्चे लाए सच लगे सदा सच सामालेन। नानके आए से प्रवान पए जे सगले कुल तारेन। महला तीजा गुरु जिन्ना का अंदला सिख भी अंधे कर्म करेन ओए पाणे चलन अपने नित झूठो झूठ बोलेन कूड़ कुसत कमावदे पर निंदा सदा करेन। ओए आप डुबे पर निंदका सगले कुल डोबेन नानक जित ओए लाए तित लगे ओए बपड़े क्या करेन। पौड़ी सब नदरी अंदर रखदा जेती सिहट सब कीती एक कूड़ को सत लायन मनमुख वे गुती। गुरमुख सदा तिहाई है अंदर हर प्रीति जिनको पोतै पुन है तिन वात स्पीति। नानक नाम तिहाई है सच सिफत सुनाई वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला पहला सती पाप कर सत कमाहे गुर दीख्या कर देवन जाहे स्त्री पुरखे खटे पाओ पावे आवो पावे जाओ। सास्त वेदना माने कोए आपो आपे पूजा होए काजी होए कै बह न्याए फेरे तस्बी करे खुदाए। वड्डी लैके हक गवाए जे को पुछे ता पढ़ सुनाए तुरक मंत्र कन हृदय समाहे लोक मुहावे चाड़ी खाहे चौका देके सुचा होए ऐसा हिंदू वेखो कोए।

करै पुन दान का करे शरीर सो गृही गंगा का नीर। बोले ईश्वर सत स्वरूप परम तंत में रेख न रूप महला पहला। सो अवदूती जो तूपै आप पिखिया पूजन करै संताप। औहठ पटन में पिखिया करै सो अवदूती शिवपुर चढ़ै। बोले गोरख सत स्वरूप परम तंत में रेख न रूप महला पहला। सो उदासी जे पाले उदास अर्ध उर्ध करे निरंजन वास। चंद सूरज की

थम अहन से अंतर रहते आन ते बैरागी सत समान बोले परथर सत स्वरूप परम तंत में रेख न रूप महला पहला क्यों मरे मंदा क्यों जीवे जुगत कन पड़ाए क्या खाजे भुगत आस्त नास्त एको नाओ कौन सो अखर जित रह आओ धूप छाप जे सम

निरंकार जो रहे समाए, काहे पीखिया मंगण जाए। पौड़ी हर मंदिर सोई आखिया, जिथों हर जाता मानस देहे गुर बचनी पाया, सब आत्म राम पछाता। बाहर मूल ना खोजी है कर माहे विधाता, मन मुख हर मंदिर की सार ना जाननी, तिन्नी जन्म गवाता। सब मैं एक वर्तदा गुर शब्दी पाया जाई, वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला तीजा, मूर्ख होवे सो सुने, मूर्ख का कहना मूर्ख के क्या लखण है, क्या मूर्ख का करना। मूर्ख ओहो जे मुग्द है अहंकारे मरना, एतक माने सदा दुख दुखी मैं रहना। अत प्यारा पवे खूहे क्यों संयम करना, गुरमुख होए सो करे विचार ओस अलिप्तो रहना। हर नाम जपै आप उदर ओस पिछे डुबदे पी तरना, नानक जो तिस पावे सो करे जो दे सो सहना। महला पहला नानक या खैरे मना, सुनिए सिख सही लेखा रब मंगेसिया, बैठा कड वही तलबा पौसने किया बाकी जना रही। अजराइल फरेस्ता होसी आए तई, आवन जान न सुजई पीड़ी गली फही, कूड़ ने खुट्टे नानका ओड़क सच रही। पौड़ी हर का सब शरीर है, हर रवर या सब आपै, हर की कीमत ना पवै किश कहण ना जापै। गुर प्रसादी साला ही है हर भक्ति रापै, सब मंतन हरिया होया अहंकार गवापै। सब किश हर का खेल है, गुरमुख किसे बुझाई, वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला पहला सहंसर दान दे इंद्र रोवाया, परस राम रोवै घर आया। अजय सो रोवै पीखिया खाए, ऐसी दरगह मिले सजाए। रोवै राम निकाला पया, सीता लखमण विछड़ गया। रोवै दैसर लंक गवाए, जिन सीता आंदी डौरू वाए। रोवै पांडव पए मजूर, जिनके स्वामी रहत हदूर। रोवै जन्मे जा खोए गया, एकी कारण पापी पया। रोवै शेख मसा एक पीर, अंतकाल मत लागे पीड़। रोवै राजे कन पढ़ाए, कर कर मांगे पीखिया जाए। रोवै किरपन संचय तन जाए, पंडित रोवै ज्ञान गवाए। बाली रोवै नाहे पतार, नानक दुखिया सब संसार। मन्ने नाओ सोई जन जाए, औरी कर्म ना लेखै लाए। महला दूजा जप तप सब किश मन्ने, अवरकारा सब बाद। नानक मन्या मन्निए बुझिए गुर प्रसाद। पौड़ी काया हंस तुर मेल, करतै लिख पाया सब मैं गुप्त वर्तदा, गुरमुख प्रगटाया। गुण गावै गुण उच्चरै, गुण महे समाया। सच्ची बाणी सच है, सच मेल मिलाया। सब किश आपे आप है, आपे दे वडियाई। वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला दूजा नानक अंदा होए कै, रतना परखण जाए। रतना सार ना जानी, आवै आप लखाए। महला दूजा रतना केरी गुथली, रतनी खोली आए। वखर तैवन जा रहा दुहां रही समाए। जिन गुण पल्लै नानका, माणक बन जैसे रतना सार न जानी। अंधे वत्तै लोए पौड़ी नौ दरवाजे, काया कोट है दसवै गुप्त रखी जय। बजरक पाट न खुलनी, गुर शब्द खुली जय। अनहद वाजे धुन वज दे,
ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੀਜੈ, ਤਿਤ ਘਟ ਅੰਤਰ ਚਾਨਣਾ, ਕਰ ਭਗਤ ਮਲੀਜੈ ਸਭ।

रामकली की वार महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सलोक महला पंजवा जैसा सतगुर सुनीदा तैसो ही मैं डीठ विछड़िया मेले प्रभु हर दरगह का बसीठ। हर नामो मंत्र दरड़ाएंदा कट्टे हों मैं रोग नानक सतगुर तिना मिलाया जिन्ना तुरे पया संजोग। महला पंजवा एक सज्जन सब सज्जना एक वैरी सब वाद गुरपुरै देखा लिया विणना मैं सब बाद। साकत दुर्जन परमिया जो लगे दूजे साद जन नानक है प्रभुजिया गुर सतगुर कै प्रसाद। पौड़ी थटन हारे थाट आपे ही थटिया आपे पूरा साहो आपे ही खटिया आपे करपा सार आपे रंग रटिया कुदरत कीमना पाए अलख ब्रह्मटिया। अगम अथाह बेअंत पर प्रटिया आपे वड पात साहो आप वजी रटिया। कोई न जाने कीम केवड मटिया सच्चा साहब आप गुरमुख प्रगटिया। सलोक महला पंजवा सुन सज्जन प्रीतम मेरे आ मैं सतगुर देहो देखाल हाँ तिस सेवी हाँ तिस देवा मन अपना नित हृदय रखा समाल। एकस सतगुर बाहरा त्रिक जीवन संसार जन नानक सतगुर तिना मिलायोन।

कोई ऐसा सज्जन लोड लाहो जो मिले प्रीतम मोहे, गुरपुरै में लाया जत देखा तत सोए, जन नानक सो प्रभ सेवया तिस जेवड़ियावर ना कोए पौड़ी। देवन हार दा तार कित मुख सालाही है, जिस रखै कृपा तार रिजक समाही है, कोय न किस ही वस सबना एक तार, पाले बालक वांग देखै आप कर, करदा अनंद बिनोद किशु ना जानी है, सर्वतार समरथ हाँ तिस कुर्बानी है। गाइए रात दिनंत गावन जोगया, जो गुर की पैरी पाहे तिन्नी हर रस पोगया। सलोक महला पंजवा, भीड़ो मोकलाई कीतियान सब रखे कुटुंबै नाल, कार्ज आप सवारियान सो प्रभ सदा संभाल। प्रभ मात पिता कंठ लाएंदा लहुड़े बालक पाल, दयाल होए सब जी जंतर हर नानक नजर निहाल। महला पंजवा, विण तुद होर जे मंगना, सिर दुखा कै दुख देह नाम संतोखिया, उतरे मन की भुख। गुरवण तिण हरिया कीतिया, नानक क्या मनुख पौड़ी। सो ऐसा दातार मनो ना विसरै, कड़ी ना मोहत चसा तिस बिन ना सरै। अंतर बाहर संग क्या को लुक करै, जिस पत रखै आप सो पवजल तरै। भगत ज्ञानी तपा जिस कृपा करै, सो पूरा प्रधान जिसनो बल तरै। जिसै जराए आप सोई अजर जरै, तिस ही मिलिया सच मंत्र गुरमंत्र है। सलोक महला पंजवा, तन सो राग सुरंगड़े आलापत सब तिख जाए, तन सो जंत सुहावड़े जो गुरमुख जप दे नाम। जिन्नी एक मन एक आराध्या तिन सद बलिहारै जाओ, तिन की धूड़ हम बांश दे करमी पल्ले पाए। जो रते रंग गोविंद कै हाँ सदबल।

व्यापिया दुर्मत कबुद कमूड़ा मन लागा तस्मोहा ठगै सेती ठगरा ले आया साथ पे इको जेहा। सतगुर सराफ नदरी विच दो कड्डै ता उगड़े आया लोहा बहु तेरी थाई रलाए रलाए दिता उगड़िया पड़दा अगे आए खलोहा सतगुर की जे सरणी आवै फिर मनूरो कंचन होहा। सतगुर निर्वैर पुत्र सत्र समाने औगण कटे करे सुध देहा नानक जिस तुर मस्तक होवै लिखिया ते सतगुर नाल सनेहा अमृत बाणी सतगुर पूरे की जिस कृपाल होवै तिस हृदय वसेहा आवन जाना तिसका कटी है सदा सदा सुख होहा पौड़ी जो तुद पाणा जंत सो तुद बुझई जो तुद पाणा जंत सो दर गै सिजई जिसनो तेरी नदर हम मैं तिस गई जिसनो तू संतुष्ट कल मल तिस खई जिसकै स्वामी वल निरपव सो पई जिसनो तू कृपाल सच्चा सोथियई जिसनो तेरी माया ना पोहै अगनई तिसनो सदा दयाल जिन गुरते मत लई श्लोक महला पंजवा कर कृपा कृपाल आपे बख्श लै सदा सदा।

एको दाता मंगी है सब किश पल्लै पाए, मन तन सास गिरास प्रभ एको एक त्याए, अमृत नाम निधान सच गुरमुख पाया जाए। वड भागी ते संत जन जिन मन उठाए, जल थल महियल रवरया दूजा कोई ना है, नाम त्याई नाम उचरा नानक खसमर जाए। पौड़ी जिसनो तू रखवाला मारे तिस कौन, जिसनो तू रखवाला जिता तिन्ने पैण, जिसनो तेरा अंग तिस मुख उजला, जिसनो तेरा अंग सो निर्मली हूं निर्मला, जिसनो तेरी नदर ना लेखा पुछी है, जिसनो तेरी खुशी ते नौनद पुंची है, जिसनो तू प्रभ वाल तिस क्या मोहछंदगी, जिसनो तेरी मेहर सो तेरी बंदगी। श्लोक महला पंजवा, हो कृपाल स्वामी मेरे संतां संग विहावे, तुद्दो भुले से जम जम मरदे तन कदे ना चुक नहावे। महला पंजवा, सतगुर सिमरो अपना कट अवकट कट काट, हर हर नाम जपंतिया कोई ना बंदे वाट। पौड़ी तिथे तू सुमर

पौड़ी वड़ियाई सच्चे नाम की हों जीवा सुन सुने पशु प्रेत अज्ञान उदारे एक घने दिन सरैन तेरा नाव सदा सद जापी है तृष्णा भुख विकराल नाए तेरे तरापी है रोग सोग दुख मन्ये जिस नाव मन वसै तसै प्राप्त लाल जो गुरसबदी रसै खंड ब्रह्मांड बेअंत उधार नहारिया तेरी शोभा तुद सच्चे मेरे प्यारिया। श्लोक महला पंजवां मित्र प्यारा नानक जी मैं छड़ गवाया रंग कुसुम बै भुली तौ सज्जन की मैं कीम ना पाउंदी हों तुद बिन अड ना लहिंदी। महला पंजवां सस विरायण नानक जी ओ ससरा वादी जेठो पौ पौ लू है हब्बे पास पुणे दे वतन जा मैं सज्जन तू है पौड़ी जिस तू उठा चित तिस दर्द निवारण जिस तू उठा चित तिस कदे ना हारण जिस मिलिया पूरा गुरु सो सर प्रतारण जिसनो लाए सच ते सच संभालण जिस आया हथ निदान सो रहया पालण जिसनो इको रंग भगत सो जानण ओ सबना की रेण बिरही चारण सब तेरे चोज विडाण सब तेरा कारण। श्लोक महला पंजवां उस्तत निंदा नानक जी मैं हब मंजाई छोड़िया हब किज त्यागी हब्बे साख कूड़ावे डिठे तौ पल्ले तैंडे लागी। महला पंजवां फिरदी फिरदी नानक जीओ हों फावी थी बौद्ध सावर पंदा ताहों सुख सुखाली सुती।

मां बेदियाले जैसे कनक कला चित मांडियाले रहाओ आनी ले कुंभ भराई ले उदक राजकुमार पुरंदरिये हस्त बिनोद विचार करती है चीत सो गागर राखियाले मंदर एक द्वार दह जाके गऊ चरावन छियाले पांच कोस पर गऊ चरावत चीत सो बछरा राखियाले कहत नाम देव सुनो तलोचन बालक पालन पौडियाले अंतर बाहर काज विरोधी चीज सो बार कर राखी आले वेद पुराण शास्त्र अनंता गीत कवित ना गावो गो अखंड मंडल निरंकार मैं अनहद वेद मजाओ गो बैरागी रामे गावो गो शब्दातीता नह दराता या कुल कह कर जाओ गो रहाओ एड़ा पिंगला और सुख मना पौने बंद रहाओ गो चंद सूरज दो समकर राखो ब्रह्म ज्योत मिल जाओगो तीर्थ देखना जल में पैसो जी जंत ना सतावोगो 68 तीर्थ गुरु दिखाए कठी पीतर नाओगो पंच सहाई जन की शोभा पलो पलो ना कहावोगो नामा कह चित हर स्यों राता सुन समाध

चांद ना होता, सूर ना होता, पानी पवन मिलाया, शास्त्र ना होता, वेद ना होता, कर्म कहां तेरे आया। खेचर पूचर तुलसी माला, गुर प्रसादी पाया, नामा प्रणवै परम तत् है, सतगुरु होए लिखाया। राम कली कर दूजा, बनारसी तप करै, उल्ट तीर्थ मरै, अग्न दह काया कल्प की जय। असमेद जग की जय, सोना गर्भ दान दी जय। राम नाम सर तऊ न पूजै, छोड़ छोड़ रे पाखंडी, मन कपट ना की जय। हर का नाम नित नित ली जय रहाओ। गंगा जाओ गोदावर जाइय, कुंभ जाओ केदार नाइय, गोमती सहस गऊ दान की जय। कोट जाओ तीर्थ करै, तन जाओ हिवाले गारै, राम नाम सर तऊ न पूजै। अस दान गज दान, सहजा नारी भूम दान, ऐसो दान नित नित की जय। आत्म जाओ निर्मायल की जय, आप बराबर कंचन दी जय, राम नाम सरतऊ न पूजै। मने न की जय रोस, जमे ना दी जय दोस, निर्मल निर्वाण पद चीन ली जय। जथ रथ राय नंद, राजा मेरा राम चंद, प्रणवै नामा तत रस अमृत पीजै। राम कली बाणी रविदास जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पढ़िए गुनिए नाम सब सुनिए, अनपौ पाओ न दर्शै, लोहा कंचन हिरन होए कैसे, जौ पारसै नाम परसै। देव संसय गांठ ना छूटे, काम क्रोध माया मद मत्सर, इन पंचों मिल लूटे रहाओ। हम बड कब कुलीन, हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुनी सूर हम दाते, एह बुद्ध कबै ना नासी। कहो रविदास समय सबै नहीं समझस, भूल परे जैसे बौरे, मोहे आधार नाम नारायण, जीवन प्राण तन मोरे। राम कली बाणी बेणी जियो की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एड़ा पिंगलाए और सुख मना, तीन बसै कठाई, बेणी संगम तह पिराग, मन मज्जन करे तिथाई। संतो तहां निरंजन राम है, गुरगम चीने बिरला कोए, तहां निरंजन रमैया होए रहाओ। देव स्थान क्या निशानी, तह बाजे सबदा नाहद बाणी, तह चंदना सूरज पौन ना पानी, साखी जागी गुरमुख जानी। उपजै ज्ञान दुरमत शीजै, अमृत रस गगन अंतर पीजै, एस कला जो जाने पे ओ, पेटे तास परम गुरदेओ। दसम द्वारा अगम अपारा, परम पुरख की घाटी, ऊपर हाट हाट पर आला, आले पीतर थाती। जागत रह सो कवो ना सोवै, तीन तलोक समाध पलोवै, बीज मंत्र लै हिरदय रह, मनुआ उल्ट सुन महंग है। जागत रह न अलिया भाखै, पांचों इंद्री बस कर रखै, गुर की साखी राखै चीत, मन तन अर्पै कृष्ण प्रीत। कर पल्लव साखा बिचारे, अपना जन्म न जुवै हारे। असर नदी का बंदै मूल, पच्छम फेर चढ़ावै सूर, अजर जरै सो निजर चरै, जगन्नाथ्यों गोष्ट करै। चौ मुख दीवा जो द्वार, पलुवंत मूल बिचकार, सर्व कलाले आपे रहै, मन मान करत नामै गुहै। मस्तक पद्म द्वालै मणि, माहे निरंजन त्रिपवन धनी, पंचे शब्द निर्मायल बाजे, ढुलके चवर शंख कान गाजे। दल मल दैतौ गुरमुख ज्ञान, बेणी जाचै तेरा नाम। राग नट नारायण।

आओ साधु तूर कर नित मज्जन सब किल विख पाप गवायण पूर्ण पूर्ण रहे कृपा निद घट घट दिष्ट समायण जाप ताप कोट लख पूजा हर सिमरन तुल ना लायण दोए कर जोड़ नानक दान मांगे तेरे दासन दा दसायण नट महला पंजवा मेरा सर्बस नाम निधान कर कृपा साधु संग मिलो सतगुर दीनो दान रहाओ सुखदाता दुख पंजन हारा गाओ कीर्तन पूर्ण ज्ञान काम क्रोध लोभ खंड खंड कीने बिनस्यो मूड अभमान क्या गुण तेरे आख वखाना प्रभयंत्र जामी जान चरण कमल सरन सुख सागर नानक सद कुर्बान नट महला पंजवा हाँ वार वार जाऊं गुर गोपाल रहाओ मोहे निर्गुण तुम पूर्ण दाते दीना ना दयाल उठत बैठत सोवत जागत जी प्राण तन माल दर्शन प्यास बहुत मन मेरा नानक दर्शन हाल नट पड़ताल महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद को है मेरो साजन मीत हर नाम सुनावे नीत बिनसै दुख विपरीत सब अर्पो मंतन जीत रहाओ कोई विरला अपन कीत संग चरण कमल मन सीत कर कृपा हर जस दीत हर पाजो जन्म पदार्थ जीत कोट पतत होहे पुनीत नानक दास बल बल कीत नट अष्टपदिया महला चौथा एको अंकार सतगुर प्रसाद राम मेरे मंतन नाम आधारे खिन पल रह न सको बिन सेवा मैं गुरमत नाम सुमारे रहाओ हर हर हर हर हर मन त्यावो मैं हर हर नाम प्यारे दीन दयाल पहे प्रभ ठाकर गुर के शब्द सवारे मधुसूदन जग जीवन माधो मेरे ठाकर अगम अपारे एक बिनो बेनती करो गुर आगे मैं साधु चरण पखारे सहस नेत्र नेत्र है प्रभ कहो प्रभ एको पुरख निरारे सहस मूर्त एको प्रभ ठाकर प्रभ एको गुरमत तारे गुरमत नाम दमोदर पाया हर हर नाम उरतारे हर हर कथा बनियत मीठी ज्यों गूंगा गटक समारे रसना साध चखे पाए दूजे अत फीके लोभ बेकारे जो गुरमुख साध चखे राम नामा सब अनरस साध बिसारे गुरमत राम नाम तन पाया सुन कहत्या पाप निवारे धर्म राय जम नेड़ ना आवे मेरे ठाकुर के।

तेरी निर्गुण कथा कथा है मीठी, गुरनी के बचन समारे, गावत गावत हर गुण गाए, गुण गावत गुर निस्तारे, बबेक गुरु गुरु समदर्शी, तिस मिलिए संको तारे, सतगुर मिलिया परम पद पाया, हो सतगुर कै बलिहारे, पाखंड पाखंड कर कर भरमे, लोभ पाखंड जग बुरियारे, हलत पलत दुखदाई होवे, जमकाल खड़ा सिर मारे, उगवे दिन सियाल जल संभाले, बिख माया के बिस्थारे, आई रहन पया सुपनंतर, बिख सुपने पी दुख सारे, कलर खेत लै कूड़ जमाया, सब कूड़े के खलवारे, साग तनार सब पुख पुखाने, दर ठांडे जम जंदारे, मनमुख कर्ज चढ़िया बिख पारी, उतरे शब्द विचारे, जितने कर्ज कर्ज के मंगिए, कर सेवक पग लगवारे, जगन्नाथ सब जंतर उपाए, नक खीनी सब नथ हारे, नानक प्रभ खिंचे तिव चलिए, ज्यो भावे राम प्यारे, नट महला चौथा, राम हर अमृत सर नावारे, सतगुर ज्ञान मज्जन है नीको, मिल कर मल पाप उतारे, रहाओ संगत का गुण बहुत अधकाई, पढ़ सुवा गन को धारे, परसन परस भय कुबजा कहो, लै बैकुंठ सिधारे, अजामल प्रीत पुत्र प्रतकीनी, कर नारायण बोलारे, मेरे ठाकर कै मन पाए भावनी, जम कंकर मार बेदारे, मानुख कथै कथ लोक सुनावै, जो बोले सो ना बिचारे, सत संगत मिले ता दृढ़ता आवै, हर राम नाम निस्तारे, जब लग जियो पिंड है साबत, तब लग किछ ना सुमारे, जब कर मंदिर आग लगानी, कड कूप कड्डे पनिहारे, सागर स्योमन मेल ना करियो, जिन हर हर नाम बिसारे, साकत बचन बिशुवा ज्यों डसिए, तज साकत परे परारे, लग लग प्रीत बहु प्रीत लगाई, लग साधु संग सवारे, गुर के बचन सत सत कर माने, मेरे ठाकर बहुत प्यारे, पूर्व जन्म परचून कमाए, हर हर हर नाम प्यारे, गुर प्रसाद अमृत रस पाया, रस गावे रस विचारे, हर हर रूप रंग सब तेरे, मेरे लालन लाल गुलारे, जैसा रंग देह सो होवे, क्या नानक जंत विचारे, नट महला चौथा, राम गुर सरन प्रभु रखवारे, ज्यो कुंचर तंदुए पकड़ चलायो, करी ऊपर कड निस्तारे, रहाओ प्रभ के सेवक बहुत तनीके, मन सरदा कर हर तारे, मेरे प्रभ सरदा भगत मन भावे, जन की पै सवारे, हर हर सेवक सेवा लागे, सब देखे ब्रह्म पसारे, एक पुरख एक नदरी आवे, सब एका नदर निहारे, हर प्रभ ठाकर रव्या सब ठाई, सब चेरी जगत सुमारे, आप दयाल दया दान देवे, विच पाथर कीरे कारे, अंतरवास बहुत मुस्काई, ब्रह्म पूला मिर्ग सिंगारे, बन बन ढूंढ ढूंढ फिर थाकी, गुरपूरे कर निस्तारे, बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे, गुरबाणी कह सेवक जन माने, प्रतख गुरु निस्तारे, सब है ब्रह्म ब्रह्म है पसरिया, मन बीजिया खावारे, ज्यों जन चंद्रहांस दुखिया त्रिष्ट बुद्धि, अपना कर लुकी जारे, प्रभ को जन अंतर हृदय लोचै, प्रभ जन के सास निहारे, कृपा कृपा कर भक्त दृढ़ाए, जन पीछे जग निस्तारे, अपने आपे आप प्रभ ठाकर, प्रभ आपे श्रेष्ठ।

नट महला चौथा। मेरे मन भज ठाकर अगम अपारे, हम पापी बहु निर्गुण यारे, कर कृपा गुर निस्तारे रहाओ। साधु पुरख साध जन पाए, एक बिनो करो गुर प्यारे। राम नाम तन पूंजी देवो, सब तिशना भूख निवारे। पचै पतंग मृग भृंग कुंचर मीन, एक इंद्री पकर संघारे। पंच भूत सबल है देही, गुर सतगुर पाप निवारे। शास्त्र वेद सोध सोध देखे, मुन नारद बचन पुकारे। राम नाम पढ़ो गत पावो, सतसंगत गुर निस्तारे। प्रीतम प्रीत लगी प्रभ केरी, जिव सूरज कमल निहारे। मेर सुमेर मोर बहु नाचे, जब उन वै कहन कनहारे। साकत कौ अमृत भौ सिंचौ, सब डाल फूल बिस्कारे। ज्यो ज्यो निवै साकत नर सेती, छेड़ छेड़ कड्डै बिख खारे। संतन संत साध मिल रही है, गुण बोलै पर उपकारे। संत है संत मिलै मन बिकसै, ज्यो जल मिल कमल सवारे। लोभ लहर सब स्वान हल्क है, हल्क्यो सब है बिगारे। मेरे ठाकर कह दीबान खबर होई, गुर ज्ञान खड़ग लै मारे। राख राख राख प्रभ मेरे, मैं राखो कृपा तारे। नानक मैं तारे अवर ना काई, मैं सतगुर गुर निस्तारे। शक्का एक

अकाल मूर्त अजूनी सह पंगुर प्रसाद, अनक जतन कर रहे हर अंत नाही पाया, हर अगम अगम अगाध बोध आदेश हर प्रबराया रहाओ, काम क्रोध लो मोह निर्चगर ते चगराया, हम राख राख दीन तेरे हर सरन हर प्रब आया, शरणागति प्रद प्रभ पालते हर भगत वच्छलन आया, प्रहलाद जन हर नाख पकड़िया हर लाख ली उतराया, हर चेतरे मन महल पावन सब दुख पंजन राया, पौ जन मरण निवार ठाकर हर गुरमति प्रभ पाया, हर पतत पावन नाम स्वामी पौ भगत पंजन गाया, हर हार हर उर तारो जन नानक नाम समाया, माली गौड़ा महला चौथा जप मन राम नाम सुखदाता, सतसंगत मिल हर साध आया, गुरमुख ब्रह्म पिछाता रहाओ, वडभागी गुर दर्शन पाया गुर मिले हर प्रभ जाता, दुर्मत मैल गई सब नीकर हर अमृत हर सरनाता, तन तन साध जिनी हर प्रभ पाया तिन पूछो हर की बाता, पाए लगो नित करो जुदरिया हर मेलो कर्म विधाता, ललाट लिखे पाया गुर साधु गुर बचनी मंत्र राता, हर प्रभ आए मिले सुख पाया सब के लिख पाप गवाता, राम रसायन

और कही हर अगम अगम अगाध तुही ऊंच मुचो बहवा पार सिमरत नानक तरे सार माली गौड़ा महला पंजवा इही हमारे सफल काज अपने दास को लेहो निवाज रहाओ चरण संतै माथ मोर नैन दर्श पेखो निस्पोर हस्त हमरे संत टहल प्राण मन तन संत बहल संत संग मेरे मन की प्रीत संत गुण बसे मेरे चीत संत आज्ञा मन है मीठ मेरा कमल बिकसै संत डीठ संत संग मेरा होए निवास संतन की मोहे बहुत प्यास संत बचन मेरे मन है मंत संत प्रसाद मेरे बिखै हंत मुकत जुगत एहा निधान प्रभ दयाल मोहे देवो दान नानक कहो प्रभ दया तार चरण संतन के मेरे हृदय मजार माली गौड़ा महला पंजवा सबके संगी नाही दूर करन करावन हाजरा हजूर रहाओ सुनत जियो जास नाम दुख बिन से सो कियो विश्राम सगल निद हर हर हरे मुन जनता की सेव करे जा कै घर सगले समाहे जिसते बिरथा कोई नाहे जी जंतर करे प्रतपाल सदा सदा से ओ कृपाल सदा धर्म जा कै दीबाण बेमोहताज नहीं किश काण सब किश करना अपने आप रे मन मेरे तू ता को जाप साध संगत को हौ बलिहार जास मिल होवे उधार नाम संग मन तन है रात नानक को प्रभ करी दात माली गौड़ा महला पंजवा दो पदे एको अंकार सतगुर प्रसाद हर समर्थ की सरना जियो पिंड तन रास मेरी प्रभ एक कारण करना रहाओ सिमर सिमर सदा सुख पाईए जीवन का मूल रव रहया सरबत ठाई सुख मोह स्थूल आल जाल बेकार तज सब हर गुणा नित गाओ कर जोड़ नानक दान मांगे देहो अपना नाओ माली गौड़ा महला पंजवा प्रभ समरथ देव अपार कौन जाने चलत तेरे किशंत नाही पार रहाओ एक खिन है था प्यो थापदा कड़ पन करने हार जेत की न्यो पार जना प्रभ दान दे दातार हर सरन आयो दास तेरा प्रभ ऊंच अगम मुरार कड़ लेहो पौ जल बिखमते जन नानक सद बलिहार माली गौड़ा महला पंजवा मन तन बस रहे गोपाल दीन बांधव भगत वच्छल सदा सदा कृपाल रहाओ आदि अंते मद तू है प्रभ बिना नाही कोए पूर रहया सगल मंडल एक स्वामी सोए करन हर जस नेत्र दर्शन रसन हर गुण गाओ बलिहार जाए सदा नानक देहो अपना नाओ माली गौड़ा बाणी भगत नामदेव जी की एको अंकार सतगुर प्रसाद तन तन ओ राम बेन बाजै मदर मदर तुन अनहत गाजै रहाओ तन तन मेघा रोमावली तन तन कृष्ण उंडै कंबली तन तन तू माता देव की जय ग्रह रमैया कवलापति तन तन बन खंड बिंद्रा बना जय खेलै श्री नारायणा बिन बजावै गोदन चरै नामे का स्वामी आनंद करै मेरो बाप माधो तू तन केसो सांवलियो बीठ लाए रहाओ कर तरे चक्कर बैकुंठ ते आए गज हस्ती के प्राण उधारी अले दो शासन की सभा द्रुपती अंबर ले त्यो बारी अले गोतम नार अहल्या तारी पावन केतक तारी अले ऐसा अदम अजात नाम देओ तो शरणागत आई अले सबै कट राम बोले रामा बोले राम बिना को बोले रे रहाओ एकल माटी कुंजर चीटी
ਭਾਂਜਨ ਹੈ ਬਹੁ ਨਾਨਾ ਰੇ, ਅਸਥਾਵਰ ਜੰਗਮ ਕੀਟ ਪਤੰਗਮ, ਕਟ ਕਟ ਰਾਮ ਸਮਾਨਾ ਰੇ। ਏਕਲ ਚਿੰਤਾ ਰਾਖਿਆ ਅਨੰਤਾ, ਔਰ ਤਜੋ ਸਭ ਆਸਾ ਰੇ, ਪ੍ਰਣਵੈ ਨਾਮਾ ਪਹਿਨੇ ਕਾਮਾ, ਕੋ ਠਾਕਰ ਕੋ ਦਾਸਾ ਰੇ। ਰਾਗ ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਚੌਪਦੇ ਏਕ ਓੰਕਾਰ, ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਾ ਜੁਨੀ ਸਹਿ ਭੰਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸਲੋਕ ਸਾਜਨ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਕੀ, ਹੋਏ ਰਹਾ ਸੰਤੂਰ, ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਤੁਹਾਰੀਆ, ਪੇਖੋ ਸਦਾ ਹਜੂਰ। ਸ਼ਬਦ ਪਿੱਛੋ ਰਾਤੀ ਸੱਦੜਾ, ਨਾਮ ਖਸਮ ਕਾਲੇ, ਖੇਮੇ ਛਤਰ ਸਰਾਏ ਚ ਦਿਸਨ ਰਥ ਪੀੜੇ, ਜਿੰਨੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਤਿਨ ਕਉ ਸਦ ਮਿਲੇ। ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਕਰਮਹੀਣ ਕੂੜਿਆਰ, ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤੇਰਾ, ਅੰਧਾ ਪਰਮ ਭੂਲਾ ਮਨ ਮੇਰਾ, ਰਹਾਓ। ਸਾਧ ਕੀਤੇ ਦੁਖ ਪਰ ਫੋੜੇ, ਪੂਰਬ ਲਿਖੇ ਮਾਏ,

गया सो जो बनो धन पछताणी, तू दाना साहिब सिर मेरा, खिजमत करी जन बंदा तेरा, भणत नानक अंदेसा एही, बिन दर्शन कैसे रवो स्नेही। मारू महला पहला, मुल खरीदी लाला गोला, मेरा नाव सुपागा, गुर की बचनी हट बेकाना, जित लाया तित लागा, तेरे लाले क्या चतराई, साहिब का हुक्म ना करना जाई रहाओ। मां लाली प्यो लाला मेरा, हाँ लाले का जाया, लाली नाचे लाला गावे, भगत करो तेरी राया, पिए ता पानी आनी मीरा, खाहे ता पीसन जाओ, पखा फेरी पैर मलोवा, जपत रहा तेरा नाओ। लूण हरामी नानक लाला, बख्शे तुद वड्याई, आज जुगा दया पदाता, तुद बिन मुक्त ना पाई,

तौ दीवाना जानिया जा एकाकार कमाए, हुक्म पछाणे खसम का दूजी अवर सियाण पकाए। तौ दीवाना जानिया जा साहिब तरे प्यार, मंदा जाने आप कहो अवर भला संसार। मारू महला पहला एहो तन सरबरया भरपूर, मनुख फिर से जाने दूर। सो तन वखर नाम हमारा जिस तू दे।

पत पाए हलत पलत नाल चलदा हरियंते ले छाए जिथे अवकट गलियां पीड़ियां तिथे हर हर मुक्त कराए मेरे सतगुरा मैं हर हर नाम दरड़ाए मेरा मात पिता सुत बंद पो मैं हर बिन अवर नाम आए रहाओ मैं हर बिर ही हर नाम है कोई अण मिलावे माए तिस आगे मैं जोदड़ी मेरा प्रीतम दे मिलाए सतगुर पुरख दयाल प्रभ हर मेले ढिल ना पाए जिन हर हर नाम ना चेते ओ से पागहीन मर जाए ओए फिर जोन पवाई है मर जमै आवे जाए ओए जम दर बदे मारी है हर दरगे मिले सजाए तू प्रभ हम शरणागति मोको मिल लहो हर राए हर तार कृपा जग जीवना गुर सतगुर की शरण आए हर जियो आप दयाल होए जन नानक हर मेलाए मारू महला चौथा हाँ पूंजी नाम दसाएंदा को दसे हर तन रास हाँ तिस विटों खन खनिया मैं मेले हर प्रपास मैं अंतर प्रेम ब्रह्म का क्यों सज्जन मिले मिलास मन प्यारिया मित्रा मैं हर हर नाम तन रास गुर पूरे नाम दृढ़ाया हर तीरख हर साबास रहाओ हर हरे आप मिलाए गुर मैं दसे हर तन रास बिन गुर प्रेम ना लभई जन वेखो मन निरजास हर गुर विच आप रखिया हर मेले गुर साबास सागर भगत भंडार हर पूरे सतगुर पास सतगुर तुठा खोल दे मुख गुरमुख हर प्रगास मनमुख भाग वे हूणिया तिख मुइया कंधी पास गुरदाता दातार है हाउ मांगो दान गुर पास चिरी विशुन्ना मेल प्रभ मैं मंतन वडड़ी आस गुर पावे सुन बेनती जन नानक की अरदास मारू महला चौथा हर हर कथा सुनाए प्रभ गुरमत हर दै समाणी जप हर हर कथा वड पागिया हर उत्तम पद निर्वाणी गुरमुखा मन प्रतीत है गुर पूरे नाम समाणी मन मेरे मैं हर हर कथा मन पाणी हर हर कथा नित सदा कर गुरमुख अकथ कहानी रहाओ मैं मंतन खोज टंडोलिया क्यों पाई है अकथ कहानी संत जना मिल पाया सुना अकथ कथा मन पाणी मेरा मंतन नाम आधार हर मैं मेले पुरख सुजानी गुरपुरख है पुरख मिलाए प्रभ मिल सुरती सुरत समाणी वडभागी गुर सेवया हर पाया सुगण सुजानी मनमुख भाग वे हूणिया तिन दुखी रहन विहानी हम जाचक दीन प्रभ तेरे आ मुख दी जय अमृत बाणी सतगुर मेरा मित्र प्रभ हर मेलो सूड़ सुजानी जन नानक शरणागति कर कृपा नाम समाणी मारू महला चौथा हर पाओ लगा बैरागिया वडभागी हर मन राख मिल संगत सरदाई उपजै गुरसबदी हर रस चाख सब मंतन हरिया हो।

अपने चलता, जिस हर राखै तिस कौन मारै, जिस करता आप छिड़ाई जियो, हवन दे नाम लई करतारे, जिन सेवक भगत सबे निस्तारे, दस अठ चार वेद सब पूछो, जन नानक नाम छिड़ाई जियो, मारू महला पंजवा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, डर पै तरत आकाश नखियत्रा सिर उपर अमर करारा, पौन पानी बैसंतर डर पै इंद्र बिचारा, एका निरपौ बात सुनी सो सुखिया सो सदा सुहेला, जो गिरमिल गाए गुनी रहाओ, देह तारे अर देवा डर पै से साधक डर मोया, लख चौरासी मर मर जन्मे फिर जो नी जोया, राजस सातक तामस डर पै के ते रूपयो पाया, शल बप्रिय कौला डर पै अत डर पै धर्म राया, सगर समग्री डर ब्यापी बिन डर करने हारा, कहो नानक भगतन का संगी भगत सोहै दरबारा, मारू महला पंजवा पांच बरख को अनाथ त्रु बारक, हर सिमरत अमर अटारे, पुत्र हेत नारायण कहो जम कंकर मार बेदारे, मेरे ठाकर केते अगंत उधारे, मोहे दीन अल्प मत निर्गुण परयो सरन द्वारे, रहाओ बालमीक सुपचारो तरयो बद्धक तरे बिचारे, एक निमख मन माहे अराध्यो गदपत पार उतारे, कीनी रखिया भगत प्रहलाद हर नाक्ष नखै बिदारे, बिदर दासी सुत भयो पुनीता सगले को लियो जारे, कवन पराध बतावो अपने मिथ्या मोह मगनारे, आयो साम नानक ओट हर की लीजे पुजा पसारे, मारू महला पंजवा वेतन वेत प्रमयो बहु भांति, अनक जतन कर ताए, जो जो कर्म किए हो मैं ते पै आ जाए, अवर दिन काहू काज न लाए, सो दिन मोको दीजे प्रभ जियो, जा दिन हर जस गाए रहाओ, पुत्र कलत्र गृह देख पसारा इसी मैं उर जाए, माया मद चाख पय उदमाते हर हर कबो न गाए, एह बिद खोजी बहु प्रकारा बिन संतन नहीं पाए, तुम दा तार वड्डे प्रभ समरथ मांगन कौ दान आए, त्याग्यो सगला मान महत्ता दास रेण शरण आए, कहो नानक हर मिल पय एक महा आनंद सुख पाए, मारू महला पंजवा कवन थान तीरियो है नामा कवन बस्त अहंकारा, कवन चिहन सुनी ऊपर शोहयो मुखते सुन कर गारा, सुनो रे तू कौन कहां ते आयो, एती ना जानो केती क मुद्दत चलते खबर ना पायो, रहाओ सहनशील पवन यार पानी बसदा खिमा ने प्राते, पंच तत् मिल पयो संजोगा इनमें कमन दुराते, जिन रच रचिया पुरख विधाता नाले हमें पाई, जन मरण उस ही कौ है रे ओहा आवै जाई, बरन चिहन नाही किछ रचना मिथ्या सगल पसारा, पंत नानक जब खेल उजारै तब एक अंकारा, मारू महला पंजवा मान मोहवर लोभ विकारा, बियो चीतना कालेओ नाम रतन गुणा हर वणजे लाद वखर लै चालेओ, सेवक की ओड़क निभी प्रीत जीवत साहेब सेवयो अपना, चलते राख्यो चीत रहाओ, जैसी आज्ञा कीनी ठाकरो तिस्ते मुख नहीं मोरयो, सहजानंद रखियो गृह भीतर उठ वाहू कौ दौरयो, आज्ञा मैं भूख सोई कर सूखा सो घर खनी जान्यो, जो जो हुक्म पयो साहिब का सो माथे ले मान्यो, पयो कृपाल ठाकुर सेवक सवरे हल्त पलाता, तन सेवक सफल ओह आया जिन नानक खसम पछाता,
ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਖੁੱਲਿਆ ਕਰਮ ਕਿਰਪਾ ਭਈ ਠਾਕਰ, ਕੀਰਤਨ ਹਰ ਹਰ ਗਾਈ, ਸ੍ਰਮਥਾ ਕਾ ਪਾਏ ਬਿਸਰਾਮਾ, ਮਿਟ ਗਈ ਸਗਲੀ ਧਾਈ। ਅਬ ਮੋਹੇ ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ ਪਾਈ, ਚੀਤ ਆਇਓ ਮਨ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ, ਸੰਤਨ ਕੀ ਸਰਨਾਈ ਰਹਾਓ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਨਿਵਾਰੇ, ਨਿਵਰੇ ਸਗਲ ਬੈਰਾਈ, ਸਦ ਹਜੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਨਾਜਰ, ਕਤੈ ਨਾ ਪਇਓ ਦੂਰਾਈ। ਸੁਖ ਸੀਤਲ ਸਰਦਾਸਾ ਪੂਰੀ, ਹੋਏ ਸੰਤ ਸਹਾਈ, ਪਾਵਨ ਪਤਿਤ ਕੀਏ ਖਿਨ ਪੀਤਰ, ਮਹਿਮਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਈ। ਨਿਰਭਉ ਭਏ ਸਗਲ ਭੈ ਖੋਏ, ਗੋਬਿੰਦ ਚਰਨ ਉਟਾਈ, ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਵੈ ਠਾਕਰ ਕਾ, ਰਹਿਣ ਦਿਨ ਸਲਿਵ ਲਾਈ। ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਜੋ ਸਮਰੱਥ ਸਰਬ ਗੁਣ ਨਾਇਕ, ਤਿਸ ਕਉ ਕਵੋ ਨਾ ਗਾਵ ਸਿਰੇ, ਛੋੜ ਜਾਏ ਖਿਨ ਪੀਤਰ ਤਾਂ ਕਉ, ਓਆ ਕਉ ਫਿਰ ਤਾਵ ਸਿਰੇ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਕਿਉ ਨਾ ਸਮਾਰ ਸਿਰੇ, ਬੈਰੀ ਸੰਗ ਰੰਗ ਰਸ ਰਚਿਆ, ਤਿਸਿਓ ਜੀਅ ਰਾਜ ਜਾਰ ਸਿਰੇ ਰਹਾਓ। ਜਾਂ ਕਹਿ

चारे खानी, खंड दीप सब लोवा, एक वावे ते सब होवा। करण हारा बूजो रे, सतगुर मिले तासु जैरे रहाओ। त्रै गुण किया पसारा, नरक सुर्ग अवतारा, हम मैं आवे जाई, मन टिकन ना पावे राई। वाजगुरु गोबारा, मिल सतगुर निस्तारा, हाँ हाँ कर्म कुमाने, ते ते बंद गलाने। मेरी मेरी तारी, ओहा पैर लोहारी, सो गुर मिल एक पछाण, जिस होवे पाग मथाण। सो मिलिया जे हर मन पाया, सो पूला जे प्रभु पुलाया। नै आप मूर्ख ज्ञानी, जे करावे सो नाम वखानी, तेरा अंत ना पारा वारा, जन नानक सत बलिहारा।

पूर्ण अत्र त्याग आए सहज समाध सुभाए हर भंडार हाथ आया नानक गुरते पाया। मारू महला पंजवां कर छेवां दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद छोड़ सगल सियाण पा मिलसा त्यागो मान अवर सब किश मिथिया रसना राम राम वखान मेरे मन करन सुन हर नाम मिट है अग तेरे जन्म जन्म के कवन बपरो जाम रहाओ दुख दीन ना पाओ ब्यापै मिले सुख विश्राम गुर प्रसाद नानक बखाना हर भजन तत् ज्ञान। मारू महला पंजवा जिन्नी नाम विसारिया से होत देखे खेह पुत्र मित्र बिलास बनता टूटते ए नेह मेरे मन नाम नित नित लेह जलत नाही अग्न सागर सूख मंतन देह रहाओ बिरख छाया जैसे बिनसत पवन झूलत में है हर भगत दृढ़ मिल साध नानक तेरा काम आवत एह। मारू महला पंजवा पुरख पूर्ण सुखै दाता संग बस्तो नीत मरै ना आवै ना जाए बिनसै व्यापत उसन ना सीत मेरे मन नाम स्यों कर प्रीत चेत मन मैं हर हर निदाना एह निर्मल दीत रहाओ कृपाल दयाल गोपाल गोविंद जो जपै ते सीध नवल नवतन चतर सुंदर मन नानक ते संग बीद। मारू महला पंजवा चलत बैस्त सोवत जागत गुरमंत्र हृदय चितार चरण सरन पज संग साधु भव सागर उतरै पार मेरे मन नाम हृदय तार कर प्रीत मन तन लाए हर स्यों अवर सगल विसार रहाओ जियो मन तन प्राण प्रभ के तू अपने आप निवार गोविंद भज सब स्वार्थ पूरे नानक कबो ना हार। मारू महला पंजवा तज आप बिनसी ताप रेण साधु थियो तिसे प्राप्त नाम तेरा कर कृपा जिस दियो मेरे मन नाम अमृत पियो आन साध विसार होचे अमर जुग जुग जियो रहाओ नाम एक रस रंग नामा नाम लागी लियो मीत साजन सखा बंद पो हर एक नानक कियो। मारू महला पंजवा प्रतपाल माता उदर राखै लगन देत ना सेक सोई स्वामी इहा राखै बूद बूझ बुद्ध बबेक मेरे मन नाम की कर टेक तिसे बूझ जंतु किया प्रभ करण करन एक रहाओ चेत मन मैं तज सियाणप छोड़ सगले भेख सिमर हर हर सदा नानक तरे कई अनेक। मारू महला पंजवा पतत पावन

साध संगत गुण उचारण हर नाम अमृत पाथ करो कृपा मुरार माधव सुन नानक जी वै गाथ मारू अंजलि महला पंजवा कर सतवा एको अंकार सतगुर प्रसाद संजोग विजोग तुरों ही हुआ पंच तात कर पुतला किया साहे कै फुरमायड़ जी देही विच जियो आए पया जिथै अगन पखे पड़हारे ऊर्द मुख मह गोबारे सास सास माले सोई उथै खसम छडाए लया विचों गरबै निकल आया खसम सार दुनी चितलाया आवै जाए पवाई है जोनी रहना किथी थाए पया मेहरवान रख लयन आपे जी जंत सब तिसके थापे जन पदार्थ जिन चलिया नानक आया सो परवान थिया मारू महला पंजवा वैदो ना वाई पहनो ना पाई एको सहाई राम है कीता जिसो होवै पापा मलो धोवै सो सिमरो प्रधान है कटकटे वासी सर्व निवासी अस्थिर जा का थान है आवै ना जावै संगे समावै पूर्ण जा का काम है भगत जना कौ राखण हारा संत जीवै जब प्राण आधारा करण कारण समर्थ स्वामी नानक तिस कुर्बान है एक ओवंकार सतगुर प्रसाद मारू महला नावा हर को नाम सदा सुखदाई जा कौ सिमर अजा मल उदरियो गन का हूं गत पाई रहाओ पंचाली कौ राज सभा में राम नाम सुदयाई ताको दुख हरियो करना मैं अपनी पैज बढ़ाई जेह नर जस कृपा निद गायो ताको पयो सहाई कहो नानक मैं ही परोसे गई आन सरनाई मारू महला नावा अब मैं कहां करो री माई सगल जन्म बिख्यान स्यों खोया सिमरियो नाहे कनाई रहाओ काल फास जब घर मैं मिली तेह सुध सब बिसराई राम नाम बिन या संकट में को अब होत सहाई जो संपत्ति अपनी करमानी छन में पई पराई कहो नानक यह सोच रही मन हर जस कबहू ना गाई मारू महला नावा माई मैं मन को मान ना त्याग्यो माया के मद जन्म सिरायो राम भजन नहीं लाग्यो रहाओ जम को डंड परयो सिर ऊपर तब सोब तै जाग्यो कहां हो तो अब कै पछताए छूट तो नाहन पागयो एह चिंता उपजी घट मैं जब गुर चरणन अनरागयो सफल जन्म नानक तब हुआ जाओ प्रभ जस

सोई सोहेला पालिया। ग्रह राज में नरको दास करोदा, बहुविद वेद पाठ सब सोदा। देही मैं जो रह अलिपता, तिस जन की पूर्ण कहली है। जागत सूता परम विगुता, बिन गुर मुक्त ना होई है मीता। साध संग तुटे हो बंधन, एको एक निहाली है। कर्म करे ता बंदा, नह करे ता निंदा। मोह मगन मन व्याप्या चिंदा, गुर प्रसाद सुख दुख सम जाने। घट घट राम हाली है, संसार में सहसा व्यापै। अकथ कथा गोचर नहीं जापै, जिसे बुझाए सोई बूझै। ओह बालक वांगी पाली है, छोड़ बह तौ छूटै नाही। जौ सिंचै तौ पौ मन माही। इस ही मह जिसकी पत राखै, तिस साधु चौर ढाली है। जो सूरा तिस ही होए मरना, जो भागै तिस जोनी फिरना। जो वरताए सोई पल मानै, बुझ हुक्मै दुरमत जाली है। जित जित लावै तित तित लगना, कर कर वेखै अपने जचना। नानके पूर्ण सुखदा ते, तू देहता नाम समाली है। मारू महला पंजवां, बिरखै हेठ सब जंत इकट्ठे। एक तत्ते एक बोलन मिठे। अस्त्या दोत पया उठ चले, ज्यों ज्यों औध विहानियां। पाप करेंदड़ सर पर मुठे, अजरा ईल फड़े फड़ कुठे। दोजग पाए सृजनहार, लेखा मंगे बाणियां। संग न कोई पहिया बेबा, माल जोबन तन छोड़ वंजेसा। करण करीम न जातो करता, तिल पीड़े जो कहानियां। खुस खुस लैंदा वस्त पराई, वेखे सुने तेरे नाल खुदाई। दुनिया लभ पया खात अंदर, अगली गल न जानिया। जम जम मरे मरे फिर जमे, बहुत सजाए पया देस लम्मे। जिन कीता तिसे न जानी, अंधा ता दुख सहे प्राणिया। खालक थावो पुला मुठा, दुनिया खेल बुरा रुठ तुठा। सिदक सबूरी संतन मिलियो, वत्तै अपन पाणिया। मौला खेल करे सब आपे, एक अड्डे एक लहर वे आपे। ज्यों नचाए त्यों त्यों नचन, सिर सिर किरत विहानिया। मेहर करे ता खसम ते आई, संता संगत नरक ना पाई। अमृत नाम दान नानक कहो, गुण गीता नित वखाणिया। मारू सोल हे महला पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। साचा सच सोई अवर ना कोई, जिन सिर जीत नहीं फुन गोई। ज्यो पावै त्यों राखो रहना, तुम स्यों क्या मुकराई है। आप यो पाए आप खपाए, आपे सिर सिर तंदै लाए। आपे विचारी गुणकारी, आपे मार्ग लाई है। आपे दाना आपे बीना, आपे आपो पाए पतीना। आपे पौन पानी बेसंतर, आपे मेल मिलाई है। आपे सस सूरा पूरो पूरा, आपे ज्ञान त्यान गुरसूरा। काल जाल जम जो है ना साकै, साचे सो लिवलाई है। आपे पुरख आपे ही नारी, आपे पासा आपे सारी। आपे पिड़ बांधी जा खेलै, आपे कीमत पाई है। आपे पवर फुल फल तारवर, आपे जल थल सागर सरवर। आपे मशकश करनी कर, तेरा रूप ना लखना जाई है। आपे दिनस आपे ही रहनी, आप तीजे गुर की बैनी। आद जुगाद अनाहद अंदनो, कट कट शब्द रजाई है। आपे रतना नूपा मोलो, आपे परखे पूरा तोलो। आपे किस ही कस बक्से, आपे दे लै पाई है। आपे तनख आपे सरबाणा, आपे सुगड़ स्वरूप सियाणा। कहता बगता सुनता सोई, आपे बंत बनाई है। पौन गुरु पाणी पित जाता, उधर संजोगी धरती माता। रैन दिन सदोए दाई दाया, जाखे लैखे लाई है। आपे मछली आपे जाला, आपे गऊ आपे रखवाला। सर्ब जिया जग जोत तुम्हारी, जैसी प्रभ फरमाई है।
ਆਪੇ ਜੋਗੀ ਆਪੇ ਭੋਗੀ ਆਪੇ ਰਸੀਆ ਪਰਮ ਸੰਜੋਗੀ ਆਪੇ ਵੇ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਨਿਰਭਉ ਤਾੜੀ ਲਾਈ ਹੈ ਖਾਣੀ ਬਾਣੀ ਤੁਜੈ ਸਮਾਣੀ ਜੋ ਦਿਸੈ ਸਭ ਆਵਣ ਜਾਣੀ ਸਹੀ ਸਾਹ ਸੱਚੇ ਵਾਪਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਬੁਝਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਾਚੇ ਭਰਪੂਰਾ ਅਫਰਿਓ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹੋ ਸਦਾ ਤੂੰ ਨਾ ਤਿਸ ਦਿਲ ਨਾ ਤੁਮਾਈ ਹੈ ਕਾਲ ਬਿਕਾਲ ਭਏ ਦੇਵਾਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸਹਿਜ ਰਸ ਅੰਤਰ ਮਾਨੇ ਆਪੇ ਮੁਕਤ ਤ੍ਰਿਪਤ ਵਰਦਾਤਾ ਭਗਤ ਪਾਏ ਮਨ ਭਾਈ ਹੈ ਆਪ ਨਿਰਾਲਮ ਗੁਰਗਮ ਗਿਆਨਾ ਜੋ ਦਿਸੈ ਤੁਝ ਮਹੇ ਸਮਾਨਾ

ऐसा जय गुण प्रगासन जति सती संतोखी आपे आपे कार कमाई है। जिस करना सो कर कर वेख कोई न मिटे साचे लेख है। आपे करे कराए आपे आपे देवड़े आई है। पंच चोर चंचल चित चल है पार कर जो है कर नहीं पल है। काया नगर टह टह टेरी बिन शब्द पत जाई है। गुरते बूझै त्रिपवन सूझै मनसा मार मन ऐस्यों लूझै। जो तुद सेवै से तुद ही जेहे निरपो बाल सिखाई है। आपे सुरग मछ पयाला आपे जो सुरूपी बाला जटा बिकट बिकराल सुरूपी रूप ना रेख्या काई है। बेदक ते भी भेद ना जाता ना तिस मात पिता सुत प्राता। सगले सैल्यो पाए समाए अलखना लखना जाई है। कर कर था की मीत कनेरे कोई ना काटे अब गुण मेरे। सुर नर नाथ साहिब सब ना सिर पाए मिले पौ जाई है। भूले चूके मार्ग पावे या भुलाए तू है समझावे। बिन नावे मैं अवर ना दिसे नामो गत मित पाई है। गंगा जमुना केल केदारा कांसी कांति पुरी दोबारा। गंगा सागर बेणी संगम आठ साठ अंक समाई है। आपे सिद्ध साधक विचारी आपे राजन पंचांकारी। तख्त बह अदली प्रव आपे परम भेद पौ जाई है। आपे काजी आपे मुल्ला आप या भुल ना कबहू भुला। आपे मेहर दया पदाता ना किसे को बैराई है। जिस बख्से तिस दे वडियाई सबसे दाता तिल ना तुमाई। भरपुर तार रहा ने केवल गुप्त प्रगट सब ठाई है। क्या साला ही अगमिया पार साचे सृजन हार मुरार। जिसनो नदर करे तिस मेले मेल मिले मेल आई है। ब्रह्मा विष्णु महेश द्वार उबे सेवै लख्या पार। होर केती दर दिसे बिल लांदी मैं गणतना आवै काई है। साची कीर्त साची बाणी होर ना दिसे बेद पुराणी। पूंजी साच सच्चे गुण गावा मैं तर होर ना काई है। जुग जुग साचा है पी होसी कौन न मुआ कौन न मरसी। नानक नीच कह बेनंती दर देखो लिवलाई है। मारू महला पहला दूजी दुरमत अन्नी बोली काम क्रोध की कच्ची चोली। कारवार सहज न जाने शोहर बिन पर नींद न पाई है। अंतर अगन जलै पड़क हारे मनमुख तके कुंडा चारे। बिन सतगुर सेवे क्यों सुख पाई है साचे हाथ वडाई है। काम क्रोध अहंकार निवारे तस्कर पंच शब्द संघारे। ज्ञान खड़गलै मन स्यों लूजै मनसा मनै समाई है। मां की रकत पिता बिंद तारा मूर्त सूरत कर पारा। जोत दात जेती सब तेरी तू करता सब ठाई है। तुझ ही किया जमन मरना गुरते समझ पड़ी क्या डरना। तू दयाल दया कर देख दुख दर्द शरीर हो जाई है। निज कर बैस रहे।

गुर पूरे बिन मुक्त ना होई, सच नाम जप लाहा हे, पड़े मन मुख पर बिद नहीं जाना, नाम ना बूझै भरम भुलाना, लैके वड्डी देने उगाही, दुरमत का गलफाहा हे, सिमरत शास्त्र पड़े पुराना, वाद वखाणे तत ना जाना, विण गुर पूरे तत ना पाई है, सच सूचे सच रहा हे, सब सा लाहे सुन सुन आखै, आपे दाना सच पर रखै, जिन को नजर करे प्रभे अपनी, गुरमुख शब्द सलाहा हे, सुन सुन आखै केती बाणी, सुन कहिए को अंत ना जानी, जा को लख

जो जन्मे ते सर पर मरना किरत पया सिर साहा है। संजोग विजोग मेरे प्रभ की है, सृष्टि उपाए दुखा सुख दिए। दुख सुख ही ते पै निराले, गुरमुख शीर्ष नहा है। नीके साचे केवा पारी, ससव दल गुर विचारी। सच्चा वखर जिस तन पलै, सब सच्चै ओ महा है। काची समी टोटा आवै, गुरमुख वणज करे प्रभावै। पूंजी साबत रस सलामत, चूका जमका फाहा है। सबको बोलै अपन भाणै, मनमुख दूजे बोल न जाणै। अंदले कीमत अंदली बोली, आए गया दुखता है। दुख में जन्मै।

सुन कलाय परंपर धारी आप निरालम अपरे अपारी आपे कुदरत कर कर देख सुनो सुन उपाएगा पौन पानी सुनै ते साजे सृष्टि उपाए काया गणराजे अग्न पानी जियो जो तुम्हारी सुन्ने कला रहाएगा सुनो ब्रह्मा विष्णु हे सो पाए सुन्ने वरते जुग सबाए इस पद विचारे सो जन पूरा तिसमलिए परम चुकाएगा सुनो सप्त सरोवर थापे जिन साजे विचारे आपे तित सतसर मनुआ गुरमुख नावै फिर बाहुड़ जो न पाएगा सुनो चंद सूरज गैनारे तिसकी जोत तिर पवन सारे।

आपे बख्श लह सुख पाए, सद ही नाम निवासी है। एहो तम धरती शब्द बीजया पारा, हर साचे सेती वण जवा पारा। सच धन जमया तोट ना आवै, अंतर नाम निवासी है। हर जियो अवगण आरे नो गुण की जय, आपे बख्श लह नाम दी जय। गुरमुख होवै सो पत पाए, इकत नाम निवासी है। अंतर हर तन समझ न होई, गुर प्रसादी बूझै कोई। गुरमुख होवै सो तन पाए, सदी नाम निवासी है। अनलवाओ परम पुलाई, माया मोहे सोध ना काई। मनमुख अंधे किछु ना सूझै, गुरमत नाम प्रगासी है। मनमुख हौं मैं माया सूते, अपना कर ना संभालै अंत विगूते। पर निंदा करै बो चिंता जाले, दुखे दुख निवासी है। आपे करतै कार कराई, आपे गुरमुख दे बुझाई। नानक नाम रते मन निर्मल, नामे नाम सवारी है। मारू महला तीजा, एको सेवी सदा थिर साचा। दूजे लागा सब जग काचा, गुरमती सदा ससा लाही। साचे ही सच पति जय है। तेरे गुण बहुते मैं एक ना जाता, आपे लाए लय जग जीवन दाता। आपे बख्शे दे वड़े आई।

बिन नावे डूब मोए बिन नीरा, साचा पूरे सतगुर बूझ बुझाई, नामे राता पवित शरीरा, बिन नावे डूब मोए बिन नीरा, आवे जावे नाम नहीं बूझे, एक ना गुरमुख शब्द पछाता है, पूरे सतगुर बूझ बुझाई, बिन नावे मुक्त के नै ना पाई, नामे नाम मिले वड्याई, सहज रह रंग राता है, काया नगर टह टह टेरी, बिन शब्द चूके नहीं फेरी, साच सलाहे साच समावे, जिन गुरमुख एको जाता है, जिसनो नजर करे सो पाए, साचा शब्द वसै मन आए, नानक नाम रते निरंकारी, दर साचे साच पछाता है, मारू सोल है तीजा, आपे करता सब जिस करना, जी जंत सब तेरी सरना, आपे गुप्त वरतै सब यंत्र, गुर कै शब्द पछाता है, हर के भगत भरे भंडारा, आपे बख्शे शब्द विचारा, जो तुद भावै सोई करसै, सच्चे स्यो मन राता है।

लाए, जिनको नजर होवे गुर केरी हर जियो आ मिलाएंदा। काया कोट पक्के हट नाले, गुरमुख लेवे वस्त संभाले। हर का नाम ते आए दिन राती, उत्तम पदवी पाएंदा। आपे सच्चा है सुखदाता, पूरे गुर कै शब्द पछाता। नानक नाम सलाहे साचा, पूरे भाग को पाएंदा। मारू महला तीजा, निरंकार आकार उपाया, माया मोह हुक्म बनाया। आपे खेल करे सब करता, सुन साचा मन वसाएंदा। माया माई त्रैगुण पर सूत जमाया, चारे वेद ब्रह्मे नु फरमाया। वरे महावार्थ ती कर, इस जग में सोजी पाएंदा। गुरसेवा ते करनी सार, राम नाम राखो और तार। गुरबाणी वर्ती जग अंतर, इस बाणी ते हर नाम पाएंदा। वेद पढ़े अंदर नवास संभाले, नाम ना चेतै बद्दा जमकाले। दूजे पाए सदा दुख पाए, त्रैगुण परम भुलाएंदा। गुरमुख एक सस्यों लिवलाए, त्रिबद मनसा मन समाए। साचे शब्द सदा है मुक्ता, माया मोह चुकाएंदा। जो तुर राते से हुण राते, गुर प्रसादी सहजे माते। सतगुर सेव सदा प्रपाया, आपे आ मिलाएंदा। माया मोहे भरमन पाए, दूजे पाए लगा दुख पाए। सूहा रंग दिन थोड़ा होवै, सूहा रंग दिन थोड़े होवै, इस जांदे ब्रह्म न लाएंदा। एहो मन पै पाए रंगाए, इतरंग साचे माए समाए। पूरे भाग को एहो रंग पाए, गुरमती रंग चढ़ाएंदा। मनमुख बहुत करे अभमान, दरगह कभी ना पावे मान। दूजे लागे जन्म गवाया, बिन बूझे दुख पाएंदा। मेरा प्रभ अंदर आ पुलकाया, गुर प्रसादी हर मिले मिलाया। सच्चा प्रभ सच्चा वापारा, नामा मुल्क पाएंदा। इस काया की कीमत किने ना पाई, मेरा ठाकरे ए बणत बनाई। गुरमुख होवै सो काया सोदै, आपे आ मिलाएंदा। काया विच तोटा काया विच लाहा, गुरमुख खोजे वे परवाहा। गुरमुख वणज सदा सुख पाए, सहजे सहज मिलाएंदा। सच्चा महल सच्चे भंडारा, आपे देवै देवनहारा। गुरमुख साला हे सुखदाते, मन मेले कीमत पाएंदा। काया विच वस्त कीमत नहीं पाई, गुरमुख आपे दे वड़ियाई। जिसदा हट सोई वथ जाणै, गुरमुख दे न पछोताएंदा। हर जियो सब मैं रिया समाई, गुर प्रसादी पाया जाई। आपे मेल मिलाए, आपे सबदे सहि समाएंदा। आपे सच्चा शब्द मिलाए, शब्दे विचों परम चुकाए। नानक नाम मिले वड्याई, नामे ही सुख पाएंदा। मारू महला तीजा, अगमा गोचर वे प्रवाहे। आपे मेहरवान अगम्या था हे, अपड़ कोई न सकै तिसनो। गुरसबदी मेलाया, तुदनो सेवै जो तुद पावै। गुर कै शब्दे सच समावै, अनदिन गुण रवै दिन राती। रसना हर रस पाया, शब्द मरै से मरण सवारै। हर के गुण हिरदय उर धारै, जन्म सफल हर चरणी लागे। दूजा पाओ चुकाया, हर जियो मेले आ मिलाए। गुर कै शब्दे आप गवाए, अनदिन सदा हर भगती राते। इस जग में लाहा पाया, तेरे गुण कहा मैं कहन न जाई। अंत ना पारा कीमत नहीं पाई, आपे दया करे सुखदाता। गुण में गुणी समाया, इस जग में मोह है पासारा। मनमुख अज्ञानी आंदे अंधारा, धंधे तावत जन्म गवाया। बिना मैं दुख पाया, कर्म होवे ता सतगुर पाए। हम मैं मैल शब्द जलाए,
मन निर्मलो ज्ञान रतन चानन अज्ञाना देर गवाया। तेरे नाम अनेक कीमत नहीं पाई, सच नाम हर हृदय वसाई। कीमत कौन करे प्रभ तेरी, तू आपे सही समाया। नाम अमोलक अगम अपारा, ना को होवा तोलनहारा। आपे तोले तोल तोलाए, गुर शब्दी मेल तोलाया। सेवक सेवै करै अरदास, तू आपे मेल बहल पास। सबना जिया का सुखदाता, पूरे कर्म ते आया। जत सत संजम जे सच कमावै, एहो मन निर्मलो जे हर गुण गावै। इस बिख मैं अमृत प्राप्त होवै, हर जियो मेरे पाया। जिसनो बुझाए सोई बूझै, हर गुण गावै अंदर सूझै। हम मैं मेरा ठाक रहाए, सहजे ही सच पाया। बिन कर्मा होर फिरै कनेरी, मर मर जम्मै चुकै ना फेरी। बिख का राता बिख कमावै, सुख न कबहू पाया। बहुते पेख करे पेख तारी, बिन शब्दे हम मैं किने ना मारी। जीवत मरै ता मुक्त पाए, सच्चै नाए समाया। अज्ञान तृष्णा इस्तने जलाए, तिसदी बूझै जे गुर शब्द कमाए। तन मन शीतल क्रोध निवारे, हम मैं मार समाया। सच्चा साहब सच्ची वडियाई, गुर प्रसादी वर लै पाई। नानक एक है बेनंती, नामे नाम समाया। मारू महला तीजा, नदरी भगता लेहो मिलाए। भगत सलाहन सदा लिवलाए, तव सरनाई उबरै करते आपे मेल मिलाया। पूरे शब्द भगत सुहाई, अंतर सुख तेरे मन भाई। मंत्र सच्ची भगती राता, सच्चे सों चितलाया। हम मैं विच सद जल शरीरा, कर्म होवै पेटै गुरपूरा। अंतर अज्ञान शब्द बुझाए, सतगुर ते सुख पाया। मनमुख अंधा अंध कमाए, बहु संकट जोनी परमाए। जम का जेवड़ा कदे न काटै, अंते बहु दुख पाया। आवन जाना शब्द निवारे, सच नाम रखै उर तारे। गुर कै शब्द मरै मन मारे, हों मैं जाए समाया। आवन जाना पर जिवे गोई, बिन सतगुर थिर कोई न होई। अंतर जोत शब्द सुख वसिया, ज्योति जोत मिलाया। पंच दूत चितवै विकारा, माया मोका हो पसारा। सतगुर सेवे ता मुक्त होवै, पंच दूत वस आया। बाज गुरु है मोह गुबारा, फिर डुबै वारो वारा। सतगुर भेटे सच दरड़ाए, सच नाम मन पाया। साचा दर साचा दरबारा, सच्चे सेवै शब्द प्यारा। सच्ची तुन सच्चे गुण गावा, सच्चे माहे समाया। घरै अंदर को घर पाए, गुर कै शब्दे सहि सुभाए। ओथै सोग वियोग न व्यापै, सहजे सहि समाया। दूजै पाए दुष्टां का वासा, पौंदे फिरै बहु मोह प्यासा। कुसंगत बहै सदा दुख पावै, दुखो दुख कमाया। सतगुर बाजां संगत ना होई, बिन शब्दे पार ना पाए कोई। सहजे गुण रवै दिन राती, ज्योति ज्योत मिलाया। काया बिरख पंखी विच वासा, अमृत चुगै गुर शब्द निवासा। उड़ै ना मूले ना आवै ना जाही, निजकर वासा पाया। काया सोधै शब्द विचारै, मोठ गौली भरम निवारै। आपे कृपा करे सुखदाता, आपे मेल मिलाया। सद ही नेड़ै दूर ना जानो, गुर कै शब्द निजीक पछाणो। बिगसै कमल किरण परगासै, प्रगट कर देखाया। आपे करता सच्चा सोई, आपे मारजी वाले अवर ना कोई। नानक नाम मिलै वडियाई, आप गवाए सुख पाया। मारू सोलहे महला चौथा, एको अंकार सतगुर प्रसाद।
ਸੱਚਾ ਆਪ ਸਵਾਰ ਨਹਾਰਾ, ਅਵਰਨਾ ਸੂਜਿਸ ਬੀਜੀ ਕਾਰਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚ ਵਸੈ ਕਟ ਅੰਤਰ, ਸਹਿਜੇ ਸੱਚ ਸਮਾਈ ਹੈ। ਸਭਨਾ ਸੱਚ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸਹਿ ਸਮਾਹੀ, ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰਤੋ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਚਿਤ ਲਾਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਗਿਆਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਪੂਜਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੀ ਅਵਰਨਾ ਦੂਜਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਨਾਮ ਰਤਨ ਧਨ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਪਾਈ ਹੈ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋ ਦੂਜੇ ਲਾਗੇ, ਆਵੇ ਜਾਏ ਭ੍ਰਮ ਰਹਿ ਅਭਾਗੇ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਫਿਰ ਗਤ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਿ ਸਰਨਾਈ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਸਦਾ ਹੈ ਸਾਚੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਮੰਗੋ ਨਾਮਾ ਜਾਚੀ, ਹੋ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਹਰ ਜੀਉ, ਰੱਖ ਲੇਵੋ ਗੁਰ ਸਰਨਾਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੁਆਇਆ, ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਆਇਆ, ਤੈ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵਜੈ ਧੁਨ ਬਾਣੀ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿ ਸਮਾਈ ਹੈ। ਜਿਨ ਕਉ ਕਰਤੈ ਤੁਰ ਲਿਖ ਪਾਈ, ਅੰਦਿਨ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰਤ ਵਿਹਾਈ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਸੀਜੈ ਨਾਹੀ, ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਚਿਤ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਆਪੇ ਦੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਲੇ, ਆਪੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਨਾਮ ਦੇਵੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਮਾਈ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟ ਭਇਆ, ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਸਹਿਜੇ ਲਇਆ, ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਉ ਸਦਬਲ ਜਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸੂਰ ਨਿਸ ਮਿਟਿਆ ਅੰਧਿਆਰਾ, ਅਗਿਆਨ ਮਿਟਿਆ ਗੁਰ ਰਤਨ ਅਪਾਰਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਅਤ ਭਾਰੀ, ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਸੁਖ ਪਾਈ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟੀ ਹੈ ਸੋਏ, ਚਹੁ ਜੁਗ ਨਿਰਮਲ ਹੱਛਾ ਲੋਏ, ਨਾਮੇ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਨਾਮ ਰਿਆ ਲਿਵਲਾਈ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਸਹਿਜੇ ਜਾਗੈ ਸਹਿਜੇ ਸੋਵੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਸਮਾਏ ਸਮਾਵੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਈ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਮੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਆਖ ਵਖਾਣੀ, ਹਰ ਹਰ ਕਰਤ ਸਦਾ ਮਨ ਬਿਕਸੈ, ਹਰ ਚਰਨੀ ਮਨ ਲਾਈ ਹੈ। ਹਮ ਮੂਰਖ ਅਗਿਆਨ, ਗਿਆਨ ਕਿਛ ਨਾਹੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸਮਝ ਪੜੀ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਹੋ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਹਰ ਜੀਉ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਤਾ ਤਿਨ ਏਕ ਪਛਾਤਾ, ਸਰਬੇ ਰਵ ਰਹਿ ਆ ਸੁਖਦਾਤਾ, ਆਤਮ ਚੀਨ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਸੁਰਤ ਸਮਾਈ ਹੈ। ਜਿਨ ਕਉ ਆਦ ਮਿਲੀ ਵਡਿਆਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਲਿਵਲਾਈ, ਆਪ ਮਿਲਿਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ, ਨਾਨਕ ਅੰਕ ਸਮਾਈ ਹੈ। ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰ ਅਗਮਿਆ ਗੋਚਰ ਸਦਾ ਅਵਨਾਸੀ, ਸਰਬੇ ਰਵ ਰਹਿਆ ਘਟਵਾਸੀ, ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰਨਾ ਕੋਈ ਦਾਤਾ, ਹਰ ਤਿਸੈ ਸਿਰੇ ਵੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਉ ਰਾਖੈ ਹਰ ਰਾਖਣ ਹਾਰਾ, ਤਾਂ ਕੋ ਕੋਈ ਨਾ ਸਕ ਸਮਾਰਾ, ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵੋ ਸੰਤੋ, ਜਾਂ ਕੀ ਉਤਮ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਾਪੈ ਕਿਸ਼ਕ ਥਾਉ ਨਾਹੀ, ਤਾਂ ਕਰਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸਮਾਹੀ, ਸੂਕੇ ਤੇ ਫੁਨ ਹਰਿਆ ਕੀ ਤੋਨ, ਹਰ ਧਿਆਵੋ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਜੀਆ ਕੀ ਵੇਦਨ ਜਾਣੈ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਹਉ ਕੁਰਬਾਣੈ, ਤਿਸ ਆਗੈ ਜਨ ਕਰ ਬੇਨੰਤੀ, ਜੋ ਸਰਬ ਸੁਖਾਂ ਕਾ ਦਾਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਜੀਐ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਤੇ ਸਿਓ ਕਿਸ਼ਨਾ ਕਹੀਐ ਅਜਾਣੈ, ਮੂਰਖ ਸਿਓ ਨਹਿ ਲੂਜ ਪੁਰਾਣੀ, ਹਰ ਜਪੀਐ ਪਦ ਨਿਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਨਾ ਕਰ ਚਿੰਤ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਰਤੇ, ਹਰ ਦੇਵੈ ਜਲ ਥਲ ਜਨਤਾ ਸਭ ਤੈ, ਅਚਿੰਤ ਦਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ, ਵਿੱਚ ਪਾਥਰ ਕੀਟ ਪਖਾਣੀ ਹੈ। ਨਾ ਕਰ ਆਸ ਮੀਤ ਸੁਤ ਪਾਈ, ਨਾ ਕਰ ਆਸ ਕਿਸੈ ਸਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀ ਪਰਾਈ, ਬਿਨ ਹਰ ਨਾਵੈ ਕੋ ਬੇਲੀ ਨਾਹੀ, ਹਰ ਜਪੀਐ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਆਨ ਦਿਨ ਨਾਮ ਜਪੋ ਬਨਵਾਰੀ, ਸਭ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਪੂਰੈ ਥਾਰੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪੋ ਪਵ ਖੰਡਨ, ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ ਹੈ।
ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਸਹਿਜ ਹੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ। ਜੋ ਸਰਨ ਪਰੈ ਤਿਸ ਕੀ ਪਤ ਰਾਖੈ, ਜਾਏ ਪੁੱਛੋ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਹਰ ਸੇਵਾ ਲਾਏ ਸੋਈ ਜਨ ਲਾਗੈ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮ ਪਉ ਭਾਗੈ। ਵਿਚੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਦਾ ਰਹਿ ਉਦਾਸੀ, ਜੋ ਕਮਲ ਰਹਿ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਵਿਚ ਹਉਮੈ ਸੇਵਾ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਏ, ਜਨਮ ਮਰੈ ਫਿਰ ਆਵੈ ਜਾਏ। ਸੋ ਤਪ ਪੂਰਾ ਸਾਈ ਸੇਵਾ, ਜੋ ਹਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਹਉ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਆਖਾਂ ਸਵਾਮੀ, ਤੂੰ ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਕਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ।

जा कौ मेहर मेहर मेहरवाना, सोई मर्द मर्द मर्दाना, सोई शेख मसाए कहा जी, सो बंदा जिस नजर नरा। कुदरत कादर करण करीमा, सिबत मोहब्बत अथा रहीमा, हक हुक्म सच खुदाया बुझ, नानक बंद खलास तरा। मारू महला पंजवा, पार ब्रह्म सब ऊच बिराजे, आपे थापो थापे साजे, प्रभ की शरण गहत सुख पाई है, किश भौ ना व्यापै बालका। गर्भ अग्न में जिन्हें उबारिया, रक्त किरम में नहीं संघारिया, अपना सिमरण दे प्रतपालिया, ओह सगल कटा का मालका। चरण कमल शरण आई आया, साध संग है हर जस गाया, जन्म मरण सब दुख निवारे, जप हर हर पौ नहीं काल का। समर्थ अकथ है गोचर देवा, जी जंत सब ता की सेवा, अंडज जेरज सेतज उत्पुज, बहु प्रकारी पालका। तिसै प्राप्त होए निधाना, राम नाम रस अंतर माना, कर गह लीने अंध कूपते, विरले के ही सालका। आदि अंत मध प्रभ सोई, आपे करता करे सोई, भ्रम पौ मिटिया साध संगते, दालद ना कोई कहलका। ऊतम बाणी गाओ गोपाला, साध संगत की मंगोर वाला, बासन मेट निबासन होई है, कलमर सगले जालका। संता की है रीत निराली, पार ब्रह्म कर देखै नाली, सा सा सा राधन हर हर, क्यों सिमरत की जय आलका। जै देखा तै अंतर जामी, निमखना विसराओ प्रभ मेरे स्वामी, सिमर सिमर जीवै तेरे दासा, बन जल पूर्ण थालका। तत्ती वाव ना तां कौ लागै, सिमरत नाम अंदन जागै, अनद बिनोद करे हसिमरन, तिस माया संग ना तालका। रोग सोग दुख तिस नाही, साध संग हर कीर्तन गाही, अपना नाम देह प्रप्रीतम, सुन बेनंती खालका।

गुरपुरा खिन खिन नमस्कारी, तन मन अर्प धरी सब आगै, जग मै नाम सुहावना, सो ठाकर क्यों मनो विसारे, जियो पिंड दे साज सवारे, सास ग्रास माले करता कीता अपना पावना, जाते बिरथा को नाही, आठ पैर हर रख मन माही, साध संग भज अचुत स्वामी, दरगह सोभा पावना, चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध, नाम निधान सहज सुख नौ निध, सर्व कल्याण जे मन मैं चाहै, मिल साधु स्वामी रावणा, शास्त्र सिमरत वेद वखाणी, जन्म पदार्थ जीत पराणी, काम क्रोध निंदा पर हरिय, हर रसना नानक गावना, जिस रूप ना रेखिया कुल नहीं जाती, पूर्ण पूर रहा दिन राती, जो जो जपै सोई वडभागी, बहुना जो नी पावना, जिसनो बिसरै पुरख विधाता, जलता फिरै रह नित ताता, अकिरत घणे कौ रखै ना कोई, नरक कोर मैं पावना, जियो प्राण तन तन जिन साजिया, मात गर्भ मैं राख निवाजिया, तिस स्यों प्रीत शाड अनराता, काहू सिरै ना लावना।

तार अनुग्रह स्वामी मेरे, घट घट वसै सबन कै नेरे, हाथ मारे कछुए नाही, जिस जनाए तसै जनावना, जां कै मस्तक तुर लिख पाया, तिसी पुरख ना व्यापै माया, नानक दास सदा सरनाई, दूसर लवै ना लावना, आग्या दुख सुख सब कीने, अमृत नाम बिरलहि चीने, ताकि कीमत कहन ना जाई, जत का तो ही समावना, सोई भगत सोई वरदाता, सोई पूर्ण पुरख विधाता, बाल सहाई सोई तेरा, जो तेरे मन पावना, मृत दुख सुख लिख पाए, तिल नहीं बदै कटै ना कटाए, सोई होए जे करते पावै, कह कह आप मजावना, अंध कूपते से ही काढ़े, जन्म जन्म के टूटे गांडे, कृपा तार रखे कर अपने, मिल साधु गोविंद त्यावना, तेरी कीमत कहन न जाई, अचरज रूप वड्डी वड्याई, भगत दान मंगे जन तेरा, नानक बल बल जावना, मारू वार महला तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सलोक

पौड़ी। पाणे हुक्म नायोन पाणे सुख पाया, पाणे सतगुर मेलेओन पाणे सच ते आया। पाणे जेवड होर दात नाही, सच आख सुनाया। जिनको पूर्व लिखिया तिन सच कमाया, नानक ते शरणागति जिन जग त्यो पाया। सलोक महला तीजा। जिनको अंदर ज्ञान नहीं, पै की नाही बिंद, नानक मोया का क्या मारना, जे आप मारे गोविंद। महला तीजा। मन की पत्री वाचनी, सुखी हूं सुखसार, सो ब्राह्मण पलाया खीय, जे बुझे ब्रह्म विचार। हर साल आहे हर पढ़े, गुर कै शब्द विचार, आया ओ प्रवान है, जे कुल का करे उधार। अगे जात न पुछिए, करनी शब्द है सार। होर कूड़ पढ़ना कूड़ कमावना, बिखिया नाल प्यार। अंदर सुख ना हो वही, मनमुख जन्म खुवार। नानक नाम रते से उबरे, गुर कै हित अपार। पौड़ी। आपे कर कर वेखदा आपे सब सच्चा, जो हुक्म न बूझे खसम का सोई नर कच्चा। जित भावै तित लाएंदा, गुरमुख हर सच्चा। सबना का साहिब एक है, गुर सबदी रचा। गुरमुख सदा सलाही है, सब तिस दे जच्चा। ज्यो नानक आप नचाएंदा, तिवही को नचा सुद। मारू वार महला पंजवां, डखणे महला पंजवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तू चाहो सज

देख महला पंजवा उठी चालू कंतले हों पसी तो दीदार काजल हारत मोल रस बिन पसे हबरा शार पौड़ी तू सच्चा साहेब सच सच सब तारिया गुरमुख की तो थाट सिरज संसारिया हर आग्या होए बेद पापुन विचारिया ब्रह्मा विष्णु महेश उत्रै गुण विस्थारिया नवखंड प्रथमी साज हर रंग सवारिया वेकी जन तो पाए अंतर कल तारिया तेरा अंत ना जाने कोए सच सिरजन हारिया तू जाने सब विद्याप गुरमुख निस्तारिया डखणे महला पंजवा जे तू मित्र असाढ़ा।

भगवाना, तेरा जन एक याद कोई, काम क्रोध लोमो बिरबरजित, हर पद चीने सोई रहाओ। राज गुण तम गुण सत गुण कही है, एह तेरी सब माया, चौथे पद को जो नर चीने, तिन ही परम पद पाया। तीर्थ वर्त नेम सो संयम, सदा रह निकम्मा, तृष्णा अर माया परम चूका, चितवत आत्म रामा। जेह मंदर दीपक परगासिया, अंधकार तह नासा, निरपव पूर रहे परम पागा, कह कबीर जनदासा। किन्ही बनजिया कांसी तांबा, किन्ही लौंग सुपारी, संतो बनजिया नाम गोविंद का, ऐसी खेप हमारी। हर के नाम के व्यापारी, हीरा हाथ चढ़िया निर्मोलक, छूट गई संसारी रहाओ। साचे लाए तो सच लागे, साचे के व्यवहारी, साची बस्त के पार चलाए, पहुंचे जाए पंडारी। आपै रतन जवाहर मानक, आपै है पासारी, आपै दह दस आप चलावे, निचल है व्यापारी। मन कर बैल सुरत कर पेंडा, ज्ञान गुण पर डारी, कहत कबीर सुनोरे संतहो, निभी खेप हमारी। री कलवार गवार मूड मत, उल्टो पवन फेरावो, मन मत वार मेर सर पाठी, अमृत तार चुआवो। बोलो पहिया राम की दुहाई, पीवो संतो सदा मत दुर्लभ, सहजे प्यास बुझाई रहाओ। पै बिच पाओ पाए को बूझै, हर रस पावै पाई, जेते कट अमृत सब ही मैं, पावै सह पियाई। नगरी एकै नौ दरवाजे, तावत बरज रहाई, त्रिकुटी छूटै दसवां दर खूलै, तमन खीवा पाई। अपै पद पूर ताप तह नासे, कह कबीर बिचारी, उबट चलन ते एह मद पाया, जैसे खोंद खुमारी। काम क्रोध

नदर करे सतगुरु मिलाए, नानक हिरदा नाम वसाए, पहरो महला तीजा। नामे उदरे सब जितने लो, गुरमुख जिन्ना प्राप्त होए। हर जियो अपनी कृपा करे, गुरमुख नाम वड्याई दे रहाओ। राम नाम जिन प्रीत प्यार, आप उदरे सब को लो धारण हार। बिन नावे मन

प्रसाद परम पद पाया सब इच्छ पूजा मनहार रहाओ। सब मैं एक और अव रहया गुरबिन बूझना पाए गुरमुख प्रगट हुआ मेरा हर प्रभ अंदन हर गुण गाए। सुखदाता हर एक है होर थे सुख ना पाहे सतगुरु जिनी ना सेव्या दाता से अंत गए पछताहे। सतगुर सेव सदा सुख पाया फिर दुख ना लागे ताए नानक हर भगत प्राप्त होई ज्योति जो समाए। पहरो महला तीजा बाज गुरु जगत बौराना पूला चोटा खाई मर मर जमे सदा दुख पाए दर की खबर ना पाई। मेरे मन सदा रहो सतगुर की सरना हृदय हर नाम मीठा सद लागा गुर शब्दे पवजल तरना रहाओ। पेख करे बहुत चित डोले अंतर काम क्रोध अहंकार अंतर तिसा भूखयत बहुती भौकत फिरै दरबार। गुर कै शब्द मरै फिर जीवै तिनको मुख द्वार अंतर सांत सदा सुख होवै हर राख्या और तार। ज्यो तिस पावै तिवै चलावै करना किशु ना जाई नानक गुरमुख शब्द समा

नाम बिना सब दुनिया शार, अचरज तेरी कुदरत तेरे कदम सलाह, गनीम तेरी सिफत सच्चे पातशाह, नी तरिया तरपन खुदाए, गरीब निवाज दिन रहन ते आए, नानक कहो खुद खसम मेहरवान, अलो न विसरे दिल जी प्राण, पहराओ महला पंजवा, साज पदार्थ गुरमुख लहो, प्रभ का पाना सतकर सहो, जीवत जीवत जीवत रहो, राम रसायन ने तुठ पीवाओ, हर हर हर हर रसना कहो रहाओ, कलयुग मैं कनाम उदार, नानक बोले ब्रह्म विचार, पहरो महला पंजवा, सदगुर सेव सर्व फल पाए, जन्म जन्म की मैल मिटाए, पदत पावन प्रभ तेरो नाओ, पूर्व कर्म लिखे गुण गाओ, रहाओ साधु संग होवे उदार, सोभा पावे प्रभ कै द्वार, सर्व कल्याण चरण प्रभ सेवा, तूर बंश है सब सुर नर देवा, नानक पाया नाम निदान, हर जप जप उदरिया सगल जहान, भैरो महला पंजवा, अपने दास कौ कंठ लगावे, निंदक कौ अगन में पावे, पापी ते राखे नारायण, पापी पापी की गत कथु नाही, पापी पचया आप कमायण, रहाओ दास राम जीओ लागी प्रीत, निंद की होई विपरीत, पार ब्रह्म अपना बिरद प्रगटाया, दोखी अपना कीता पाया, आए न जाई रहया समाई, नानक दास हर की सरनाई, राग पहराओ महला पंजवा, चौपदे कर दूजा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद श्री तर मोहन सगले पावन, निरंकार सुखदाता, ऐसा प्रभ छोड़ करे अन सेवा, कौन बिख्या रस माता, अरे मन मेरे तू गोविंद पाज, अवर पाव सगल मैं देखे, जो चितवी है तित बिगरस काज, रहाओ ठाकर छोड़ दासी को सिमरै, मनमुख अंध ज्ञाना, हर की भगत करे तिन निंदै, निगुरे पशु समाना, जियो पिंड तन तन सब प्रभ का, स्वागत कहते मेरा, अहम बुद्ध दुर्मत है मैली, बिन गुर भव जल फेरा, होम जग जप तप सब संयम, तट तीर्थ नहीं पाया, मिटाया पे सरनाई, गुरमुख नानक जग तराया, पहरो महला पंजवा, बन मैं पेख्यो तरण मैं पेख्यो, ग्रह पेख्यो उदासाए, दंड तार जट तारै पेख्यो, वर्त नेम तीर्थाए, संत संग पेख्यो मन माए, ऊप पयाल सर मैं पूर्ण, रस मंगल गुण गाए, रहाओ जोग पेख सन्यासै पेख्यो, जत जंगम कपड़ाए, तपी तपी सरमन मैं पेख्यो, नट नाटक निरताए,

अगह बेअंत स्वामी न कीम कीम कीम आए, जन नानक तन कह बल बल जाइए, जेह कट प्रगटी आए। पहराओ महला पंजवा, निकट बुझै सो बुरा क्यों करे, बिख संचय नित डरता फिरै, है निकट यार भेद न पाया, बिन सतगुर सा मोही माया। नेड़े नेड़े सब को कहे, गुरमुख भेद बिरला कोल है, रहाओ निकट ना देखै पर गृह जाए, दर भिरै मिथ्या कर खाए। पैठ गौरी हर संग ना जानिया, बाज गुरु है परम पुलानिया, निकट ना जाने बोले कूड़, माया मोहे मूठा है मूड़। अंतर वास्तव दिसंतर जाए, बाज गुरु है परम पुलाए, जिस मस्त कर्म लिखिया लिलाट, सदगुर सेवे खुले कपाट। अंतर बाहर निकटे सोए, जन नानक आवे ना जावे कोए, पैरो महला पंजवा, जिस तू राखै तिस कौन मारै, सब तुझ ही अंतर सगल संसार, कोट पाव चितवत है प्राणी, सो होवै जे करै चोज विडाणी। राखो राखो कृपा तार, तेरी शरण तेरा दरबार, रहाओ जिन सेवया निरपौ सुखदाता, तिन पौ दूर किया एक प्राता, जो तू करै सोई फन होए, मारै ना राखै दूजा कोए। क्या तू सोचे मा

कर्तार, जैसी ऊपर नजर करे करतार, ते जन के सब का इसवार, तिसका रखा एक को सोए, जन नानक पढ़ना सके कोए, पैरव महला पंजवा।

नाम हमारा भोजन पाओ, नाम हमारा मन का सुहाओ, नाम ना विसरे संत प्रसाद, नाम लै तो अनहद पूरे नाद। प्रभ कृपा ते नाम नौ निध पाई, गुर कृपा ते नाम

तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरे जी प्राण सुखदाता, तू मेरा ठाकर हूं दास तेरा, तुझ बिन अवर नहीं को मेरा। कर कृपा करो प्रभदात, तुमरी उस्तत करो दिन रात रहाओ। हम तेरे जंत तू बजावन हारा, हम तेरे पिखारी दान दे दातारा। तौ प्रसाद रंग रस माणे, घट घट अंतर तुम्हें समाणे। तुमरी कृपा ते जपिए नाओ, सा संग तुमरे गुण गाओ। तुमरी दया ते हुए दर्द विनाश, तुमरी माया ते कमल विगास। हम बलिहार जाऊं गुरुदेव, सफल दर्शन जाकी निर्मल सेव। दया करो ठाकुर प्रभ मेरे, गुण गावे नानक नित तेरे। पैरो महला पंजवा, सब ते ऊच जाका दरबार, सदा सदा ताको जोहार। ऊचे ते ऊचा जाका थान, कोट अग्गा मिटे हर नाम। ते सरनाई सदा सुख होए, कर कृपा जाको मिले सोए रहाओ। जाके करतब लखे ना जाहे, जाका प्रवासा सब कट माहे। प्रगट भया साधु कै संग, भगता राधे अंदन रंग। दें दे तोट नहीं पंडार, खिन मैं थापो थापन हार। जाका हुक्म ना मिटे कोए, सिर पातशाह साचा सोए। जिसकी ओट तिसे की आसा, दुख सुख हमरा तिसी पासा। राख लीनो सब जन का पड़दा, नानक तिसकी उस्तत करदा। पैरो महला पंजवा, रोवन हारी रोज बनाया। बलन बर्तन कौ संबंध चेते आया। बूझ बैराग करे जे कोए, जन्म मरण फिर सोग न होए। बिखिया का सब तंद पसार, विरले की नौना म्याधार रहाओ। त्रिबद माया रही ब्याप, जो लपटानो ते दू संताप। सुख नाही बिन नाम ते आए, नाम निदान वट पागी पाए। स्वांगी स्यों जो मन री जावै, स्वांग उतारे है फिर पछतावै। मेघ की छाया जैसे बर्तन हार, तैसो परपंच मोह बेकार। एक वस्तु जे पावै कोए, पूर्ण काज ताही का होए। गुर प्रसाद जिन पाया नाम, नानक आया सो प्रवान। पैरो महला पंजवा, संत की निंदा जोनी भवना। संत की निंदा रोगी करना, संत की निंदा दुख सहाम। डान दैत निंद कौ जाम, संत संग करै जो बाद। तिन निंदै नाही के साध रहाओ।

है, निंदक की गत कत हूं ना है, आ बीजा पे ही खाहे, चोर जार जुआर दे बुरा, अनहोंदा पार निंदक सिर धरा, पार ब्रह्म के भगत निर्वैर, सो निस्तरै जो पूजै पैर, आद पुरख निंदक पोलाया, नानक कीर्तना जाए मिटाया, पैरो महला पंजवा, नाम हमारे बेदियर नाद, नाम हमारे पूरे काज, नाम हमारे पूजा देव, नाम हमारे गुरु की सेव, गुरपुरे दृढ़ो हर नाम, सब ते उत्तम हर हर काम रहाओ, नाम हमारे मज्जन इशनान, नाम हमारे पूर्ण दान, नाम लैते सगल पवीत, नाम जपत मेरे पाई मीत, नाम हमारे सौन संजोग, नाम हमारे तृप्त सो भोग, नाम हमारे सगले आचार, नाम हमारे निर्मल व्यवहार, जाके मन वस्या प्रभ एक, सगल जना की हर हर टेक, मन तन नानक हर गुण गाओ, साध संग जिस देवे नाओ, पैरो महला पंजवा, निरतन काओ तुम देवो तना, अनक पाप जाहे निर्मल मना, सगल मनोरथ पूर्ण काम, भगत अपने कौ देवो नाम, सफल सेवा गोपाल राय, करण करावन हर स्वामी, ताते बिरथा कोई ना जाए रहाओ, रोगी का प्रभ खंडो रोग, दुखिये का मिटाओ प्रभ सोग, निथावे कहो तुम थान बैठावो, दास अपने कहो भक्ति लावो, निमाने कहो जो दे तो मान, मूड मुग्ध होए चतर सुज्ञान, सगल पयान का पौ नस, जन अपने कह हर मन बस, पार ब्रह्म प्रभ सुख निधान, तत् ज्ञान हर अमृत नाम, कर कृपा संत टहल लाए, नानक साधु संग समाए, पैरो महला पंजवा, संत मंडल में हर मन वसै, संत मंडल में दुर्त सब नसै, संत मंडल में निर्मल दीत, संत संग हो एक प्रीत, संत मंडल तहां का नाओ, पार ब्रह्म केवल गुण गाओ रहाओ, संत मंडल में जन्म मरण रहे, संत मंडल में जम किशु ना कहे, संत संग होए निर्मल बाणी, संत मंडल में नाम वखाणी, संत मंडल का निचल आसन, संत मंडल में पाप विनाशन, संत मंडल में निर्मल कथा, संत संग हो मैं दुख नसा, संत मंडल का नहीं विनाश, संत मंडल में हर गुणतास, संत मंडल ठाकर विश्राम, नानक ओतपोत भगवान, पैरो महला पंजवा, रोग कवन जा राखे आप, ते जन होए ना दुख संताप, जिस ऊपर प्रभ कृपा करै, तिस ऊपर ते काल पर हरै, सदा सखाई हर हर नाम, जिस चीत आवै ते सदा सुख होवै, निकट ना आवै ता कै जाम रहाओ, जब एहो नासो तब किने उपाया, कवन मूल ते क्या प्रगटाया, आपै मारा आप जीवालै, अपने भगत कहो सदा प्रतिपालै, सब किछ जानो तिसके हाथ, प्रभ मेरो अनाथ को नाथ, दुख पंजन ता कह नाओ, सुख पावे तिसके गुण गाओ, सुन स्वामी संतन अरदास, जियो प्राण तन तुम रह पास, एहो जग तेरा सब तुझ ते आए, कर कृपा नानक सुख पाए, पैरो महला पंजवा, तेरी टेक रहा कल माहे, तेरी टेक तेरे गुण गाहे, तेरी टेक न पोहै काल, तेरी टेक बिन सह जंजाल, दीन दुनिया तेरी टेक, सब मैं रव्या साहेब एक रहाओ,
ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਕਰੋ ਆਨੰਦ, ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਜਪੋ ਗੁਰਮੰਤ, ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਤਰੀਏ ਪਉ ਸਾਗਰ, ਰੱਖਣ ਹਾਰ ਪੂਰਾ ਸੁਖ ਸਾਗਰ, ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਨਾਹੀ ਪਉ ਕੋਏ, ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਤੇਰਾ ਮਨ ਤਾਣ, ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਤੂੰ ਦੀਵਾਨ, ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਵਾਸਾ, ਸਗਲ ਤੇ ਆਵੈ ਪ੍ਰਭ ਗੁਣਤਾਸਾ, ਜਪ ਜਪ ਆਨੰਦ ਕਰਹਿ ਤੇਰੇ ਦਾਸਾ, ਸਿਮਰ ਨਾਨਕ ਸਾਚੇ ਗੁਣਤਾਸਾ, ਪਹਿਰਾਓ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਪ੍ਰਥਮੇ ਛੋਡੀ ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਾ, ਉਤਰ ਗਈ ਸਮਨ ਕੀ ਚਿੰਦਾ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਸਭ ਕੀਨੋ ਦੂਰ, ਪਰਮ ਵੈਸਨੋ ਪ੍ਰਾਪੇ ਖਜੂਰ, ਐਸੋ ਤਿਆਗੀ ਵਿਰਲਾ ਕੋਏ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੈ ਜਨ ਸੋਏ, ਰਹਾਓ ਅਹੰ ਬੁੱਧ ਕਾ ਛੋਡਿਆ ਸੰਗ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਾ ਉਤਰਿਆ ਰੰਗ, ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਹਰ ਹਰ ਹਰੇ, ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੈ ਸੰਗ ਨਿਸਤਰੇ, ਬੈਰੀ ਮੀਤ ਹੋਏ ਸਮਾਨ, ਸਰਵ ਮੈਂ ਪੂਰਨ ਭਗਵਾਨ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਾਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਗੁਰਪੂਰੇ ਹਰ ਨਾਮ ਦਰੜਾਇਆ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਰਾਖੈ ਆਪ, ਸੋਈ ਭਗਤ ਜਪੈ ਨਾਮ ਜਾਪ, ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ ਗੁਰ ਤੇ ਮਤ ਲਈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੀ ਪੂਰੀ ਪਈ, ਭੈਰਵ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਬਹੁਤੇ ਤਨ ਖਾਟੇ, ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਪੇਖੇ।

गुर सो प्रसन्न होए पौ गए नाम निरंजन मन मै लय दीन दयाल सदा कृपाल बिरस गए सगले जंजाल सुख सहज आनंद कने सा संग मिटे पै परमा अमृत हर हर रसन।

चरण कमल स्यों लागो हेत, खिर मैं बिन स्यों महाप्रेत। आठ पहरो हर हर जब जाप, रखनहार गोविंद गुरे आप। अपने सेवक उसदा प्रतपार है, पगजना के सास निहार है। मानस की कहो केतक बात, जमते राखै दे कर हाथ। निर्मल शोभा निर्मल रीत, पार ब्रह्म आया मन चीत। कर कृपा गुरदीनो दान, नानक पाया नाम निदान। पहरो महला पंजवां, करण कारण समर्थ गुर मेरा। जी प्राण सुखदाता नेरा, पह पंजन अबनासी राए। दर्शन देखे है सब दुख जाए, जत कत पेखाओ तेरी सरना। बल बल जाई सदगुर चरना रहाओ। पूर्ण काम मिले गुरुदेव, सफल दाता निर्मल सेव। कर गह लीने अपने दास, राम नाम रिद्धियो निवास। सदा आनंद नाही के सोग, दुख दर्द न व्यापै रोग। सब किश तेरा तू करने हार, पार ब्रह्म गुर अगम अपार। निर्मल शोभा अचरज बाणी, पार ब्रह्म पूर्ण मन पहाणी। जल थल महियल रविया सोए, नानक सब किश प्रभ ते होए। पहरो महला पंजवां, मन तन राता राम रंग चरने। सर्ब मनोरथ पूर्ण करने, आठ पहर गावत भगवंत। सतगुर दीनो पूरा मंत, सोवड़ भागी जिस नाम प्यार। तिसकै संग तरै संसार रहाओ। सोई ज्ञानी जे सिमरै एक, सो तनवंता जिस बुद्ध बबेक। सो कुलवंता जे सिमरै स्वामी, सो पतवंता जे आप पछानी। गुर प्रसाद परम पद पाया, गुण गोपाल दिन रहन ते आया। टूटे बंधन पूर्ण आसा, हर के चरण रिद माहे निवासा। कहो नानक जाके पूर्ण कर्मा, सो जन आया प्रभ की सरना। आप पवित पावन सब कीने, राम रसायन रसना चीने। पैरो महला पंजवां, नाम लै तो किश बिघ ना लागै। नाम सुन तो जम दूरों भागै। नाम लै तो सब दुखै नास, नाम जप तो हर चरण निवास। निर्विघ्न भगत भज हर हर नाओ, रसक रसक हर के गुण गाओ रहाओ। हर सिमर तो किस चाख ना जो है, हर सिमर तो दैत देव ना पुहै। हर सिमर तो मोह मान ना बदै, हर सिमरत गर्भ जो न रुदय। हर सिमरन की सगली बेला, हर सिमरन बहु माया अकेला। जात अजात जपै जन कोए, जो जपै तिसकी गत होए। हर का नाम जपिए साध संग, हर के नाम का पूर्ण रंग। नानक कहो प्रभ कृपा तार, सा सा सर देहो चितार। पैरो महला पंजवां, आपे सास्ते आपे भेद, आपे कटकट जाने भेद। ज्योत स्वरूप जाकी सब वत, करण कारण पूर्ण समरथ। प्रभ की ओट गहो मन मेरे, चरण कमल गुरमुखिया राधाओ। दुश्मन दुख न आवै नेरे रहाओ। आपे वाण त्रैण त्र पवन सार, जाकै सूत प्रोया संसार। आपे शिव शक्ति संजोगी, आप निर्बाणी आपे भोगी। जत कत पेखो तत तत सोए, तिस बिन दूजा नाही कोए। सागर तरिए नाम कै रंग, गुण गावै नानक साध संग। मुकत भुगत जुगत वस जाकै, ऊणा नाही किस जनता कै। कर कृपा जिस होए सो प्रसन्न, नानक दास सही जन तन। पहरो महला पंजवां।
ਭਗਤਾ ਮਨ ਆਨੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਅਸਥਿਤ ਭਏ ਬਿਨਸੀ ਸਭ ਚਿੰਦ ਭੈ ਬ੍ਰਹਮ ਬਿਨਸ ਗਏ ਖਿਨ ਮਾਹੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਸਿਆ ਮਨ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਮ ਸੰਤ ਸਦਾ ਸਹਾਏ ਘਰ ਬਾਹਰ ਨਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਵ ਰਹਿਆ ਪੂਰਨ ਸਭ ਠਾਏ ਰਹਾਓ ਧਨ ਮਾਲ ਜੋਬਨ ਜੁਗਤ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਤ ਸੁਖ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕਉ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹਾਥ ਨਿਮਖ ਨਾ ਛੋਡੈ ਸਦ ਹੀ ਸਾਥ ਹਰ ਸਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ ਸਰ ਸਮਾਲੇ ਸਾਚਾ ਸੋਏ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਬੰਧ ਨਰਾਇਣ ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਾਇਣ ਤਿਸ ਕੀ ਧਾਰ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਮਨ ਜੋਰ ਏਕ ਬਿਨਾ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਨਾਨਕ ਕੈ ਮਨ ਇਹੋ ਪ੍ਰਖਾਰਥ ਪ੍ਰਭੂ ਹਮਾਰਾ ਸਾਰੇ ਸਵਾਰਥ ਪਹਿਰੋ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭੈ ਕਉ ਭਉ ਪੜਿਆ ਸਿਮਰਤ ਹਰ ਨਾਮ ਸਗਲ ਬਿਆਦ ਮਿਟੀ ਤ੍ਰਿਹ ਗੁਣ ਕੀ ਦਾਸ ਕੇ ਹੋਏ ਪੂਰਨ ਕਾਮ ਰਹਾਓ ਹਰ ਕੇ ਲੋਕ ਸਦਾ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਤਿਨਕੋ ਮਿਲਿਆ ਪੂਰਨ ਧਾਮ ਜਨ ਕਾ ਦਰਸ ਬਾਂਛੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਹੋਏ ਪੁਨੀਤ ਧਰਮ ਰਾਏ ਜਾਮ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮਦ ਨਿੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਟਿਆ ਅਭਿਮਾਨ ਐਸੇ ਸੰਤ ਭੇਟੈ ਵਡਭਾਗੀ ਨਾਨਕ ਤਿਨਕੈ ਸਤ ਕੁਰਬਾਨ

नाव मेरे बंद पो नाव मेरे भाई, नाव मेरे संग अंत होए सखाई। माया मैं जिस रखे उदास, कह कबीर हाँ ता को दास। नंगे आवन नंगे जाना, कोई न रह है राजा राना। राम राजा नौनद मेरे, संपै हेत कला तो तन तेरा रहाओ। आवत संग न जा संगाती, कहा पयो दर बांधे हाथी। लंका गढ़ सोने का पया, मूर्ख रावण क्या ले गया। कहे कबीर किश गुण बिचार, चले दुवारी चले जुआरी दो हथ चार। मैला ब्रह्मा मैला इंद, रव मैला मैला है चंद। मैला मलता है संसार, एक हर निर्मल जाकांत नाम पार। रहाओ मैले ब्रह्मंडा एक ईस, मैले निस्बा सिर जंतीस। मैला मोती मैला हीर, मैला पौन पाव क्यार नीर। मैले शिव शंकरा महेश, मैले सिद्ध साध क्यार पेख। मैले जोगी जंगम जटा सहेत, मैली काया हंस समेत। कह कबीर ते जन परवान, निर्मल ते जोरा मैं जान। मन कर मक्का किबला कर देही, बोलनहार परम गुर यही। कहरे मुल्ला बाग निवाज, एक मसीत दस दरवाज। रहाओ मिसमिल तामस परम कदूरी, पाखले पंचे हुए सबूरी। हिंदू तुर्क का साहिब एक, कह करे मुल्ला कह करे शेख। कह कबीर हाँ पया दीवाना, मुस मुस मनुमा सही समाना। गंगा कै संग सलता बिगरी, सो सलता गंगा हुई निबरी। बिगरियो कबीरा राम दुहाई, साच पायो अन कतै न जाई। रहाओ चंदन कै संग तरवर बिगरियो, सो तरवर चंदन हुए निबरियो। पारस कै संग तांबा बिगरियो, सो तांबा कंचन हुए निबरियो। संतन संग कबीरा बिगरियो, सो कबीर रामे हुए निबरियो। माथे तिलक हथ माला बाना, लोगन राम खिलौना जाना। जौ हाँ बौरा तौ राम तोरा, लोग मरम कह जाने मोरा। रहाओ तोरो ना पाती पूजो ना देवा, राम भगत बिन्ने फल सेवा। सदगुर पूजो सदा सदा मनावो, ऐसी सेव दरगह सुख पावो। लोग कहे कबीर बौराना, कबीर का मर्म राम पहचाना। उल्ट जात कुल दो बिसारी, सुन सहज में बुंत हमारी। हमरा झगड़ा रहा ना को, पंडित मुल्ला छाडे दो। रहाओ बुन बुन आप पैरावो, जै नहीं आप तहां होए गावो। पंडित मुल्ला जो लिख दिया, छाड़ चले हम किशु ना लिया। हृदय इखलास निरखले मीरा, आप खोज खोज मिले कबीरा। निरतन आदर कोई ना दे, लाख जतन करे ओ चेतना तरे। रहाओ जाओ निरतन सरतन कह जाए, आगे बैठा पीठ फिराए। जाओ सरदन निर्दन कह जाए, दिया आदर लिया बुलाए। निर्दन सरदन दोनों पाई, प्रभु की कला ना मिटी जाई। कह कबीर निर्दन है सोई, जाके हृदय नाम ना होई। गुर सेवा ते भगत कमाई, ताबे मानस देही पाई। इस देही को सिमरै देव, सो देही पज हर की सेव। पजो गोबिंद भूल मत जाहो, मानस जन्म का यही लाहो। रहाओ जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया। जब लग बिकल पई नहीं बानी, पजले रेह मन सारिंग पानी। आब ना पजस पजस का उपाई, आवे अंत ना पजया जाई। जो किश करे सोई अवसार, फिर पछताओ ना पावो पार। सो सेवक जो लाया सेव, तिन ही पाए निरंजन देव। गुरमिल ताके खुले कपाट, बहुर ना आवे जो नी बाट। इही तेरा अवसर एह तेरी बार, कट पीतर तू देख बिचार। कहत कबीर जीत कह हार, बहुविध कहो पुकार पुकार। शिव की पुरी बसे बुधसार, तह तुम मिलके करो विचार। ईतूत की सोजी पर कौन कर्म मेरा कर कर मरै। निज पद ऊपर

सो सुरतान जो दोए सर तन है, बाहर जाता पीतर यान है, गगन मंडल में लश्कर करे, सो सुरतान शत्र सर तरे, जोगी गोरख गोरख करे, हिंदू राम नाम उचरे, मुसलमान का एक खुदा ए, कबीर का स्वामी रया सुमाए। महल्ला पंजवा, जो पाथर को कहते देव ताकि बिरथा हो वैसेव, जो पाथर की पाई पाए तिसकी काला जाई जाए। ठाकर हमरा सद बोलंता, सर्ब जिया को प्रभ दान देता रहा, अंतर देव न जान अंध, भ्रम का मोहया पावे फंद, ना पाथर बोले ना किश दे, फोकट कर्म ने फल है सेव, जे मृतक कहो चंदन चढ़ावे उसते कहो कवन फल पावे, जे मृतक कहो बिष्टा माहे रुलाई ता मृतक का क्या कट जाई। कहत कबीर हाँ कहो पुकार, समय देख सागत गावार, दूजे पाए बहुत कर गाले, राम भगत है सदा सुखाले, जल में मीन माया के बेदे, दीपक पतंग

एकाई रहाओ पंखी मृग माया मैराते साकरमाखी अधिक संतापे तुरे उष्ट माया मैं पेला सिद्ध चौरासी माया मैं खेला छे जति माया के बंदा नवे नाथ सूरजर चंदा तपे रखीसर माया मैं सूता माया मैं काल यार पंच दूता स्वान स्याल माया मैं राता बंतर जीते अर सिंघाता मांजार गाडर अर लुबरा बिरख मूल माया मैं परा माया अंतर पीने देव सागर इंद्रा यार तार तेव कह कबीर जैसे उधर तिस माया तब छूटे जब साधु पाया जब लग मेरी मेरी करे तब लग काज एक नहीं सरे जब मेरी मेरी मिट जाए तब प्रभु का सवार आए ऐसा ज्ञान विचार मना हर कीना सिमरो दुख भंजना रहाओ जब लग सिंह रह बन माहे तब लग बन फूल ही नाहे जब ही स्यार सिंह को खाए फूल रही सगली बन राये जीतो बूढ़े हार उतरे गुर प्रसादी पार उतरे दास कबीर कह समझाए केवल राम रहो लिवलाए सत्तर सह सलाह रह जाके सवा लाख पै काम्बरता के सेख जो कही है कोट अठासी छप्पन कोट जाके खेल खासी मो गरीब की को गुजरावे मजरस दूर मैल को पावे रहाओ ते तीस करोड़ी है खेल खाना चौरासी लख फिर दीवाना बाबा आदम कहो किशन दर दिखाई उन पी पिस्त कनेरी पाई दिल खल हल जाके जर्द रूबानी छोड़क ते करे सैतानी दुनिया दोस रोस है लोई अपना किया पावे सोई तुम दाते हम सदा पिखारी दियो जवाब होए बजगारी दास कबीर तेरी पने समाना पेस्तन जीक राख रहमाना सब कोई चलन कहत है उहां ना जानो बैकुंठ है कहां रहाओ आप आपका मर्म ना जाना बात नहीं बैकुंठ बखाना जब लग मान बैकुंठ की आस तब लग नाही चरण निवास खाई कोट ना परलप गारा ना जानो बैकुंठ द्वारा कह कमीर अब कहिए काहे साध संगत बैकुंठ आहे क्यों लीजे गढ़बंका पाई दोवर कोटियार तेवर खाई रहाओ पांच पचीस मोह मद मत सर आडी प्रबल माया जन गरीब को जोर ना पहुंचे कहां करो रगराया काम केवारी दुख सुख दरवानी पापुन दरवाजा क्रोध प्रधान महा बड़ दुंदर तै मनमावासी राजा स्वाद सनाहा टोप ममता को कबुद कमान चढ़ाई तसना तीर रहे गढ़ पीतर इं गढ़ लियो न जाई प्रेम पलीता सुरत हवाई गोला ज्ञान चलाया ब्रह्म अगन सहजे परजाली एक चुट सजाया सत संतोख लै लरने लागा तोरे दो दरवाजा साध संगत गुर की कृपा ते पकड़ो गढ़ को राजा भगवत पीर सगत स्मरण की कटी काल पै फांसी दास कमीर चढ़ियो गढ़ी उपर राज लियो अबनासी गंग गुसायन गहर गंभीर जंजीर बांध कर करे कबीर मन ना डिगे तन काहे कौ डराए चरण कमल चित रहो समाए रहाओ गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर मृगशाला पर बैठे कबीर कह कबीर को संग ना साथ जल थल रखन है रघुनाथ पैरव कबीर जी अष्टपति कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद आगम दुर्गम गढ़ रचियो बास जमे जोत करे प्रगास बिजली चमके होय आनंद जे पौड़े प्रभ बाल गोबिंद एहो जियो राम नाम लिव लागे जरा मरण छूटे परम भागे रहाओ अबरन बरन स्यो मन ही प्रीत हम मैं गावन गावे गीत अनहद शब्द होत चुनकार जे पौड़े प्रभ श्री गोपाल खंडल मंडल मंडल मंडा त्रया शांति त्रे खंडा आगम्या गोचर रहया अभ्यंत पार ना पावे को तरनी तरमंत
कदली पोहप तू प्रगास, राज्य पंकज मैं लियो निवास। द्वादश दाल अभय अंतरमंत, जय पौड़े श्री कमलाकंत। अर्ध उर्द मुख लागो कास, सुन मंडल मैं कर प्रगास। उहां सूरज नाही चंद, आद निरंजन करे आनंद। सो ब्रह्मांड पिंड सो जान, मान सरोवर कर स्नान। सो हंसो जा को है जाप, जा को लिप्त न होए पुण्य अर पाप। अबर्ण बर्ण काम नहीं शाम, अवर न पाइय गुर की साम। तारी न टरे आवे न जाए, सुन सहज मै रहो समाए। मन मध्य जाने जे कोए, जो बोले सो आपे होए। जोत मंत्र माने असर करे, कह कबीर सो प्राणी तरे। कोट सूर जा कै प्रगास, कोट महादेव अर कबलास। दुर्गा कोट जा कै मर्दन करे, ब्रह्मा कोट वेद उचरे। जो जाचो तो केवल राम, आन देव स्यो नाही काम। राहो कोट चंद्र में करे चराक, सुरत तीसो जे वै पाक। नाम ग्रह कोट ठांडे दरबार, धर्म कोट जा कै प्रतहार। कवन पवन कोट चौ बारे फिरे, बास कोट सेज बिस्थर। समुंद कोट जाके पानी हार, रुमावल कोटा ठारे पार। कोट कमेर पर पंडार, कोट क लक्ष्मी करे सिंगार। कोट क पापन बहरे, इंद्र कोट जाके सेवा करे। छप्पन कोट जाके प्रतहार, नगरी नगरी ख्यात्या पार। लट छुट्टी वरते बिकराल।

रहाओ मिथ्या जिहबा अवरे काम, निर्वाण पादो एक हर को नाम। असंख कोट अन पूजा करी, एक ना पूजस ना मैं हरी। प्रणवै नाम देओ एहो करना, अनंत रूप तेरे नारायणा। पर तन पर दारा पर हरी, ताकै निकट बसै नर हरी। जो ना पजंते नारायणा, तिनका मैं ना करो दर्शना। रहाओ जिनकै पीतर है अंतरा, जैसे पस तैसे होए नरा। प्रणवत नाम देओ ना कै बिना, ना सोहै बत्तीस लखना। दूध कटोरै गड़वै पानी, कपल गाए ना मैं दुहयानी। दूध पियो गोबिंदे राय, दूध पियो मेरो मन पति आए। नाही ता कर को बाप रसाए, रहाओ सोयन कटोरी अमृत भरी। लैना मैं हर आग्या धरी, एक भगत मेरा हृदय बसै। ना मैं देख नारायण हसै, दूध पी आए भगत गर गया। ना मैं हर का दर्शन भया, मैं बौरी मेरा राम पतार। रच रचता कहो करो सिंगार। भले निंदाओ लोग, तन मन राम प्यारे जोग। रहाओ बाद विवाद कहूं सिव ना कीजै, रसना राम रसायन पीजै। आप जी जान ऐसी बन आई, मिलो गोपाल निशान बजाई। उस्त निंदा करे नर कोई, नामे श्री रंग पेट लसोई। कबहू खीर खांड घीओ ना पावै, कबहू घर घर टूक मंगावै। कबहू पूर्ण चने बनावै, ज्यो राम राखै त्यों रहियै रे भाई। हर की महिमा किश कथन ना जाई, रहाओ कबहू तुरे तरंग नचावै। कबहू पाए पनियो ना पावै, कबहू खाट सुपेदी सुवावै। कबहू पूंपे आर ना पावै, पंत नाम देव एक नाम निस्तार है। जे गुर मिले ते पार उतार है, हस्त खेलत।

अंतर्यामी प्रभ दयाल, अपने दास को नजर निहाल, कर कृपा मोहे देहो दान, जप जीवै नानक तेरो नाम। बसंत महला पंजवां, राम रंग सब गए पाप, राम जप तो कछ नहीं संताप, गोबिंद जप तो समटे अंधेर, हर सिमर तो कछ नाए फेर। बसंत हमारे राम रंग, संत जना स्यों सदा संग रहाओ, संत जनी किया उपदेश, जह गोबिंद भगत सो धन देस, हर भगत हीन उदयान थान, गुर प्रसाद घट घट पछान, हर कीर्तन रस भोग रंग, मन पाप करत तू सदा संग, निगट पेख प्रभ करन हार, ई तूत प्रभ कार्य सार, चरण कमल सो लगो ध्यान, कर कृपा प्रभ कीनो दान। तेरिया संत जना की पांछो धूर, जप नानक स्वामी सद हजूर। बसंत महला पंजवां, सच परमेश्वर नित नवा, गुर कृपा ते नित चवा, प्रभ रखवाले माई बाप, जाकै सिमरन नहीं संताप। खसम ते आई एक मन एक पाए, गुरपुरे की सदा सरनाई, साचे साहिब रखिया कंठ लाए रहाओ। अपने जन प्रभ आप रखे, दुष्ट दूत सब भ्रम थके, बिन गुर साचे नहीं जाए, दुख देस दिसंतर रहे ताए। किरत ओना का मिटस नाहे, ओए अपना बीजा आप खाहे, जन का रखवाला आप सोए, जन को पहुंच ना सकस कोए। प्रभदास रखे कर जतने आप, अखंड पूर्ण जाको प्रताप, गुण गोबिंद नित रसन गाए, नानक जीवै हर चरण ते आए। बसंत महला पंजवां, गुर चरण सरेवत दुख गया, पार ब्रह्म प्रभ करी मया, सर्व मनोरथ पूर्ण काम, जप जीवै नानक राम नाम। सारुत सुहावी जित हर चित आवै, फिर सतगुर दी सह बिललांती, सागत फिर फिर आवै जावै रहाओ। से तनवंत जिन हर प्रभ रास, काम क्रोध गुर शब्द नास, पह बिन से निरपै पद पाया, गुरमिल नानक खसम ते आया। साध संगत प्रभ कियो निवास, हर जप जप होई पूर्ण आस, जल थल महियल रव रहया, गुरमिल नानक हर हर कहया। अहिट सिद्ध नवनिद एह, कर्म प्राप्त जिस नाम देह, प्रभ जप जप जीवै तेरे दास, गुरमिल नानक कमल प्रगास। बसंत महला पंजवां, कर पहला एक तुके एक ओंकार, सतगुर प्रसाद सगल इच्छा जपनिया, प्रभ मिले चिरी विछुनिया, तुम रवो गोबिंद रमन योग, जित रवै सुख सहज भोग रहाओ। कर कृपा नगर निहालिया, अपना दास आप संभालिया, से सुहावी रस बनी, आए मिले प्रभ सुख धनी। मेरा गुणे अवगुण ना बिचारिया, प्रभ नानक चरण पूजारिया। बसंत महला पंजवां, किल बिख बिनसे गाए गुना, आन दिन उपजी सही धुना, मन मौल्यो हर चरण संग, कर कृपा साधु जन भेटे, नित राताओ हर नाम रंग रहाओ। कर कृपा प्रगटे गोपाल, लड़ लाए उधारे दीन दयाल, एहो मन होवा साध तूर, नित देखै स्वामी हजूर। काम क्रोध तृष्णा गई, नानक प्रभ कृपा पई। बसंत महला पंजवां, रोग मिटाए प्रभु आप, बालक राखे अपने कर थाप, सांत सहज गृह सद बसंत, गुरपुरे की सरनी आए, कल्याण रूप जप हर हर मंत रहाओ। सोग संताप कटे प्रभ आप, गुरे अपने को नित नित जाप, जो जन तेरा जपे नाम,
ਸਫਲ ਪਾਏ ਨਿਸ਼ਚਲ ਗੁਣ ਗਾਓ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਭਲੀ ਰੀਤ ਸੁਖਦਾਤਾ ਜਪਦੇ ਨੀਤ ਨੀਤ ਬਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹੁਕਮ ਕਰ ਕੀਨੇ ਨਿਹਾਲ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕੋ ਭਇਆ ਦਿਆਲ ਗੁਰਪੂਰੈ ਸਭ ਪੂਰਾ ਕੀਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਿੰਦੀਆ ਰਹਾਓ ਕਰਮ ਧਰਮ ਮੇਰਾ ਕਛ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਓ ਬਾਹਾਂ ਪਕਰ ਭਵਜਲ ਨਿਸਤਾਰਿਓ ਪ੍ਰਭ ਕਾਟ ਮਹਿਲ ਨਿਰਮਲ ਕਰੇ ਗੁਰਪੂਰੇ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪਰੇ ਆਪ ਕਰੈ ਆਪ ਕਰਨੈ ਹਾਰੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕੋ ਧਾਰੇ ਬਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇਖ ਫੂਲ ਫੂਲ ਫੂਲੇ ਅਹੰ ਤਿਆਗ ਤਿਆਗੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਾਗੇ ਤੁਮ ਮਿਲੋ ਪ੍ਰਭ ਸੁਭਾਗੇ ਹਰ ਚੇਤ ਮਨ ਮੇਰੇ ਰਹਾਓ ਸਗਨ ਬਾਸ ਕੂਲੇ ਇੱਕ ਰਹੇ ਸੂਖ ਕਠੂਲੇ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਆਈ ਪਰ ਫੂਲਤਾ ਰਹੇ ਅਬ ਕਲੂ ਆਇਓ ਰੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋਵੋ ਬੋਵੋ ਅਨਰੂਤ ਨਾਹੀ ਨਾਹੀ ਮਤ ਭਰਮ ਭੂਲੋ ਭੂਲੋ ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਹਰ ਪਾਏ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਹੈ ਲੇਖਾ ਮਨ ਰੁੱਤ ਨਾਮ ਰੇ ਗੁਣ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰੇ ਹਰ ਹਰੇ ਬਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਦੂਜਾ ਹਿੰਡੋਲ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵਲਾਏ ਹਰ ਨਾਮੈ ਕੇ ਹੋਵੋ ਜੋੜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਸੋ ਸਫਾ ਵਿਛਾਏ ਇਨ ਬਿਦ ਪਾਸਾ ਢਾਲੋ ਬੀਰ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੋ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਅੰਤ ਕਾਲ ਨਹਿ ਲਾਗੈ ਪੀਰ ਰਹਾਓ ਕਰਮ ਧਰਮ ਤੁਮ ਚੌਪੜ ਸਾਜੋ ਸਤ ਕਰੋ ਤੁਮ ਸਾਰੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਜੀਤੋ ਐਸੀ ਖੇਲ ਹਰ ਪਿਆਰੀ ਉਠ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭਾਤੇ ਸੋਏ ਹਰ ਆਰਾਧੇ ਬਿਖੜੇ ਦਾਓ ਲੰਘਾਵੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖ ਸਹਿ ਸੇਤੀ ਘਰ ਜਾਤੇ ਹਰ ਆਪੇ ਖੇਲੈ ਆਪੇ ਦੇਖੈ ਹਰ ਆਪੇ ਰਚਨ ਰਚਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜੋ ਨਰ ਖੇਲੈ ਸੋ ਜਿਣ ਬਾਜੀ ਘਰ ਆਇਆ ਬਸੰਤ ਮਹੱਲਾ

अरहाओ जोगी जंगम अर संन्यास सभी पर डारिये फास। जेह जे अर को नाम समार ते पवसागर उतरे पार। जन नानक हर की शरण आए दीजे नाम रह गुण गाए बसंत महला नावा। माई मैं तन पायो हर नाम मन मेरो धामन ते छूटो कर बैठो विश्राम रहाओ। माया ममता तन ते भागी उपजो निर्मल ज्ञान लोभ मोए परसना साकै गही भगत भगवान। जन्म जन्म का संसार चूकार तन नाम जप पाया तृष्णा सकल बिनासी मनते नई सुख माए समाया। जा कहो दयाल कृपा निध सो गोविंद गुण गावै कहो नानक बिद की संपै को गुरमुख पावै। बसंत महला नावा मन कहा बिसार्यो राम नाम तन बिनसै जम स्यो परे काम रहाओ। एहो जग तुए का पहार तै साचा मानिया के विचार तन दारा संपत ग्रह कह संग न चल समझ ले। एक भगत नारायण होए संग कहो नानक भजते एक रंग बसंत महला नावा। कहां पूले ओरे झूठे लोभ लाग कश बिगड़ो नाहन अजहो जाग रहाओ। सम सुपने कहो जग जान बिन सैशन मैं साची मान। संग तेरे हर बस्त नीत निस्बासर पाइता है मीत बार अंत की होए सहाय कहो नानक गुणता के गाए। बसंत महला पहला अष्टपदियां कर पहला दो तुकिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जग कौआ नाम नहीं चीत नाम विसार ग्रह देख पीत मनुआ डोले चीता नीत जग स्यों तूटी झूठ प्रीत। काम क्रोध बिख बज्जर भार नाम बिना कैसे गुणचार रहाओ। कार बालू का कुमन केर बरखस बाणी बुद्ध बुदा हेर मात्र बूंद ते तार चक फेर। सर्ब जोत नामे की चेर सर्ब उपाय गुरु सिर मोर भगत करो पगला गौ तोर। नाम रता चाहो तुझे और नाम दुराए चले सो चोर। पत खोई बिखियन चल पाए साच नाम रतो पास्यों कर जाए जो किश कीनस प्रभर जाए। पै माने निरपो मेरी माए कामन चाहे सुंदर भोग पान फूल मीठे रस रोग। खिले बिकसै ते तो सोग प्रभ शरणागत कीनस होग। कापड़ पहरस अधिक सिंगार माटी फूली रूप बेकार। आसा मनसा बांधो बार नाम बिना सुना कर बार। गाचो पुत्री राजकुमार नाम भणो सच दोत सवार। प्रयो सेवो प्रभ प्रेम आधार गुर शब्दी बिखत्यास निवास। गुर शब्दी बिखत्यास निवार मोहन मोहे लिया मन मोहे गुर कै शब्द पछाना तोहे। नानक ठांडे चाहे प्रभु दयार तेरे नाम संतोखे कृपा तार। बसंत महला पहला मन भूलो परमस आए जाए अतलुब्ध लुबानो बिखुमाए। नए असर दी सहक पाए जो मीन कुंडलिया कंठ पाए। मन भूलो समझ सो साच नाए

मेहरवान मधुसूदन माधव ऐसी संगत तुम्हारी रहाओ। घर कर लश्कर पावक तेरा धर्म करे सिकदारी धरती देख मिलै कवेरा भाग तेरा भंडारी। नासा बूर होवे फिर मंगे नारद करे खुआरी लाभा देरा बंदी खाना अवगुण पैर लोहारी। पूंजी मार पवै नित मुदगर पाप करे कोटवारी पावै चंगा पावै मंदा जैसी नजर तुम्हारी। आद पुरख को अल्लाह कही है सेखा आई वारी देवन देवत्यां कर लागा ऐसी कीर्त चाली। कूंजा बाग निवाज मुसल्ला नील रूप बनवारी घर घर मियां सबना जिया बोली अवर तुम्हारी। जे तू मीर महीपत साहेब कुदरत कौन हमारी चारे कुंट सलाम करेंगे घर घर सिफत तुम्हारी। तीर्थ सिमरत पुन दान किशलाह मिलै दिहाड़ी नानक नाम मिलै वडियाई मेका कड़ी संभाली। बसंत हिंडोल कर दूजा महला चौथा एको अंकार सतगुर प्रसाद। काया नगर एक बालक वसिया खिन पल थिर ना रहाई अन क्यों पाव जतन कर थाके बारंबार परमाई। मेरे ठाकुर बालक इकत कर आन सतगुर मिलै ता पूरा पाई है भज राम नाम निशान रहाओ। एहो मृतक मड़ा शरीर है सब जग जित राम नाम नहीं वसिया राम नाम गुर उदक चुआया फिर हरिया हुआ रसिया। मैं निरखत निरखत शरीर सब खोजिया एक गुरमुख चलत दिखाया बाहर खोज मोए सब सागत हर गुरमती कर पाया। दीना दीन दयाल पे है जो कृष्ण बिदर कर आया मिल्यो सुदामा भावनी तार सब किश आगे दालत पंज समाया। राम नाम की पैज वडेरी मेरे ठाकरे आप रखाई जे सब साकत करे बखीली एक रत्ती तिल ना कटाई। जन की उसत है राम नामा दे दे सोभा पाई निंदक साकत खब ना सकै तिलो अपने कर लू की लाई। जन को जन मेर सोभा पावै गुण में गुण परगासा मेरे ठाकर के जन प्रीतम प्यारे जो होवै दासन दासा। आपे जल परंपर करता आपे मिल मिलावै नान गुरमुख सहज मिलाए ज्यों जल जलै समावै। बसंत महला पंजवां कर पहला दो तुकिया एको अंकार सतगुर प्रसाद। सुन साखी मन जप प्यार अजामल उदरिया कहे एक बार बाल्मीकै होवा साध संग ध्रुव को मिलिया हर निसंग तेरिया संतां जाचौ चरण रेन ले मस्तक लावो कर कृपा देन रहाओ। गन का उदरी हर कह तोत गज इंद्र त्यायो हर कियो मोख बिपर सदामे दालद पंज रे मन तू पी पज गोबिंद। बदक उदारो खम पर हार कुबजा उदरी अंगुष्ट तार पिदर उदारो दास्त पाए रे मन तू पी हर ते आए। प्रहलाद रखी हर पैज आप बस्तर शीनत द्रौपदी रखी लाज। जिन जिन सेव्या अंत बार रे मन सेव तू पर पार तन्ने सेव्या बाल बुद्ध त्रिलोचन गुरमिल पई सिद्ध। बेणी कहो गुर कियो प्रगास रे मन तू पी होए दास जय देव त्याग्यो अहं मेव नाई उदरियो सैन सेव। मन डीग ना डोले कहूं जाए मन तू पी तरसे शरण पाए। जेह नगरो ठाकर की हो आप से तैलीने भगत राख तिनका गुण अवगुण ना विचार्यो कोए। एह बिद देख मन लगा सेव कबीर त्यायो एक रंग नाम देव।

काम क्रोध मन वस किया, सुपने नाम न हर लिया। कभी राजा कब मंगनहार, दुख सुख बंधो संसार। मन उदरण का साजना है, पाप बंधन नित पौत जाहे। ईठ मीत को सखा ना है, आप बीज आपे ही खाहे। जा कह कीने होत बेकार, से छोड़ चलिया खिन मैं गावार। माया मोहे बहु परमया, किरत रेख कर करमया। करने हारा लिपते आप, नहीं लेप प्रपुन पाप। राख ले हो गोबिंद दयाल, तेरी शरण पूर्ण कृपाल। तुझ बिन दूजा नहीं ठाओ, कर कृपा प्रभ देहो नाओ। तू करता तू करनहार, तू ऊंचा तू बहु अपार। कर कृपा लड़ ले हो लाए, नानक दास प्रभ की शरणाए। बसंत की वार महल पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर का नाम ते आए कै, हो हरिया पाई। कर्म लिखन तै पाई है, एहरुत सुहाई। वन त्रैण त्रिपौन मौलिया, अमृत फल पाई। मिल साधु सुखी उपजै, लथी सब शाई। नानक सिमरै एक नाम, फिर बहुण ना ताई। पंजे बद्दे महाबली, कर सच्चा टोवा। अपने चरण जपायन, विच दै खड़ोवा। रोग सोग सब मिट गए, नित नवा निरोवा। दिन रैण नाम ते आएंदा, फिर पाए ना मोवा। जिस ते उपजिया नानका, सोई फिर होवा। किथों उपजै कह रहै, कै माए समावै। जी जंत सब खसम के, कौन कीमत पावै। कहन ते आयन सुन नित, से भगत सुहावै। अगमा गोचर साहेबो, दूसर लवै ना लावै। सच पूरै गुरु उपदेसिया, नानक सुनावै। बसंत बाणी भगतां की, कबीर जी कर पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मौली धरती मौलिया आकाश, कटकट मौलिया आत्म प्रगास। राजा राम मौलिया अंत पाए, जै देखाऊं तै रहा समाए। रहाओ द्वितीया मौले चार वेद, सिमरत मौली स्यों कतेब। शंकर मौल्य योग त्यान, कबीर को स्वामी सब समान। पंडित जन माते पढ़ पुराण, जोगी माते जोग त्यान। सन्यासी माते हमेव, तपसी माते तब कह पेव। सब मत माते को न जाग, संग ही चोर कर मुसन लाग। रहाओ जागै सुख देओ आर्याकूर, हनुमंत जागै तर लंकूर। शंकर जागै चरण सेव, कल जागे नामा जय देव। जागत सुबत बहु प्रकार, गुरमुख जागै सोई सार। इस देही के अधिक काम, कह कबीर भज राम नाम। जोय खसम है जाया, पूत बाप खेल आया। बिन श्रवणा खीर पिलाया, देखो लोगा कल को पाओ। सुत मुकलाई अपनी माओ। रहाओ पग्गा बिन हुरिया मारता, बदने बिन खिर खिर हासता। निंद्रा बिन नर पैसोवै, बिन बासन खीर बलोवै। बिन असन गऊ लवेरी, पेंडे बिन बाट कनेरी। बिन सतगुर बाट ना पाई, कहो कबीर समझाई। प्रहलाद पठाए पंड साल, संग सखा बहुलिए बाल। मोको कहां पढ़ाव सियाल जाल, मेरी पटिया लिख दे हो श्री गोपाल। नहीं छोड़ो रे बाबा राम नाम, मेरो और पढ़न से नहीं काम। रहाओ संडै मर कह कहो जाए, प्रहलाद बुलाए बेगताए। तू राम कहन की छोड़ बान, तुझ तुरत छिड़ाऊ मेरो कहो मान। मोको कहां सतावो बार बार, प्रभ जल थल गिर किए पहार। एक राम ना छोड़ो गुरहगार, मोको काल जार पावे मार डार। काड खड़ग को प्यो रसाए, तुझ रख नहारो मोहे बताए। प्रभ थमते निकसे कै विस्तार, हर नक्ष छेदियो नख बिदार। ओए परम पुरख देवाद देव, भगत हेत नरसिंह पेव। कह कबीर को लखे ना पार, प्रहलाद उधारे अनकबार।
ਇਸ ਤਨ ਮਨ ਮੱਧੇ ਮਦਨ ਚੋਰ, ਜਿਨ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਹਿਰਲੀਨ ਮੋਰ। ਮੈਂ ਅਨਾਥ ਪ੍ਰਭ ਕਹੋ ਕਾਹੇ, ਕੋ ਨਾ ਬਿਗੂਤੋ ਮੈਂ ਕੋ ਵਾਹੇ। ਮਾਦਾ ਦਾਰਨ ਦੁਖ ਸਯੋ ਨਾ ਜਾਏ, ਮੇਰੋ ਚਪਲ ਬੁੱਧ ਸਿਓ ਕਹਾਂ ਬਸਾਏ। ਰਹਾਓ ਸਨਕ ਸਨੰਦਨ ਸਿਵ ਸੁਕਾਦ, ਨਾਭ ਕਮਲ ਜਾਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾਦ। ਕਬ ਜਨ ਜੋਗੀ ਜਟਾ ਤਾਰ, ਸਭ ਆਪਣੇ ਅਵਸਰ ਚੱਲੇ ਸਾਰ। ਤੂੰ ਅਥਾਹ ਹੋ ਮੋਹੇ ਥਾਹ ਨਾਹੇ, ਪ੍ਰਭ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਦੁਖ ਕਹੋ ਕਾਹੇ। ਮੋਰੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖਿਆਥ ਤੀਰ, ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਗੁਣ ਰਹੁ ਕਬੀਰ। ਨਾਇਕ ਏਕ ਬਨਜਾਰੇ ਪਾਚ, ਬਰਦ ਪਚੀਸਕ ਸੰਗ ਕਾਚ। ਨਹੋ ਬਹੀਆਂ ਦਸ ਗੁਣ ਆਹੇ, ਕਸਨ ਬਹੱਤਰ ਲਾਗੀ ਤਾਹੇ। ਮੋਹੇ ਐਸੇ ਬਣਜ ਸਿਓ ਨਹੀਂ ਨਕਾਜ, ਜਿਹੇ ਘਟੈ ਮੂਲ ਨਿਤ ਬੜੈ ਬਿਆਜ। ਰਹਾਓ ਸਾਤ ਸੂਤ ਮਿਲ ਬਨ ਜਕੀਨ, ਕਰਮ ਭਾਵਨੀ ਸੰਗ ਲੀਨ। ਤੀਨ ਜਗਾਤੀ ਕਰਤਰਾਰ, ਚਲੋ ਬਨਜਾਰਾ ਹੱਥ ਚਾਰ। ਪੂੰਜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਬਨਜ ਟੂਟ, ਦਹਿ ਦਿਸ ਟਾਂਡੋ ਗਯੋ ਫੂਟ। ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਮਨ ਸਰਸੀ ਕਾਜ, ਸਹਿਜ ਸਮਾਨੋ ਤਾਂ ਭਰਮ ਪਾਜ। ਬਸੰਤ ਹਿੰਡੋਲ ਕਰ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ।

है अपहगे। कहो पंडित सूचा कवन ठाओ, जहां बैसा भोजन खाओ रहाओ। जेहबा जूठी बोलत जूठा, कर्ण नेत्र सब जूठे। इंद्री की जूठ उतरस नाही, ब्रह्म अग्न के लूठे। अग्न पी जूठी पानी जूठा, जूठी बैस पकाया। जूठी करसी प्रोसन लगा, जूठे ही बैठ खाया। गोबर जूठा चौका जूठा, जूठी दीनी कारा। कह कबीर ते नर सूचे, साची परी बिचारा। रामानंद जी कर पहला एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। कत जाइए रे कर लागो रंग, मेरा चेतना चले मन पयो पंग रहाओ। एक दिवस मन पहियो मांग, कह चंदन चोवा बहु सुगंध। पूजन चाली ब्रह्म ठाए, सो ब्रह्म बतायो गुरमन ही माहे। जहां जाइए तह जल पखान, तू पूर रहो है सब समान। वेद पुराण सब देखे जोए, उहां तव जाइए जो इहां ना होए। सतगुर मैं बलिहारी तोर, जिन सगर बिकल ब्रह्म काटे मोर। रामानंद स्वामी रमत ब्रह्म, गुर का शब्द काटे कोट कर्म। बसंत बाणी नाम देव जी की एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। साहेब संकट वै सेवक पजै, चिरंकाल ना जीवै दो कुल लज्जै। तेरी भगतना छोड़ो पावै, लोग हसै। चरण कमल मेरा ही अरै बसै रहाओ। जैसे अपने तरह प्राणी मरन मांडै, तैसे संत जना

सब करना किरत कर लिखी है, कर कर करता करे करे, मनमुख मरिए गुरमुख तरिए, नानक नदरी नदर करे पौड़ी। मनमुख दूजा परम है दूजा लुभाया, कूड कपट कमाम दे कूड़ वालाया, पुत्र कलत्र मोहेत है सब दुख सबाया, जमदर बदे मारी है पर मैं परमाया, मनमुख जन्म गवाया नानक हर पाया। श्लोक महला दूजा, जिन वड्याई तेरे नाम की, तेरते मन माहे, नानक अमृत एक है दूजा अमृत नाहे, नानक अमृत मने माहे, पाइये गुर प्रसाद, तिन्नी पीता रंग स्यों, जिनको लिखिया याद। महला दूजा, कीता क्या साला ही है, करे सोए साला है, नानके की बाहरा दूजा दाता ना है, करता सो साला ही है जिन की तायाकार, दाता सो साला ही है जे सबसे दे आधार, नानके आप सदीव है पूरा जिस पंडार, वड्डा कर साला ही है अंतना पारावार पौड़ी। हर का नाम निधान है सेवे है सुख पाई, नाम निरंजन उचरा पास्यो कर जाई, गुरमुख बाणी नाम है नाम हृदय वसाई, मत पंखेरु वस होए सतगुरु ते आई, नानक आप दयाल होए नामे लिवलाई। श्लोक महला दूजा, तिस स्यों कैसा बोलना जे आपे जाने जान, चीरी जाकी ना फिरे साहिब सो प्रवान, चीरी जिसकी चलना मीर मलक सालार, जोत सभावै नानका साई भलीकार, जिन्ना चीरी चलना हाथ तिना किश नाहे, साहिब का फुरमान होए उठी कर लै पाहे, जेहा चीरी लिखिया तेहा हुक्म कमाहे, कल्ले आवै नानका सदे उठी जाहे। महला दूजा, सिफत जिन्ना को बख्शी है से ही पोतेदार, कुंजी जिन को दितिया तिन्ना मिले पंडार, जय पंडारी हूं गुण निकले ते की है प्रवान, नदर तिन्ना को नानका नाम जिन्ना निशान पौड़ी, नाम निरंजन निर्मला सुनया सुख होई, सुन सुन मन वसाई है बुझे जन कोई, बहद्या उठद्या ना विसर साचा सच सोई, भगतां को नाम आधार है नामे सुखोई, नानक मन तन रव रहया गुरमुख हर सोई। श्लोक महला पहला, नानक तुलिया तोल जे जियो पिछे पाई है, एक सुना पुजे बोल जे पूरा पूरा कर मिले, वड्डा आखण पारा तोल होर हौली मत्ती हौले बोल, धरती पानी पर्वत पार क्यों कंडै तोलै सुनियार, तोला मासा रतक पाए नानक पुछां दे पुजाए, मूर्ख अंध्यां दी धात कह कह कहण कहान आप। महला पहला, आखण औखा सुनने औखा, आखना जापी आख एक आख, आख है शब्द पाख है अर्द उर्द दिन रात, जे केहो होए ता केहो दिसै जापै रूप ना जात, सब कारण करता करे काटे आओ कट कट काट, काटे आओ कट कट थाप, आखने औखा नानका आपना आखना जापै आख पौड़ी। नाए सुनिया मन रेसी है नामे सांत आई, नाए सुनिया मन तृप्ति है सब दुख गवाई, नाए सुनिया ना उपजे नामे वड्याई, नामे ही सब जात पत नामे गत पाई, गुरमुख नाम ते आई है नानक लिवलाई। श्लोक महला पहला, झूठ ना रागी झूठ ना वेदी, झूठ ना चंद सूरज की भेदी, झूठ ना यानी झूठ ना नाई, झूठ ना मीहो वरिया सब थाई,

जैसा करै कहावै तैसा ऐसी बनी जरूरत, होवै लिंग चिंग न होवै ऐसी कही है सूरत, जो उस इच्छे सो फल पाए ता नानक कही है मूर्त पौड़ी। सतगुर अमृत बिरख है अमृत रस फलिया, जिस प्राप्त सो लहै गुरसब्दी मिलिया, सतगुर कै पाणे जो चलै हर सेती रलिया, जम काल जोहे न सकई कर चानन बलिया, नानक बख्स मिलायन फिर गर्भ ना गलिया। श्लोक महला पहला। सच वर्त संतोख तीर्थ, ज्ञान ध्यान इशनान, दया देवता खिमा जप माली ते मानस प्रधान, जुगत धोती सुरत चौका, तिलक करनी होए पाओ पाओ जुन नानका, विरला ता कोई कोए। महला तीजा। नौमी नेम सच जे करै काम क्रोध तृष्णा उचरै, दसवीं दसे द्वार जे ठाकै एकादशी एक कर जाणै, द्वादशी पंच वसगत कर राखै तौ नानक मन मानै। ऐसा वर्त रही जय पांडे होर बहुत सिख क्या दीजै, पौड़ी भुगत राजे रंग राय संचय विखमाया, कर कर हेत वधाए दे पर दर्प चुराया, पुत्र कलत्र ना विस है बहुप्रीत लगाया, वेखद्या ही माया तुहे गई पछता पछताया, जम दर्ब दे मारिय नानक हर पाया। श्लोक महला पहला। ज्ञान विहूणा गावे गीत, भुखे मुला करे मसीत, मखटू होए कै कन पढ़ाए, फकर करे होर जात गवाए, गुरपीर सदाए मंगन जाए ता कै मूल न लगिए पाए, काल खाए किश हथों दे नानक राहो पछाणे से। महला पहला। मनो जे अंदे कूप, कहया बिरद ना जाननी, मन अंदे उंदे कवल दिसन खरे करूप, एक कह जान कहया बुजन ते नरसुर स्वरूप, एक ना नादना बेदना गी रस, रस कस ना जानंत, एक ना सुध ना बुध ना अकल सार, अखर का प्यो ना लहंत, नानक से नर असल खार, जे बिन गुण गर्भ करंत। पौड़ी गुरमुख सब पवित है तन संपै माया, हर अर्थ जो खर्च दे देंदे सुख पाया, जो हर नाम ते आए दे तिन तोट ना आया, गुरमुखा नदरी आमदा माया सुट पाया, नानक भगता होर चेतना आवई हर नाम समाया। श्लोक महला चौथा। सतगुर सेवन सेवट भागी, सच्चा शब्द जिन्ना एक लिव लागी, ग्रह कुटम मैं सहज समाधि, नानक नाम रते से सच्चे बैरागी। महला चौथा। गणतै सेवना होवई, कीता थाए ना पाए, सबदै साधना आयो सच ना लगो पाओ, सतगुर प्यारा ना लगे मन ठिया वै जाए, जे एक विख अगाहां भरे ता दस विखां पिछाहां जाए, सतगुर की सेवा चाकरी जे चलै सतगुर पाए, आप गवाए सतगुरु नू मिलै, सहजे रहै समाए, नानक तिन्ना नाम ना विसरै, सच्चे मेल मिलाए पौड़ी, खान मलूक कहाए दे को रहन ना पाई, गढ़ मंदिर गच गिरिया किछ साथ ना जाई, सोयन साखत पौन वेग त्रिग त्रिग चतराई, छत्ती अमृत प्रकार करै बो मैल वधाई, नानक जो देवै तसे ना जाननी मन मुख दुख पाई। श्लोक महला तीजा। पढ़ पढ़ पंडित मोनी थके, दे संतर पव थके पेख तारी, दूजे पाए ना कदे ना पाए न दुख लागा यत पारी, मूर्ख अंधे त्रै गुण सेवै माया कै ब्योहारी, अंदर कपट उधर भरन कै ताई, पाठ पढ़े गवारी, सतगुर सेवे सो सुख पाए जिन हमें विचो मारी, नानक पढ़ना गुणना एक नाओ है बुझे को बिचारी। महला तीजा। नांगे आवना नांगे जाना हर हुकुम पया क्या कीजै,
ਜਿਸ ਕੀ ਵਸਤ ਸੋਈ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਰੋਸ ਕਿਸੈ ਸਿਉ ਕੀਜੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੋ ਭਾਣਾ ਮੰਨੇ, ਸਹਿਜੇ ਹਰ ਰਸ ਪੀਜੈ। ਨਾਨਕ ਸੁਖਦਾਤਾ ਸਦਾ ਸਲਾਇਓ, ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਰਵੀਜੈ। ਪੌੜੀ ਗੜਕਾਇਆ ਸਿੰਗਾਰ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਬਣਾਈ, ਰੰਗ ਪਰੰਗ ਕਤੀਫਿਆ ਪੈਰੈ ਤਰਮਾਈ। ਲਾਲ ਸੁਪੇਦ ਦੁਲੀਚਿਆ ਬਹੁ ਸਭਾ ਬਣਾਈ, ਦੁੱਖ ਖਾਣਾ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣਾ ਗਰਬੈ ਗਰਬਾਈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ ਅੰਤਲੈ ਛਡਾਈ, ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਸਹਿਜੇ ਸੁਖ ਸੁਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਏ, ਆਪੇ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲ ਲਈ ਗੱਲ ਲਾਏ। ਦੁਬਦਾ ਚੁੱਕੀ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ, ਅੰਤਰ ਨਾਮ ਵਸਿਆ ਮਨ ਆਏ। ਸੇ ਕੰਠ ਲਾਏ ਜੇ ਭੰਨ ਕਢਾਏ, ਨਾਨਕ ਜੋ ਤੁਰ ਮਿਲੇ।

जो जपह आए कोई जाने कैसा नाउ। कथनी बदनी रह निप्रांत सो बूझे होवे जिस दात, अहन संतर रह लिव लाए सोई पुरख जे सच समाए। जात कुलीन सेवक जे होए ताका कहना कहो ना कोए, विसनाती सेवक होए नानक पणिया पहरै सोए। मलार महला पहला दुख विछोड़ा एक दुख भूख, एक दुख सगतवार जमदूत, एक दुख रोग लगै तन ताए, वैदना भोले दारू लाए। वैदना भोले दारू लाए दर्द होवे दुख रह शरीर, ऐसा दारू लगै ना बीर। रहाओ खसम विसार किए रस भोग, तां तन उठ खलोए रोग, मन अंधे को मिलै सजाए, वैदना भोले दारू लाए। चंदन का फल चंदन वास, मानस का फल घट मैं सास, सास गया काया टल पाए, ता कह पाछै कोई ना खाए, कंचन काया निर्मल हंस, जिसमें नाम निरंजन अंस। दुख रोग सब गया गवाए, नानक छूटस सच है नाए। मलार महला पहला दुख महुरा मारन हर नाम, सिला संतोख पीसन हथ दान। नित नित लेहो ना चीजै देह, अंतकाल जम मारै ठेह, ऐसा दारू खाहे गवार, जित खादे तेरे जाहे विकार। रहाओ राजमाल जोबन सब शाम, रथ फिरंदै दिसै थाम, देह ना नाओ ना होवै जात, उथै देहो एथै सब रात। साध कर समदा तृष्णा क्यो तेल, काम क्रोध अग्नि सो मेल, होम जग अर पाठ पुराण, ज्योत भावै सो प्रवाण। तप कागद तेरा नाम निशान, जिन को लिखिया हो निदान, से तनवंत दिसै कर जाए, नानक जन्नी धनी माए। मलार महला पहला बागे कापड़ बोले बैन, लम्मा नक काले तेरे नैन। कबू साहिब देखिया पैन, ऊंडा ऊंड चढ़ा समान, साहिब समरथ तेरे तान। जल थल डूंगर देखा तीर, थान थनंतर साहिब वीर। जिन तन साज दिए नाल खंब, आत तृष्णा उड़ने की डंज। नदर करे ता बंदा धीर, ज्यों विखाले त्यों वेखा वीर। ना हो तन जाएगा ना जाहेंगे खंब, पौने पानी अग्नि का संबंध। नानक कर्म होवे जपिए कर गुर पीर, सच समावे हो शरीर। मलार महला तीजा चौपदे कर पहला एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। निरंकार आकार है आपे, आपे परम पुलाए, कर कर करता आपे वेखै, जित पावै तित लाए। सेवक कहो यह वडियाई, जा कहो हुक्म नाए, अपना पाणा आपे जाने, गुर कृपा ते लहीऐ, एह सख्त सेवै कर आवै, जीवंदे अमर रहीऐ। रहाओ वेद पढ़े पढ़ वाद वखाने, ब्रह्मा विष्णु महेशा, एह त्रै गुण माया जिन जगत भुलाया, जन्म मरण का सहिसा। गुर प्रसादी एको जाने चूके मनो अंदेसा, हम दीन मूर्ख अविचारी, तुम चिंता करो हमारी। हो दयाल कर दास दासा का, सेवा करी तुम्हारी। एक निदान देह तू अपना, अहनस नाम वखाणी। कहत नानक गुर प्रसादी बूझो, कोई ऐसा करे विचारा, ज्यों जल ऊपर फेन बुदबुदा, तैसा एहो संसारा, जिसते होवा तिसै समाणा, चूक गया पासारा। मलार महला तीजा, जिनी हुक्म पछाणिया, से मेले हमें शब्द जलाए। सच्ची भगत करह जनराती, सच रहे लिव लाए, सदा सच हर वेख दे गुर कै शब्द सुवाए। मन रे हुक्म मन सुख होए, प्रभ पाणा अपना भावदा, जिस बख्से तिस बिघन ना कोए। रहाओ त्रै गुण सब बातात है, ना हर भगत ना पाए, गत मुक्त कदे ना हो वई, हमें कर्म कमाए। साहिब भावै सोथिय पै किरत फिराए, सतगुर भेटिया मन मर रह, हर नाम वसै मन आए। तिसकी कीमत ना पवै, कहना किशु ना जाए, चौथे पदवासा होया सच्चे रह सुमाए। मेरा हर प्रभ अगम्या गोच

कीमत कहन न जाए, गुर प्रसादी बुझिए सबदे कार कमाए, नानक नाम सलाहे तू हर हर दर सोभा पाए। मलार महला तीजा, गुरमुख कोई विरला बूझै जिसनो नजर करे, गुरबिन दाता कोई नाही बख्से नजर करे, गुर मिलिया सांतु पजाय अंदर नाम लय, मेरे मन हरे अमृत नाम ते आए, सतगुर पुरख मिलै नाव पाई है, हर नामे सदा समाए। रहाओ मनमुख सदा विछड़े फिर है, कोई ना किसी ही नाल, हमें वड्डा रोग है सिर मारे जमकाल। गुरमत सत संगत ना विछड़ै, अंधे नाम संभाल, सबना करता एक तू नित कर देखे विचार, एक गुरमुख आप मिलाया बख्से भगत भंडार, तू आपे सब कुछ जानदा किसे अगे करी पुकार, हर हर

बरसै मेघ सखी कर पा होने आए, मोहे दीन कृपा निध ठाकर नवनिध नाम समाए रहाओ। अनक प्रकार भोजन बहु किए बहु व्यंजन मिष्टाए, करी पागसाल सोच पवित्रा हुण लावो भोग हर राय। दुष्ट बिदारे साजन रहसे एह मंदर कर अपनाए, जौ ग्रह लाल रंगी हो आया तौ मैं सब सुख पाए। संत सवाय ओट गुरपूरे तुर मस्तक लेख लिखाए, जन नानक कंत रंगीला पाया फिर दुख ना लाग आए। मलार महला पंजवा खीरा धार, बारक जब होता बिन खीरा रहन न जाई। सार संभाल माता मुख नीर तबो तृप्त गाई। हम बारक पिता प्रभदाता, भूल बारक अनक लख बरिया, अनठौर नाही जय जाता रहाओ। चंचल मत बारक बपरे की, सर्प अग्न कर मेले, माता पिता कंठ लाए राखे आनंद सही तब खेले। जिसका पिता तू है मेरे स्वामी, तिस बारक भूख कैसी। नवनिध नाम निदान ग्रह तेरा, मन बांछै सोलैसी। पिता कृपाल आग्या है दीनी, बारक मुख मांगै सो देना। नानक बारक दर्श प्रभ चाहै, मोहे हृदय बसै नित चरना। मलार महला पंजवा, सगल विधि जो रिया हर करया, तजो सगलां देसा, कार्य सगल अरंभ्यो घर का, ठाकर का पारोसा। सुनिया बाजै बाज सुहावी, भोर भया मैं प्रेम मुख पेखे, गृह मंगल सोहलावी रहाओ। मनुआ लाए सवारे थाना, पूछो संतां जाए, खोजत खोजत मैं पाहुन मिलियो, भगत करो ने उपाए। जब प्रे आए बसे गृह आसन, तब हम मंगल गाया। मीत सजन मेरे पए सुहेले, प्रभ पूरा गुरु मिलाया। सखी सहेली पए आनंदा, गुर कार्ज हमरे पूरे, कहो नानक वर मिलिया सुखदाता, छोड़ ना जाई दूरे। मलार महला पंजवा, राज ते कीट, कीट ते सुरपत, कर दोख जठर कौ भरते। कृपा निध छोड़ आन कौ पूजै, आत्म काती हरते। हर बिसरत ते दुख दुख मरते, अनक बार प्रमै बो जोनी, टेक न काहू धरते रहाओ। त्याग स्वामी आन कौ बिचर चितवत, मूड मुग्ध खल खरते। कागर नाव लंघै कत सागर, बिरथा कथत हम तरते। शिव बिरंच असुर सुर जेते, काल अग्न में जरते। नानक सरन चरण

जय जयकार कीनो सब जग मैं, दया जियन मैं पायो, कंठ लाए अपने दास राखियो, ताती वाओ न लायो, अंगीकार कियो मेरे स्वामी, ब्रह्म पाओ मेट सुखायो, महा आनंद करो दास हर के, नानक विश्वास मन आयो। राग मलार महला पंजवां, चौपदे कर दूजा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद गुरमुख दिसै ब्रह्म पसार, गुरमुख त्रै गुणियां बिस्थार, गुरमुख नाद बेद विचार, बिन गुर पूरे कोर अंधार, मेरे मन गुर गुर करत सदा सुख पाई है, गुर उपदेश हर विसर हर हृदय वस्यो, सास ग्रास अपना खसम त्याई है रहाओ, गुर के चरण मिटो बल जाओ, गुर के गुण अंदनित गाओ, गुर की धूड़ करो शनान, साची दरगह पाईए मान, गुर बोहित पवजल तारन हार, गुर पेटिया ना होए जोन अवतार, गुर की सेवा सो जन पाए, जा कहो कर्म लिखिया तुरे आए, गुर मेरी जीवन गुर आधार, गुर मेरी वर्तन गुर परवार, गुर मेरा खसम सदगुर सरनाई, नानक गुर पार ब्रह्म जा की कीम ना पाई। मलार महला पंजवां, गुर के चरण हृदय वसाए, कर कृपा प्रभया मिलाए, अपने सेवको ले प्रभ लाए, ता की कीमत कही ना जाए, कर कृपा पूर्ण सुखदाते, तुमरी कृपा ते तू चित आवै, आठ पहरो तेरा रंग राते रहाओ, गावन सुन सब तेरा पाणा, हुक्म बूझै सो साई समाणा, जब जब जीवै तेरा नाओ, तुझ बिन दूजा नाही थाओ, दुख सो करते हुक्म रजाए, पाणै बख्श पाणै दे सजाए, दुहां सिरिया का करता आप, कुर्बान जाई तेरे प्रताप, तेरी कीमत तू है जाने, तू आपे बूझै सुने आप वखाने, सेई भगत जो तुद पाने, नानक तिन कै सद कुर्बाने। मलार महला पंजवां, परमेश्वर होवा दयाल, मेघ वरसै अमृत तार, सगले जी जंत तृपतासे, कार्ज आए पूरे रासे, सदा सदा मन नाम संभाल, गुरपूरे की सेवा पाया, ऐथै उथै निभै नाल रहाओ, दुख पन्ना पै पंजन हार, अपने जिया की कीती सार, रखण हार सदा मेहरबान, सदा सदा जाइए कुर्बान, काल गवाया करतै आप, सदा सदा मन तिसनो जाप, दृष्ट तार राखे सब जंत, गुण गावो नित नित भगवंत, एको करता आपे आप, हर के भक्त जाने प्रताप, नावे की पैज रखदा आया, नानक बोले तिसका बोलाया। मलार महला पंजवां, गुरसरनाई सगल निदान, साची दरगह पाईए मान, ब्रह्म पाओ दुख दर्द सब जाए, सासंग सद हर गुण गाए, मन मेरे गुरपूरा सा लाहे, नाम निदान जपो दिन राती, मन चंदे फल पाए रहाओ, सतगुर जेवड़े अवर ना कोए, गुर पार ब्रह्म परमेश्वर सोए, जन्म मरण दुख ते राखै, माया बिख फिर बहुन ना चाखै, गुर की महिमा कथन ना जाए, गुर परमेश्वर साचै नाए, सच संजम करनी सब साची, सो मन निर्मल जो गुर संगराची, गुरपुरा पाइए वडभाग, काम क्रोध लो मन ते त्याग, कर कृपा गुरचरण निवास, कर कृपा गुरचरण निवास, नानक की प्रभ सच अरदास। राग मलार महला पंजवां, पड़ताल करती जाए को अंकार, सतगुर प्रसाद गुर मनार प्रे दयार, स्यों रंकिया किनोरी सगल सिंगार, तजोरी सगल बेकार, ताप तो अस्थिर थिया रहाओ, ऐसे रे मन पाए कै आप गवाए कै, कर साधन स्यों संग, बाजे बजे मृदंग, अनाहद कोकल री,
राम नाम बोलै मदर बैन अत सुहिया। ऐसी तेरे दर्शन की शोभ अत्यापार प्रयामोग, तैसे ही संग संत बने पाव उतार नाम पने। राम राम राम माल मन फेरते हर संग संगिया, जन नानक प्रयो प्रीतम थिया। मलार महला पंजवा, मन कने प्रमे बने उमकत रस चाल। प्रमिलबे की चाह रहाओ, त्रै गुण माई मोहे आई, कहो बेदन काहे आन उपाव सगर किए, न दुख सा कैलाहे। पज सरन साधु नानका, मिल गुण गोबिंद गाहे। मलार महला पंजवा, प्रेकी सोब सुहावनी निकी, हा हा हू हू गंधर्व अपसरा, आनंद मंगल रस गावनी निकी रहाओ। तुनत ललत गुनाग अनक पांत, बहुबिद रूप दिखावनी निकी, गिर तर थल जल पवन भरपुर, कट कट लालन छावनी निकी। साध संग रामैया रस पायो, नानक जाके पावनी निकी। मलार महला पंजवा, गुरप्रीत प्यारे चरण कमल हृदय अंतर तारे। रहाओ दर्श सफल्यो दर्श पेख्यो, गए किल बिख गए मन निर्मल उजियारे। बिसम बिसम बिसम पई, अड़ग कोट हरते नाम लई, गुर चरण मस्तक डार पही। प्रभ एक तू ही भगत टेक तुहारे, जन नानक शरण द्वारे। मलार महला पंजवा, बरस सरस आग्या होहे आनंद सगल भाग। रहाओ संत संगे मन पर फड़ै, मिल मेघ तर सुहाग। कान कोर प्रीत मोर, चित चातरक बूंद ओर, ऐसो हर संगे मन मोहो, त्याग माया तोहो, मिल संत नानक जागया। मलार महला पंजवा, गुण गोपाल गाओ नीत, राम नाम तार चीत रहाओ। छोड़ मान तज गुमान, मिल साधुआ कै संग, हर सिमर एक रंग, मिट जाहे दोख मीत। पार ब्रह्म पहे दयाल, बिनस गए बिखे जंजाल, साध जना कै चरण लाग, नानक गावे गोविंद नीत। मलार महला पंजवा, कान गर्जत गोविंद रूप, गुण गावत सुख चैन रहाओ। हर चरण सरन तरन सागर, तुन अनहता रस बैन, पथक प्यास चित सरोवर आत्म जल लैन। हर दर्श प्रेम जन नानक, कर कृपा प्रभ दैन। मलार महला पंजवा, हे गोविंद हे गोपाल, हे दयाल लाल रहाओ। प्राण नाथा नाथ सखे, दीन दर्द निवार, हे समर्थ गम पूर्ण मोहे मया तार। अंधकूप महापयान, नानक पार उतार। मलार महला पहला, अष्टपदियां कर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। चकवी नैन नींद न चाहे, बिन पिर नींद न पाई, सूर चरै प्रयो देखे नैनी, निम निम लागे पाई। फिर भावे प्रेम सिखाई, तिस बिन कड़ी नहीं जग जीवा, ऐसी प्यास तसाई रहाओ। सरवर कमल किरण आकाशी, बिकसै सह सुभाई, प्रीतम प्रीत बनी अब ऐसी, ज्योति ज्योत मिलाई। चात्रक जल बिन प्रयो प्रयो टेरै, बिलप करे बिल लाई, कन हर कोर दसो दिस बरसै, बिन जल प्यास न जाई। मीन निवास उपजै जल ही ते, सुख दुख पुरब कमाई, खिन तिल रह न सकै, पल जन बिन मरण जीवन तिस्ताई। तन वांडी पिर देश निवासी, सच्चे गुर पै शब्द पठाई, गुण संग्रह प्रभृदय निवासी, भगत रती हर खाई। प्रयो प्रयो करै सब ही जेती, गुर पावै प्रयो पाई,
प्रयो नाले सद ही सच संगे नदरी मेर मिलाई। समय जियो जियो है सोई घट घट रहा समाई, गुर प्रसाद कर ही प्रगासिया सहजे सह समाई। अपना काज सवारो आपे सुखदाते गोसाई, गुर प्रसाद कर ही पिरपाया तौ नानक तप्त बुझाई। मलार महला पहला, जागत जाग रह गुर सेवा बिन हर मैं को नाही, अनक जतन कर रहन ना पावे आच काच डर पाही। इस तन धन का कहो गर्भ कैसा, बिनस्त बार न लागे बवरे हम मैं गर्भ खपे जग ऐसा रहाओ। जय जगदीश प्रभु रखवारे राखे परखे सोई, जेती है तेती तुझ ही ते तुम सर्यवर ना कोई। जियो पाए जुगत हथ कीनी आपे गुरमुख अंजन, अमर अनाथ सर्ब सिर मोरा काल बेकाल परम पै खंजन। कागद कोट एहो जग है बपरो, रंगन चिहन चतराई। नानी सी बूंद पवन पत खोवे जन्म मरै खिनताई। नदी उपकंठ जैसे कर तरवर सरपन घर घर माही। उल्टी नदी कहां कर तरवर सरपन डसे दूजा मन माही। गारड़ गुर ज्ञान ध्यान गुर बचनी बिखिया गुरमत जारी। मन तन हेम पय सच पाया हर की भगत निरारी। जेती है तेती तुद जाचै तू सर्ब जिया दयाला, तुमरी शरण परे पत रखो साच मिलै गोपाला। बांदी तंद अंध नहीं सूजै बदक कर्म कमावै, सतगुर मिलै ता सूजस बूजस सच मन ज्ञान समावै। निर्गुण देहे साच बिन साची, निर्गुण देहे साच बिन काची। मैं पूछो गुरे अपना नानक सो प्रभ प्रभु दिखावै बिन साचे जग सुपना। मलार महला पहला, चात्र कमीन जल ही ते सुख पावै सारंग शब्द सुहाई। रैन बबीहा बोल्यो मेरी माई रहाओ, प्रे स्यों प्रीत ना उल्टे कबहू जोते पावै साई। नींद गई हम मैं तन थाकी सच मत हृदय समाई। रूखी बिरखी उडो भूखा पीवा नाम सुभाई। लोचन तार ललता बिललाती दर्शन प्या सिरजाई। प्रे बिन सिंगार करी तेता तन तापै कापरे अंग ना सुहाई। अपने प्यारे बिन एक खिन रह ना सका, बिन मिले नींद ना पाई। पिर नजीक ना बूझै बपड़ी सतगुर दिया देखाई। सहज मिलिया तब ही सुख पाया तृष्णा शब्द बुझाई। कहो नानक तुझ ते मन मानिया कीमत कहन ना जाई। मलार महला पहला, अष्टपदियां कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। अखली ऊंडी जल पर नाल डूंगरू चौगड़ पाताल, सागर शीतल गुर शब्द विचार मार्ग मुक्ता हो मैं मार। मैं अंधले नावे की जोत नाम आधार चला गुर कै पै भेत। रहाओ सतगुर शब्दी पादर जान गुर कै तकिया साचै तान। नाम समाल सरूड़ी बाण थै पावे दरले स्पिराण। ऊंडा बैसा एक लिवतार गुर कै शब्द नाम आधार। ना जल डूंगर ना उची तार निज करवासा तह मगना चल नहार। जित कर वसै तू है बिद जाने बीजो महल ना जापै। सतगुर बाजो समझ ना होवी सब जग दग ब्याशा पै। करण पलाव करै बिल लातो बिन गुर नाम ना जापै। पल पंकज मैं नाम छडाए जे गुर शब्द संजापै। एक मूर्ख अंधे मुग्ध गवार एक सतगुर कै पै नाम आधार। साची बाणी मीठी अमृत धार जिन पीती तिस मुख द्वार।
ਨਾਮ ਭੈ ਪਾਇ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਹੀ ਗੁਰ ਕਰਨੀ ਸਚ ਬਾਣੀ ਇੰਦ ਵਰਸੈ ਤਰਤ ਸੁਹਾਵੀ ਘਟ ਘਟ ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ ਕਾਲਰ ਬੀਜਸ ਦੁਰਮਤ ਐਸੀ ਨਿਗੁਰੇ ਕੀ ਨੀਸਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਜੋ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰਾ ਡੂਬ ਮੋਏ ਬਿਨ ਪਾਣੀ ਜੋ ਕਿਛ ਕੀਨੋ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਰਜਾਏ ਜੋ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਮੇਟਣਾ ਨਾ ਜਾਏ ਹੁਕਮੇ ਬਾਂਧਾ ਕਾਰ ਕਮਾਏ ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਰਾਚੈ ਸਚ ਸਮਾਏ ਚਹੋ ਦਿਸ ਹੁਕਮ ਵਰਤੈ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰਾ ਚਹੋ ਦਿਸ ਨਾਮ ਪਤਾਲੰ ਸਭ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੈ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚਾ ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਬੈਆਲੰ ਜਾਮਣ ਮਰਨਾ ਦੀਸੈ ਸਿਰ ਉਬਉ ਖੁਦਿਆ ਨਿੰਦਰਾ ਕਾਲੰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਮਨ ਭਾਵੈ ਸਾਚੀ ਨਦਰ ਰਸਾਲੰ ਮਲਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਮੁਕਤ ਗਤ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੰਠੇ ਬੈਠੀ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਪਛਾਨੈ ਤੂੰ ਕੈਸੇ ਆੜ ਫਾਥੀ ਜਾਲ ਅਲਖ ਨਾ ਜਾ ਚਿਰਦੈ ਸਮਾਲ ਰਹਾਓ ਏਕ ਜੀ ਕੈ ਜੀਆਂ ਖਾਹੀ ਜਲ ਤਰਤੀ ਬੂਡੀ ਜਲ ਮਾਹੀ ਸਰਬ ਜੀ ਕੀ ਏ ਪ੍ਰਤਪਾਨੀ ਜਬ ਪਕੜੀ ਤਬ ਹੀ ਪਛਤਾਨੀ ਜਬ ਗਲ ਫਾਸ ਪੜੀ ਅਤ ਭਾਰੀ ਊਂਡ ਨਾ ਸਾਂਕੈ ਪੰਖ ਪਸਾਰੀ ਰਸ ਚੂਗੈ ਮਨ ਮੁਖ ਗਾਵਾਰ ਫਾਤੀ ਛੂਟੈ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਟੂਟੈ ਜਮ ਕਾਲ ਹਿਰਦੈ ਸਾਚਾ ਸ਼ਬਦ ਸੰਭਾਲ ਗੁਰਮਤ ਸਾਚੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਾਰ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਰੱਖੈ ਉਰਤਾਰ ਸੇ ਦੁਖ ਆਗੈ ਜੇ

तिन पौ सागर तरना, पौड़ी अगमा गोचर तू धनी सच्चा लख्या पार, तू दाता संमंग ते को देवनहार, जिनी सेव्या तिनी सुख पाया गुरमती विचार, इकना नो तुद एवै पहावदा माया नाल प्यार, गुर कै शब्द पसला ही है अंतर प्रेम प्यार, विण प्रीति भगत न हो वई विण सतगुर न लगै प्यार, तू प्रभ सब तुद सेव दे इक ढाडी करे पुकार, देह दान संतोखिया सच्चा नाम मिले आधार, श्लोक महला पहला, राती काल कटै दिन काल छिजै काया होए पराल, वर्तन वर्तया सर्ब जंजाल भुलिया चुक गया तबताल, अंधा चख चख पया चेर पिछै रोवै लियावै फेर, बिन बूझे के सूझे नाही मोया रोहे रोंदे मर जाही, नान खसमै वै भावै सही मुए जिन चेतना आवै, महला पहला, मुआ प्यार प्रीत मुई मुआ वैरवादी, वन गया रूप विनसिया दुखी देह रली, किथों आया कह गया केहो ना सीओ केहो सी, मनमुख गल्लां गोईया कीता चौरली, नानक सच्चे नाम बिन सिर खुर पत पाटी पौड़ी, अमृत नाम सदा सुखदाता अंते हुए सखाई, बाजगुरु जगत बौराना नावै सार ना पाई, सतगुर सेवै से प्रवान जिन ज्योति ज्योत मिलाई, सो साहेब सो सेवक तेहा जिस भाणा मन वसाई, आपणे भाणे कहो किन सुख पाया अंधा अंध कमाई, बिखिया कदे ही रजै नाही मूर्ख भुख न जाई, दूजै सब को लग विगुता बिन सतगुर बूझ ना पाई, सतगुर सेवे सो सुख पाए जिसनो कृपा करे रजाई, श्लोक महला पहला, सर्व धर्म दोए नानका जेतन पल्ले पाए, सो तन मित्र ना कांडिया जित सिर चोटां खाए, जिनकै पल्लै धन वसै तिनका नौ फकीर, जिनकै हृदय तू वसै ते नर गुणी गहीर, महला पहला, दुखी दुनी सहेड़ी है जाए ता लगै दुख, नानक सच्चे नाम बिन किसै न लथी भुख, रूपी भुख न उतरै जा देखां ता भुख, जे तेरा शरीर के ते ते लगै दुख, महला पहला, अंधी कमी अंध मन मन अंधै तर अंध, चिकड़ लाया क्या थी है जा टुटै पत्थर बंद, बंद टुटा बेड़ी नहीं ना तुलहा ना हाथ, नानक सच्चे नामिण केते डुबे साथ, महला पहला, लख मन सोयना लख मन रूपा, लख साहा सिर शाहो लख लश्कर लख वाजे ने जे लखी कोड़ी पातशाहो, जिथे सायर लंघना अगन पानी असगाहो, कंधी दिसना आवई ताही पवै कहा, नानक उथे जानिए साह के पातशाह, पौड़ी, एक ना गली जंजीर बंदर बाणिए, बदे छुट्टे सच सच पछाणिए, लिखिया पल्ले पाए सो सच जानिए, हुक्मी होए नबेड़ गया जानिए, पहो जल तारनहार शब्द पछाणिए, चोर जार चुवार पीड़े कहानिए, निंदक लाए तबार मिले हड़वाणिए, गुरमुख सच समाए सो दरगह जानिए, श्लोक महला दूजा, नाओ फकीरै पातशाहो मूर्ख पंडित नाओ, अंधे का नाओ पारखू एवै करै गुआओ, इलत का नाओ चौधरी कूड़ी पूरे थाओ, नानक गुरमुख जानिए कल का इहो न्याओ, महला पहला, हरना बाजा तै सिकदारा इना पढ़िया नाओ, फांदी लगी जात फहाए नो अगै नाही थाओ, सो पढ़िया सो पंडित बीना जिनी कमाणा नाओ, पहलों दे जड़े अंदर जम्मै ता उपर होवै इशाओ, और आज ऐसी ही मुकदम कुत्ते जाए जगाए न बैठे सुते, चाकर नहदा पाए न काओ, रात पेत कुत्ते हो चट जाओ,
ਜਿੱਥੇ ਜੀਆਂ ਹੋਸੀ ਸਾਰ, ਨੱਕੀ ਵੱਡੀ ਲਾਏ ਤਬਾਰ, ਪੌੜੀ ਆਪ ਪਾਏ ਮੇਗਰੀ ਆਪੇ ਕਰਦਾ ਸਾਰ, ਪੈ ਬਿਨ ਪਰਮ ਨਾ ਕੱਟੀਐ ਨਾਮ ਨਾ ਲੱਗੈ ਪਿਆਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪਉ ਉਪਜੈ ਪਾਈਐ ਮੁਖ ਦੁਆਰ, ਪੈ ਤੇ ਸਹਿਜ ਪਾਈਐ ਮਿਲ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿਆ ਪਾਰ, ਪੈ ਤੇ ਪੈ ਜਲ ਲੰਘੀਐ ਗੁਰਮਤੀ ਵਿਚਾਰ, ਪੈ ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਪਾਈਐ ਜਿਸ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਮਨਮੁਖ ਪੈ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਨੀ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਲ ਤੇ ਕਰੈ ਪੁਕਾਰ, ਨਾਨਕ ਨਾਵੈ ਹੀ ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਗੁਰਮਤੀ ਉਰ ਧਾਰ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਰੂਪੈ ਕਾਮੈ ਦੋਸਤੀ, ਭੁੱਖੈ ਸਾਧੈ ਗੰਡ, ਲੱਭੈ ਮਾਲੈ ਕੁਲ ਮਿਚਲ, ਲੱਭੈ ਮਾਲੈ ਕੁਲ ਮਿਲ ਮਿਚਲ, ਉਂਘੈ ਸੋੜ ਪਲੰਘ, ਪੌਕੈ ਕੋਪ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਫੱਕੜ ਪਿੱਟੇ ਅੰਧ, ਚੁੱਪੈ ਚੰਗੈ ਨਾਨਕਾ ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਮੋਹਿ ਗੰਧ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਰਾਜਮਾਲ ਰੂਪ ਜਾਤ ਜੋਬਨ ਪੰਜੇ ਠੱਗ, ਇੰਨੀ ਠੱਗੀ ਜਗ ਠੱਗਿਆ ਕਿਨੈ ਨਾ ਰੱਖੀ ਲੱਜ, ਇਹਨਾਂ ਠੱਗਣ ਠੱਗ ਸੇ ਜੇ ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਹੇ ਨਾਨਕ ਕਰਮਾ ਬਾਹਰੇ।

प्रवाहो शब्द संतोखिया गहर गंभीरा था हो हाथ न लबई मोहे मोहे चोटा खा हो विण गुर कोय न छुटसी पत से ती कर जाहो नाम वखाणिया हुक्मी सागरा दिंदा जानिया। सलोक महला पहला पौने पानी अग्नि जियो तिन क्या खुशिया क्या पीड़ धरती पाता लिया काशी एक दा रहन वजीर एक ना वड्डी आर जा एक मर होहे जहीर एक देखाहे न खुटे नाही एक सदा फिरे फकीर हुक्मी साजे हुक्मी टाहे एक चसे मैं लख सबको नथे नथिया बख्शे तोड़े नथ वरना चेहना बाहरा लेखे बाजा लख क्यों कथिया क्यों आखिया जापै सचो सच करना कथना कार सब नानक आपा कथ अकथ की कथा सुने रिद बुद्ध सिद्ध ज्ञान सदा सुख होए महला पहला अजर जरै ता नौ कुल बंद पूजे प्राण होवै थरकंद कहां ते आया कहां एहो जान जीवत मरत रह प्रमाण हुक्मै बूझै तत् पछाणै एहो प्रसाद गुरु ते जाणै होंदा फड़ी अग नानक जान ना हो ना मैं जूनी पाण पौड़ी पढ़िए नाम सलाह होर बुद्धि मिथ्या बिन सच्चे वापार जन्म बिरथिया अंत ना पारा वार ना किन्ही पाया सब जग गर्भ गुबार तिन सच ना पाया चले नाम विसार तावन ततिया बलदी अंदर तेल दुबदा कतिया आया उठी खेल फिर उवत्या नानक सच्चै मेल सच्चै रतिया। सलोक महला पहला पहला मासो निम्या मास अंदर वास जियो पाए मास मोहे मिलिया हड चम तन मास मासो बाहर कड्या ममा मास ग्रास।

मासो ही मासी उपजै मासो सबो साक। सतगुर मिलिया हुक्म बुझिया ताको आवै रास, आप छुटे न छुटिया नानक बचन विनाश। महला पहला। मास मास कर मूर्ख झगड़े ज्ञान ध्यान नहीं जाने, कौन मास कौन साग कहावे किसमें पाप समाने। गेंडा मार होम जग की देवतियां की बाणे, मास छोड़ बैस नक पकड़े राती मान सखाने। फड़ कर लोका नो दिखलावे ज्ञान ध्यान नहीं सूझे, नानक अंधे से क्यों कहिए नानक अंधे से ओ क्या कहिए, कहे न कहे आबूजे। अंधा सोए जे अंध कमावे ते सिरदय से लोचन नाही, मात पिता की रक्त ने पन्ने मच्छी मास ना खाही। स्त्री पुरख है जानिस मेला उथे मंद कमाही, मासो निम्मे मासो जम्मे हम मासै के पांडे। ज्ञान ध्यान का सूझै नाही चतर कहा वै पांडे। बाहर का मास मंदा स्वामी घर का मास चंगेरा, जी जंत सब मासो होए जी लया वासेरा। अपख पख पख तज छोड़ै अंध गुरु जिन केरा, मासो निम्मे मासो जम्मे हम मासै के पांडे। ज्ञान ध्यान कछ सूझै नाही चतर कहा वै पांडे। मास पुराणी मास कते भी चह जुग मास कमाणा, जज काज भी आहे सुहावै उथे मास समाणा। स्त्री पुरख निपजै मासो पातशाह सुल्ताना, जे ओए दिसै नरक जांदे ता उनका दान ना लैणा। देंदा नरक सुर्ग लैंदे देखो एह तिंगाणा, आप न बुझै लोक बुझाए पांडे खरा सियाणा। पांडे तू जाने ही नाही किथों मास्यो पन्ना, तोयो अनक मादक पाहा तोयो त्रिभवन गन्ना। तोवा आखै हाँ बो बिधाचा तोवै बहुत बिकारा, एते रस छोड़ होवै सन्यासी नानक कह विचारा। पौड़ी हाउ क्या आखा एक जीव तेरा अंतरा किन्ही पाया, सच्चा शब्द विचार से तुझी माए समाया। एक भगवा वेसकर परम देवन सतगुर के ना पाया, दे दिसंतर पव थके तुद अंदर आप लुकाया। गुर का शब्द तन है कर चानन आप दिखाया, अपना आप पछाणिया गुरमति सच समाया। आवा गुण बजारिया बाजार जिनी रचाया, एक थिर सच्चा सलाहना जिन मन सच्चा पाया। सलोक महला पहला। नानक माया कर्म बिरख फल अमृत फल वेस, सब कारण करता करे जिस खवाले तिस। महला दूजा। नानक दुनिया किया वड़ियाइया अग्गी से तीजाल, इन्नी जली ना विसारे आयक ना चलिया नाल। पौड़ी सिर सिर होए नबेड़ हुक्म चलाया तेरे हथ नबेड़ तू है मन पाया। काल चलाए बन कोई ना रखसी जर जरवाणा कन चढ़िया नचसी, सतगुर बोथ बेड़ सच्चा रखसी अगन पखे पड़हार अंदर पक्षी।

हर हर प्रभ हर जप्यो जगन नथी, जन नानक के प्रभ राखे स्वामी। हम पाथर रख बुड़ थई कल्याण महला चौथा, हमरी चितवनी हर प्रभ जान। और कोई निंद करे हर जन की, प्रभता का कहे एक तल नहीं मानै रहाओ। और सब त्याग सेवा कर अचुत, जो सब ते ऊंच ठाकर भगवान है। हर सेवा ते काल जोहे ना सकै, चरणी आए पवै हर जन। जा कौ राख ले मेरा स्वामी, ता कौ समत दे पै कान। ता कौ कोई अपर ना सकै, जा की भगत मेरा प्रभ मान। हर के चोज विडान देख जान, जो खोटा खरा एक निमख पछान। ता ते जन कौ आनंद भया है, रिद्ध सुध मिले खोटे पछतान। तुम हरदा ते समर्थ स्वामी, एक मांगो तुझ पासो हर दान। जन नानक कौ हर कृपा कर दीजै, सद बसै हृदय मुहे हर चरान। कल्याण महला चौथा, प्रभ की जय कृपा निधान। हम हर गुण गावेंगे, हम तुमरी करो नित्यास प्रभ, मोहे कब गल लावेंगे रहाओ। हम बारक मुक्त एआन पिता समझावेंगे, सुत खिन खिन पूल बिगार जगत पित पावेंगे। जो हर स्वामी तुम दे हो, सोई हम पावेंगे। मोहे दूजी नाही ठौर, जिस पै हम जावेंगे। जो हर पावे भगत तिन्ना हर पावेंगे, ज्योति ज्योत में लाए ज्योत रल जावेंगे। हरे आपे होए कृपाल, आप लिव लावेंगे। जन नानक शरण द्वार, हर लाज रखावेंगे। शक्का एक कल्याण पोपाली महला चौथा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पार ब्रह्म परमेश्वर स्वामी, दुख निवारण नारायण। सगल भगत जाचे सुख सागर, पावने दरन हर चिंता मने रहाओ। दीन दयाल जगदीश दमोदर, हर अंतर जामी गोबिंदे। ते निरपो जिन श्री राम ते आया, गुरमत मुरार हर मुकंदे। जगदीशर चरण सरन जो आए, ते जन पावनित पार परे। भक्त जना की पैज हर राखे, जन नानक आप हर कृपा करे। राग कल्याण महला पंजवा, कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हमारे एह कृपा की जय, आलम करंद चरण कमल स्यो। मन फेर दी जय रहाओ, आन जला स्यो काज ना कछुऐ। हर बूंद चातरक कौ दी जय, बिन मिलबे नाही संतोखा। पेख दर्शन नानक जी जय। कल्याण महला पंजवा, जाचक नाम जाचै जाचै। सर्वतार सर्व के नायक, सुख समूह के दाते रहाओ। केती केती मांगन मांगे, पावनिया सो पाईऐ। सफल सफल सफल दर्शरे, परस परस गुण गाईऐ। नानक तत तत स्यो मिलीऐ, हीरे हीर बिधाईऐ। कल्याण महला पंजवा, मेरे लालन की शोभा। साध नवतन मन रंगी शोभा रहाओ। ब्रह्म महेश सिद्ध मुन इंद्रा, भगत दान जस मंगी। जोग ज्ञान ध्यान सेख नागै, सगल जपै तिरंगी। कहो नानक संतन बलिहारै, जो प्रभ के सद संगी। कल्याण महला पंजवा, कर दूजा।

मन रसक रसनो नाम जपतो तै पाप खंडली, जोग जुगत ज्ञान भुगत सुरत शब्द तत् बेते जप तप अखंडली, ओत पोत मिल जोत नानक कशु दुख ना डंडली। कल्याण महला पंजवा, कौन बेता की कहां करो, तरत ध्यान ज्ञान शस्त्र गया अजर पद कैसे जरो रहाओ, बिशन महेश सिद्ध मुन इंद्रा कै दर्शन परो, काहू पै राज काहू पै सुरगा, कोट मदे मुक्त कहो कहो नानक नाम रस पाई है, साधु चरण गहो। कल्याण महला पंजवा, प्राण पत दयाल पुरख प्रभ सखे, गर्भ जोन कल काल जाल दुख विनाशन हर रखे रहाओ, नाम तारी शरण तेरी प्रभ दयाल टेक मेरी, अनाथ दीन आसवंत नाम स्वामी मनै मंत, तुझ बिना प्रभ किशु ना जानू सर्व जुग मैं तुम पछानू, हर मन बसे निस बसरो गोबिंद नानक आसरो। कल्याण महला पंजवा, मंत्र जापी है भगवान गुर पूरे सो प्रसन्न पए, सदा सुख कल्याण रहाओ सर्व कार्य सिद्ध पए, गाए गुण गोपाल मिल साध संगत प्रभु सिमरे, नाठिया दुखकाल कर कृपा प्रभ मेरे आ, करो दिन रहन सेव नानक दास शरणागति हर पुरख पूर्ण देव। कल्याण महला पंजवा, प्रभ मेरा अंतरजामी जान कर कृपा पूर्ण परमेश्वर, निहचल सच शब्द निशान रहाओ, हर बिन आन ना कोई समर्थ तेरी आस तेरा मंतान, सर्व घटा के दाते स्वामी देह सो पहरन खान, सुरत मत चतराई सोभा रूप रंग तन मान, सर्व सुख आनंद नानक जप राम नाम कल्याण। कल्याण महला पंजवा, हर चरण सरन कल्याण करन प्रभ नाम पतित पावनो रहाओ, साध संग जपन संग जमकाल तिस ना खावनो, मुक्त जुगत अनक सुख हर भगत लवै ना लावनो, प्रभ दर्श लुब्ध दास नानक बहुड़ जोन ना तावनो। कल्याण महला चौथा, अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद, रामा राम रामो सुन मन पीजै, हर हर नाम अमृत रस मीठा गुरमत सहजे पीजै रहाओ, काष्ट मैं ज्यो है बैसंतर मत संजम काढ़ कढ़ीजै, राम नाम है जोत सबाई तत गुरमत काढ़ लई जै, नौ दरवाज नवे दर फीके रस अमृत दसवें चुई जै, कृपा कृपा कृपा कर प्यारे गुरसबदी हर रस पीजै, काया नगर नगर है नीको विच सबदा हर रस की जय, रतन लाल अमोल अमोलक सतगुर सेवा ली जय, सतगुर आगम अगम है ठाकर पार सागर भगत करी जय, कृपा कृपा कर दीन हम सारंग एक बूंद नाम मुख दी।

रस रसक गटक नित पीजै, बसदा सबत दीप है सागर, कड कंचन कर तरीजै। मेरे ठाकर के जन इनो ना बांचै, हर मांगै हर रस दीजै। साकत नर प्राणी सत भूखे, नित भूखन भूख करीजै। तावत ताए ताव है प्रीत माया, लख कोसन कौ बिथ दीजै। हर हर हर हर हर जन उत्तम, क्या उपमा तिन दीजै। राम नाम तुल और ना उपमा, जन नानक कृपा करीजै। कल्याण महला चौथा, राम गुरपा।

जागत बिकसै मूठो अंधा गल फाही सिर मारे तंदा आसा आवै मन सा जाए उर्जी ताणी किशना बसाए। जागस जीवन जागणहारा सुख सागरे अमृत भंडारा रहाओ कहो ना बूझे अंधना सूझै पूंडी कार कमाई आपे प्रीत प्रेम परमेसर करमी मिले वडाई। दिन दिन आवै तिल तिल शीजै माया मोह कटाई बिन गुर बूढ़ो ठौर ना पावै जब लग दूजी राई। अहनस जिया देख संभाले सुख दुख प्रब कमाई कर्महीन सच भीखिया मांगै नानक मिलै वडाई। प्रभाती महला पहला मस्त करो मूर्ख जग कहिया।

क्यों क्यों ने खास बिकाई, करो अढ़ाई धरती मांगी बावन रूप बहाना, क्यों पयाल जाए क्यों छलिया जेबल रूप पछाना। राजा जनमेजा दे मती ब्रज प्यास पड़ाया, तिन कर जग अठारह काए कीर्तना चले चलाया। गणत ना गणी हुक्म पछाणा, बोली पाए सुबाई, जो किश वरतै तुदै सलाही सब तेरी वड्याई। गुरमुख लिप तो लेप कदे ना लागै सदा रह सरनाई, मनमुख मुगद आगै चेतै नाही दुख लागै पछताई। आपे करे कराए करता जिन एह रचना रचियै, हर अवमान न जाई जियो अवमाने पै पचियै। भुलण विच किया सब कोई करता आप न भुलै, नानक सच नाम निस्तारा को गुरप्रसाद या कुलै। प्रभाती महला पहला आखण सुनना नाम आधार, तंदा छुट गया बेकार। ज्यो मनमुख दूजे पत खोई, बिन नावे मैं अवर न कोई। सुन मन अंधे मूर्ख गवार, आवत जा तो लाज नहीं लागै, बिन गुर बूढ़े बारो बार रहाओ। इस मन माया मोहे विनाश, तोरो हुक्म लिखिया ता कहियै कास। गुरमुख विरला चीने कोई, ना बेहूना मुक्त ना होई। प्रम प्रम डोलै लख चौरासी, बिन गुर बूझे जमकी फासी। एहो मनुआ खिरखनी उपयाल, गुरमुख छूटे नाम समाल। आपे सदे ढिल ना होए, शब्द मरै सहला जीवै सोए। बिन गुर सोजी किसै ना होए, आपे करै करावै सोए। चगड़ चुकावै हर गुण गावै, पूरा सतगुर सहि समावै। एहो मन डोलत तौ ठहरावै, सच करनी कर कार कमावै। अंतर जूठा क्यों सोच होए, शब्दी धोवै विरला कोए। गुरमुख कोई सच कमावै, आवन जाना ठाक रहावै। पौ खाना पीना सुखसार, हर जन संगत पावै पार। सच बोलै बोलावै प्यार, गुर का शब्द करनी है सार। हर जस कर्म धर्म पत पूजा, काम क्रोध अग्नि में पूंजा। हर रस चाखिया तौ मन पीजा, प्रणवत नानक अवर ना दूजा। प्रभाती महला पहला राम नाम जप यंत्र पूजा, गुर शब्द विचार अवर नहीं दूजा। एको रव रहया सब ठाई, अवर ना दिसै किस पूज चढ़ाई रहाओ। मन तन आगै जियड़ा तुद पास, जो पावे तो रखो अरदास। सच जेहवा हर रसन रसाई, गुरमत छूटस प्रभ सरनाई। कर्म धर्म प्रमे रह किए, नाम वडाई सिर कर्मा किए। सतगुर कै वह चार पदार्थ, तीन समाए एक कृतार्थ। सतगुर दिए मुक्त ध्याना, हर पा चीन पय परदाना। मन तन शीतल गुरबूझ बुझाई, प्रभ निवाजे किन कीमत पाई। कहो नानक गुरबूझ बुझाई, नाम बिना गत किने ना पाई। प्रभाती महला पहला एक तुर बख्श लय गुरपूरै, सच्ची बणत मनाई। हर रंग राते सदा रंग साचा, दुख विसरे पथ पाई। झूठी दुरमत की चतराई, बिरसत बार न लागै काई रहाओ। मानमुख कहो दुख दर्द व्यापस, मानमुख दुख ना जाई। सुख दुख दाता गुरमुख जाता, मेल लय सरनाई। मानमुख ते अब भगत ना होवस, हम मैं पचै देवाने। एहो मनुआ खिनी उपयाली, जब लग शब्द ना जाने। भूख प्यासा जग पया, तिप्त नहीं बिन सतगुर पाए। सहजे सहज मिलै सुख पाई, दरगह पैंदा जाए। दरगह दाना बीना एक आपे, निर्मल गुर की बाणी। आपे सुरता सच विचारस, आपे बूझै पर निर्वाणी। जल तरंग अग्नि पवन फुन, त्रैमल जगत्यो पाया। ऐसा बल छल तिन को दिया, हुक्मी ठाक रहाया। ऐसे जान विरले जग अंदर, पर खजाना पाया। जात वर्ण ते पय अतीता, ममता लोभ चुकाया।

नाम रते तीर्थ से निर्मल दुख हो मैं मैल चुकाया, नानक तिनके चरण पखाले जिन्ना गुरमुख साचा पाया। प्रभाती महला तीजा विवास एक ओंकार सतगुर प्रसाद, गुर प्रसादी वेख तू हर मंदिर तेरा नाल, हर मंदिर सबदे खोजी है हर नामो लिहो समाल, मन मेरे शब्द रपै रंग होए सच्ची भगत सच्चा हर मंदिर प्रगति साची सोए रहाओ। हर मंदिर एहो शरीर है ज्ञान रतन प्रगट होए, मन मुख मूल ना जाननी मानस हर मंदिर ना होए। हर मंदिर हर जियो साजिया रखिया हुक्म सवार, तुर लेख लिखिया सो कमावना कोई ना मेटन हार। शब्द चीन सुख पाया सच्चा नाए प्यार, हर मंदिर शब्दे सोहना कंचन कोटिया पार। हर मंदिर एहो जगत है गुरबिन कोरे अंधार, दूजा पाओ कर पूज दे मन मुख अंध गवार। जिथे लेखा मंगिए तिथे देह जात ना जाए, साच रते से उबरे दुखिए दूजे पाए। हर मंदिर में नाम निदान है ना बूझे मुग्ध गवार, गुर प्रसादी चीनिया हर राख्या उतार। गुर की बाणी गुर ते जाती जे शब्द रते रंग लाए, पवित्र पावन से जन निर्मल हर कै नाम समाए। हर मंदिर हर का हाट है रखिया शब्द सवार, तिस विच शब्दा एक नाम गुरमुख लैन सवार। हर मंदिर मैं मन लोहट है मोहया दूजे पाए, पारस पेटिया कंचन पया कीमत कही ना जाए। हर मंदिर मैं हर वसै शब्द निरंतर सोए, नानक गुरमुख बन जिए सच्चा शब्दा होए। प्रभाती महला तीजा पै पाए जागे।

बाद समन जवे इस प्रेम की दम केहो होती साट, रावण होते सो रंकन जिन सिर दीने काट। प्रीत प्रेम तन खच रहया बीच नाराई होत, चरण कमल मन बेदेओ बुजन सुरत संजोग। सागर मेर उद्यान बन नवखंड बसदा परम, मूसन प्रेम परम कै गनो एक कर करम। मूसन मस्कर प्रेम की रही जो अंबर छाए, बिंदे बांदे कमल में पवर रहे लपटाए। जप तप संजम हरख सुख मान महत्यार गर्भ, मूसन निमखक प्रेम पर वार वार देओ सर्ब। मूसन मर्म ना जान नहीं मर्त हिरत।

खंड खंड कर हार, मगन भयो प्रे प्रेम स्यों, सूद ना सिमरत अंग, प्रगट भयो सब लो मैं, नानक अदम पतंग। श्लोक भगत कबीर जीओ के एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कबीर मेरी सिमरनी रसना उपर राम, आज जुगादी सगल भगत ताको सुख विश्राम। कबीर मेरी जात कहो सबको हसने हार, बलिहारी इस जात कहो जे जप्यो सृजनहार। कबीर डगमग क्या करे कहां डुलावे जियो, सर्व सुख को नायको राम नाम रस पियो। कबीर कंचन के कुंडल बने ऊपर लाल जड़ाओ, दिसे दांदे कान ज्यो जिनमन नाही नाओ। कबीर ऐसा एक याद जो जीवत मृतक होए, निरपय होए कै गुण रवै जत पेखो तत सोए। कबीर जां दिन हो मुआ पाछे पया आनंद, मोहे मिलियो प्रभ अपना संगी भजे गोबिंद। कबीर सब ते हम बुरे हम तज भलो सब कोए, जिन ऐसा कर बुझिया मीत हमारा सोए। कबीर आई मुझे पै अनक करे कर पेस, हम राखे गुरे अपने उनकी नो आदेश। कबीर सोई मारी है जे मुए सुख होए, पलो पलो सब को कह बुरो न माने कोए। कबीर राती हो मैं कारिया कारे उबे जंत, लह फाहे उठतावते से जान मारे भगवंत। कबीर चंदन का बिरवा पला बेड़ो टाग पलास, ओए पी चंदन होए रहे बसे जो चंदन पास। कबीर बांस बढ़ाई बूढ़िया इओ मत डूबो कोए, चंदन कै निकटे बसे बांस सुगंध ना होए। कबीर दीन गवाया दुनि स्यो दुनि ना चली साथ, पाए कुहाड़ा मारिया गाफले अपने हाथ। कबीर जय जय हो फिरो कौतक ठा उठाए, एक राम स्नेही बहरा उजर मेरे पाए। कबीर संतन की चुंगिया पली पाठक सती गाओ, आग लगो तेह तौल हारो जे नाही हर को नाओ। कबीर संत मुए क्या रोई है जो अपने ग्रह जाए, रोबो सागत बापरे जो हट है हट बेकाए। कबीर सागत ऐसा है जैसी लक्षण की खान, कोने बैठे खाई है प्रगट होए निदान। कबीर माया डोलनी पवन वह हिवतार, जिन बिलोया तिन खाया अवर बिलो बनहार। कबीर माया चोरटी मुस मुस लावे हाट, एक कबीरा नाम सह जिनकीनी बारे बाट। कबीर सुख ना एह जोग करे जो बहुत है मीत, जो चित राखे एक स्यों ते सुख पावे नीत। कबीर जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाई है पूर्ण परमानंद। राम पदार्थ पाए कै कबीरा गांठ ना खोल, नहीं पट नहीं पारखू नहीं गाक नहीं मोल। कबीर तास्यों प्रीत कर जा को ठाकर राम, पंडित राजे पूपति आवे कौने काम। कबीर प्रीत एक स्यों किए आन दुबदा जाए, पावे लांबे केस कर पावे कर रमुडाए। कबीर जा काजल की कोठरी अंध परे तस्माहे, हम बलिहारी तिन कहो पैस जो निक सजाहे। कबीर यहो तन जाएगा सको ता लेहो बहोर, नांगे पावो ते गए जिनके लाख करोर। कबीर यहो तन जाएगा कवने मार्ग लाए, कै संगत कर साध की कै हर के गुण गाए। कबीर मरता मरता जग मुआ मर पीना जानिया कोए, ऐसे मरने जो मरे बहुर न मरना होए। कबीर मानस जन्म दुलंब है होए न बारे बार, ज्यो बन फल पाके पोए ग्रह बौर न लागे डार। कबीरा तुही कबीर तू तेरो नाओ कबीर, आराम रतन तपाई है।

ले तजै शरीर कबीर चंख ना चंखी है तुमरो कहो ना होए कर्म करीम जो कर रहे मेट ना साकै कोए कबीर कसौटी राम की झूठा टके ना कोए राम कसौटी सो सहै जो मर जीवा होए कबीर उज्जल पैरै का परे पान सुपारी खाहे एक सहर के नाम बिन बांधे जमपुर जाहे कबीर बेड़ा जर जरा फूटे शेक हजार हरुए हरुए तर गए डूबे जन सरपार कबीर हार्ड जरे।

चावल पेटे हाड़ है वरी ऊपर छतर तार ते फुन तरनी गाड़। कबीर गर्भ ना की जिये उच्चा देख्या वास, आज काल कोई लेटना ऊपर जा मैं कास। कबीर गर्भ ना की जिये रंक ना हसीये कोय, अजो सोनाओ समुन्द्र में क्या जानो क्या होए। कबीर गर्भ ना की जिये देही देख सो रंग, आज काल तज जाहोगे ज्यो काचरी पुजंग। कबीर लूटना है ता लूट ले, राम नाम है लूट फिर पाछे पछताओगे प्राण जाहेंगे शूट। कबीर ऐसा कोई ना जन्मयो अपने कर लावे आग, पांचो लड़का जार कह रहे राम लिव लाग। को है लड़का बेचई लड़की बेचै कोए, सांझा करे कबीर स्यों हर संग बनज करे। कबीर एह चेतावनी मत से सारे जाए, पाछे भोग जो भोग वे तिनको गुड़ लै खाए। कबीर मैं जान्यो पढ़वो पलो, पढ़बे स्यों पल जोग, भगत ना छड़ो राम की पावे निंदो लोग। कबीर लोके निंदे बपड़ा जे मन नाही ज्ञान, राम कबीरा रव रहे अवर तजे सब काम। कबीर परदेसी कै कागर है चौ दिस लागी आग, खिंथा जल कोयला पई ता गे आंच ना लाग। कबीर खिंथा जल कोयला पई खापर फूट मफूट, जोगी बपड़ा खेले ओ आसन रही बेपूत। कबीर थोर है जल माछली चीवर में लियो जाल, एह टोग ने ना छूट सै फिर कर समुंद संभाल। कबीर समुंद ना

कबीर बैसनों की कुकर भली सागत की बुरी माए, ओ नित सुने हर नाम जस ओ पाप बिसाहन जाए। कबीर हरना दुबला एहो हरियारा ताल, लाख अहेरी एक जियो केता बंचो काल। कबीर गंगा तीर जो कर करे पीवे निर्मल नीर, बिन हर भगत ना मुक्त होए इयों कह रमे कबीर। कबीर मन निर्मल पया जैसा गंगा नीर, पाछे लागो हर फिर कहत कबीर कबीर। कबीर हर दीपी अरी चूना उज्जल पाए, राम स्नेही तो मिले दोनों वरन गवाए। कबीर हर दीपी रतन हर चून चहन ना रहाए, बलिहारी यह प्रीत कहो जे जात वरन कुल जाए। कबीर मुक्त दुआ

कबीर जा को खोजते पायो सोई ठौर, सोई फिर कह तू पया जा को कहता और। कबीर मारी मरो कुसंग की केले निकट जो बेर, ओह चूले ओह चीरी है साकत संग ना हेर। कबीर पार पराई सिर चरै चलो चाहे बाट, अपने पारे ना डरै आगे औकट काट। कबीर बन की दादी लकरी ठंडी करे पुकार, मत बस परो लोहार के जारे दूजी बार। कबीर एक मरण ते दोए मुए, दोए मरण ते चार, चार मरण ते छह मुए, चार पुरख दोए नार। कबीर देख देख जग ढूंढिया कहूं ना पायो ठाओर, जिन हर का नाम ना चेतियो कहां पुलाने और। कबीर संगत करिए साध की अंत करे निर्वाहो, साकत संग ना कीजिए जाते हुए बिनाहो। कबीर जग में चेतियो जान कै जग में रहो समाए, जिन हर का नाम ना चेतियो बंद है जन्मे आए। कबीर आसा करिए राम की अवरै आस निरास, नरक परे ते मन नहीं जो हर नाम उदास। कबीर सिख साखा बहुते किए केसो कियो न मीत, चाले थे हर मिलन कहो बीचे अटक्यो चीत। कबीर कारण बपरा क्या करे जो राम ना करे सहाय, जे जे डाली पग तरो सोई मुरमुर जाए। कबीर यवर है को उपदेश ते मुख में पर है रेत, रास बिरानी राखते खाया कर का खेत। कबीर साधु की संगत रहो जौ की पूसी खाओ, होनहार सो होए है सागत संग ना जाओ। कबीर संगत साध की दिन दिन दूना हेत, सागत कारी कामबरी तोए होए ना सेत। कबीर मन मुंडिया नहीं केस मुंडाए काए, जो किश किया सो मन किया मुंडा मुंडिया जाए। कबीर राम ना

कबीर माए मुंडो ते गुरु की जाते परम ना जाए, आप डुबे चौ बेद मैं चेले दिए बहाए। कबीर जेते पाप किए राखे तले दुराए, प्रगट पै निदान सब जा पूछे धर्म राए। कबीर हर का स्मरण छाड़ कै पाल्यो बहुत कुटंब, तंदा करता रह गया भाई रहा ना बंद। कबीर हर का स्मरण छाड़ कै रात जगावन जाए, सरपन होए कै उतर जाए अपने खाए। कबीर हर का स्मरण छाड़ कै अहोई राखे नार, गधी होए कै उतर पारस है मन चार। कबीर चतराई अत कनी हर जप हिरदय माहे, सूरी उपर खेलना ग्रहता ठाहर नाहे। कबीर सोई मुख तन है जामु कहिए राम, देही किसकी बापरी पवित्र होए गो ग्राम। कबीर सोई कुल पली जा कुल हर को दास, जे कुल दास न उपजै सो कुल ढाक पलास। कबीर है गए बाहन सगन कानो, लाख तजा फहराए, या सुख ते पिखिया पली जो हर सिमरत दिन जाए। कबीर सब जग हों फिरयो मांदल कंध चढ़ाए, कोरी कोई काहू को नहीं सब देखी ठोक बजाए। मार्ग मोती बीथरे अंधा निकस्यो आए, जोत बिना जगदीश की जगतो लंगे जाए। बूढ़ा बंश कबीर का उपजो पूत कमाल, हर का सिमरन छाड़ कै कर ले आया माल। कबीर साधु को मिलने जाइए साथ ना लीजे कोए, पाछे पाव ना दीजिए आगे होए सो होए। कबीर जग बांध्यो जह जेवरी तेह मत बंधो कबीर, जह आटा लोन ज्यो सोन समान शरीर। कबीर हंस उड्यो तन गाड्यो सो जाई सैना, अज हूं जियो ना छोड़ई रंकाई नैना। कबीर नैन निहारो तुझ कहो श्रवण सुनो तो नाओ, बैन उचरो तो नाम जी चरण कमल रिद ठाओ। कबीर सुर्ग नर्ग ते मैं रहो सदगुर के प्रसाद, चरण कमल की मौज में रहो अंत अर्याद। कबीर चरण कमल की मौज को कह कैसे उन्मान, कहबे को शोभा नहीं देखा ही परवान। कबीर देख कह कह कहो कहे ना को पतियाए, हर जैसा तैसा उही रहो हरख गुन गाए। कबीर चुगे चितारे पी चुगे चुग चुग चितारे, जैसे बचरे कुंज मन माया ममता रे। कबीर अंबर कन हर छाया बर्ख भरे सरताल, चात्रक ज्यो तरसत रह तिनको कौन हवाल। कबीर चकी ज्यो निस्बिछर आए मिले प्रभात, जो नर बिछरे राम स्यो ना दिन मिले ना रात। कबीर रह नायर बेशोरिया रहोरे संख मजूर, देवल देवल ताहड़ी देसे उगवत सूर। कबीर सूता क्या करे जाग रोए पै दुख, जाका बासा गोर मैं सो क्यों सो वै सुख। कबीर सूता क्या कर है उठ के ना जपै पुरार, एक दिन सोमन होए गो लांबे गोट पसार। कबीर सूता क्या कर है बैठा रहो अर जाग, जाके संगते बिछरा ताही के संग लाग। कबीर संत की गल ना छोड़िए मार्ग लागा जाओ, पेखत ही पोनीत होए पेट जपिए नाओ। कबीर साकत संग ना कीजिए दूरे जाइए भाग, बासन कारो परसिए तो कछ लागे दाग। कबीरा राम ना चेतेओ जरा पहुंचो आए, लागी मंदिर द्वार ते आप क्या काढ़िया जाए। कबीर कारण सो पयो जो कि नो करतार, तिस बिन दूसर को नहीं एक सृजनहार। कबीर फल लागे फलन पाकन लागे आंब, जाय पहुंचे खसम को जो बीच न खाही कांब। कबीर ठाकर पूजे मोल ले मानहट तीर्थ जाहे, देखा देखी स्वांग तार पुले पटका खाहे। कबीर पाहन परमेश्वर किया पूजे सब संसार, इस परवासे जो रहे बूढ़े काली तार।
ਕਬੀਰ ਕਾਗਦ ਕੀ ਓਬਰੀ, ਮਸਕੇ ਕਰਮ ਕਪਾਟ, ਪਾਹਨ ਬੋਰੀ ਪਿਰਥਮੀ, ਪੰਡਿਤ ਪਾੜੀ ਬਾਟ। ਕਬੀਰ ਕਾਲ ਕਰੰਤਾ ਅਬ ਹੈ ਕਰ, ਅਬ ਕਰਤਾ ਸੋਏ ਤਾਲ, ਪਾਛੈ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਜਬ ਸਿਰ ਪਰ ਆਵੈ ਕਾਲ। ਕਬੀਰ ਐਸਾ ਜਨਤਿਕ ਦੇਖਿਆ, ਜੈਸੀ ਧੋਈ ਲਾਖ, ਦਿਸੈ ਚੰਚਲ ਬਹੁਗੁਣਾ, ਮਤਹੀਨਾ ਨਾ ਪਾਕ। ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧ ਕਉ, ਜਮ ਨਾ ਕਰੈ ਤਿਸਕਾਰ, ਜਿਨ ਇਹੋ ਜਮੁਆ ਸਿਰਜਿਆ, ਸੋ ਜਪਿਆ ਪਰਵਦਗਾਰ। ਕਬੀਰ ਕਸਤੂਰੀ ਪਇਆ, ਭਵਰ ਭਏ ਸਬਦਾਸ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕੀ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਰਾਮ ਨਿਵਾਸ। ਕਬੀਰ ਗਹਿ ਗਚ ਪਰਿਓ ਕੁਟੰਬ ਕੈ, ਕਾਂਠੇ ਰਹਿ ਗਿਓ ਰਾਮ, ਆਏ ਪਰੇ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕੇ, ਵਿਚੈ ਤੂੰ ਮਾਤਾਮ। ਕਬੀਰ ਸਾਗ ਤੇ ਸੂਕਰ ਭਲਾ, ਰਾਖੈ ਅੱਛਾ ਗਾਓ, ਉਹ ਸਾਗਤ ਬੱਪਰਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਲਹਿ ਨਾਓ। ਕਬੀਰ ਕੌਡੀ ਕੌਡੀ ਜੋਰ ਕੈ, ਜੋਰੇ ਲੱਖ ਕਰੋਰ, ਚਲਤੀ ਬਾਰ ਨਾ ਕਛ ਮਿਲਿਓ, ਲਈ ਲੰਗੋਟੀ ਤੋਰ। ਕਬੀਰ ਬੈਸਰੋ ਹੁਆ ਤਾਂ ਕਿਆ ਪਿਆ, ਮਾਲਾ ਮੇਲੀ ਚਾਰ, ਬਾਹਰ ਕੰਚਨ ਬਾਰਹਾ, ਪਿੱਤਰ ਭਰੀ ਪੰਗਾਰ। ਕਬੀਰ ਰੋਣਾ ਹੋਏ ਰਹੋ ਬਾਟਕਾ, ਤਜ ਮਨ ਕਾ ਅਭਮਾਨ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਦਾਸ ਹੋਏ ਤਾਹੇ ਮਿਲੈ ਭਗਵਾਨ। ਕਬੀਰ ਰੋੜਾ

हर जन ऐसा चाहिए जो पानी सरबंग कबीर पानी हुआ ता क्या पया सिरा ताता होए। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए ऊच पवन कर कामनी शिखर तजा फहराए ताते पली मधुकरी संत संग गुण गाए। कबीर पाटन ते उजर पहला राम भगत जेठाए राम स्नेही बाहरा जमपुर मेरे पाए। कबीर गंग जमन के अंतरे सहज सुन के काट तहां कबीर है मटकिया खोज तुम जन बाट। कबीर जैसी उपजी पेड़ ते जो तैसी निभ ओड़ हीरा किसका बापरा पुजे नारतन करोड़। कबीरा एका चंबो देखियो हीरा हट बिकाए बंजन हारे बाहरा कौडी बदले जाए। कबीरा जहां ज्ञान तह धर्म है जहां झूठ तह पाप जहां लोभ तह काल है जहां खिमा तह आप। कबीर माया तजीता क्या पया जो मान तजया नहीं जाए मान मुनि मुनमर गरे मान सबे कौ खाए। कबीर साचा सतगुर मैं मिलया शब्द जो बहया एक लागत ही पोए मिल गया परया कलेजे शेक। कबीर साचा सतगुर क्या करे जो सिखा मह चूक अंधे एक न लाग गई जो बास बजाई है फूक। कबीर है गए बहन सगन कहन छत्रपति की नार ताश पटंतर ना पुजय हर जन की पनिहार। कबीर निरपनारी क्यों निंदी है क्यों हर चेरी कौ मान ओ मांग सुवार बिखै कौ ओ सिमरै हर नाम। कबीर थूनी पाई थित पई सतगुर बंदी तीर कबीर हीरा बंजया मान सरोवर तीर। कबीर हर हीरा जन जहोरी लेके मांडे हाट जब ही पाइए पारखू तब हिरन की साट। कबीर काम परे हर सिमरिए ऐसा सिमरो नित अमरापुर बासा करो हर गया बहोर बित। कबीर सेवा को दोए पले एक संत एक राम राम जो दाता मुक्त को संत जपावे नाम। कबीर जिह मार्ग पंडित गए पाछे परी बहीर एक अवकट काटी राम की तेह चढ़ रहे हो कबीर। कबीर दुनिया के दोखे मुआ चालत कुल की कान तब कुल किसका लाज सी जब ले तरह मसान। कबीर डूबे गोरे बापरे बहु लोगन की कान पारोसी के जो हुआ तू अपने पी जान। कबीर पली मधुकरी नाना बिद को नाज दावा काहू को नहीं बड़ा देश बड़ राज। कबीर दावे दा जिन होत है निर्दावे रह निसंक जो जानो निर्दावे रह सो ग्रह इंद्र सोरंक। कबीर पाल समूहा सरवर परा पी ना सके कोई नीर भाग बड़े तै पायो तू पर पियो कबीर। कबीर पर बाते तारे खिसे त्यों एहो खिसे शरीर ए दो अखर ना खिसे सो गह रहे हो कबीर। कबीर कोठी काठ की दैदस लागी आग पंडित जल मुए मूर्ख उबरे पाग। कबीर संसा दूर करो काग दे बिहाए बावन अखर सोध कै हर चरणी चितलाए। कबीर संत ना छाड़ संतई जो कोटक मिले असंत मलयागर भुजंगम बेड्यो ता शीतलता नात जंत। कबीर मन शीतल पाया ब्रह्म ज्ञान जिन जो आला जग जा रहा सो जन के उदक समान। कबीर सारी सृजन हार की जाने नाही कोए कह जाने अपन तनी कह दास दीवानी होए। कबीर पली पई जो पौ परिया दिशा गई सब पूल ओरा घर पानी पया जाए मिलियो टलकूल। कबीरा तूर सकेल कै पुरिया बांधी देह दिवस चार को पेखना अंत खेहे की खेह। कबीर सूरज चांद कै उदय पई सब देह गुर गोबिंद के बिन मिले पलट पई सब खेह। जह अन पौत है पह नहीं जह पौत है हर नाहे क
कहो कबीर विचार कै संत सुनो मन माए। कबीर जिनो किशु जानिया नहीं तिन सुख नींद बिहाए, हमो जो बूझा बूझना पूरी परी बलाए। कबीर मारे बहुत पुकारिया पीर पुकारे और, लागी चोट मरम की रहो कबीरा ठौर। कबीर चोट सुहेल की कबीर चोट सुहेली सेल की, लागत ले ओ सास चोट सहारे शब्द की तास गुरु मैं दास। कबीर मुल्ला मुनारे क्या चढ़ा साई ना बैरा होए, जा कारण तू बांग दे दिल ही पीतर जोए। शेख सबूरी बाहरा क्या अज काबे जाए, कबीर जाकी दिल साबत नहीं ता को कहां खुदाए। कबीर अल्लाह की कर बंदगी जे सिमरत दुख जाए, दिल में साई प्रगटै बुझै बलंती नाए। कबीर जोर किए कबीर जोरी किए जुल्म है कहता नाव हलाल, दफ्तर लेखा मांगिए तब होएगो कौन हवाल। कबीर खूब खाना खिचरी जा मैं अमृत लोन, हेरा रोटी कारने गला कटावे कौन। कबीर गुर लागा तब जानिए मिटे मोह तन ताप, हर सोग दाजे नहीं तब हर आपे आप। कबीर राम कहन में भेद है ता मैं एक विचार, सोई राम सबै कह है सोई कौतकार। कबीर राम मैं राम कहो कहबे माहे बबेक, एका ने कह मिल गया एक समाना एक। कबीर जाकर साधना सेवी है हर की सेवा ना है, ते कर मरहट सारखे पूत बसै तिन माए। कबीर गुंगा हुआ बावरा बैरा हुआ कान, पावो ते पिंगल पया मारिया सतगुरबान। कबीर सदगुर सूर में बाहया बाण जो एक, लागत ही पोए गिर परया प्राकृत जे शेक। कबीर निर्मल बूंदिया कास की पर गई भूम बेकार, बिन संगत यो मन नहीं होए गई पठशार। कबीर निर्मल बूंदिया कास की लीनी भूम में लाए, अनक सियाने पच गए ना निर्वारी जाए। कबीर हज काबे हो जाए था आगे मिलिया खुदाए, साई मुझसे लर परिया तुझे किर फुरमाई गाए। कबीर हज काबे होए होए गया केती बार कबीर, साई मुझ में क्या खता मुखो ना बोले पीर। कबीर जी जो मारे जोर कर कहते है जो हलाल, दफ्तर दई जब काड है होएगा कौन हवाल। कबीर जोर किया सोजो

मुख ते राम संभाल, हाथ पाओ कर काम सब चीत निरंजन नाल। महला पंजवा, कबीरा हमरा को नहीं, हम किसू के नाहे, जिन एहो रचन रचाया तिसी माए सुमाहे। कबीर की चढ़िया टा गिर परिया, किशु ना आयो हाथ, पीस्त पीस्त चाबिया सोई निभया साथ। कबीर मन जाने सब बात, जानत ही अवगन करे काहे की कुसलात। हाथ दीप कुए पर है, कबीर लागी प्रीत सुजान, स्यों बरजै लो गया जान, ता स्यों टूटी क्यों बने जाके जी प्राण। कबीर कोठे मंडप हेत कर, काहे मरो सवार, कार्ज साढ़े तीन हाथ कहीं ता पौने चार। कबीर जो मैं चितवो ना करे, क्या मेरे चितवे होए, अपना चितव्या हर करे जो मेरे चेतना होए। महला तीजा, चिंता पे आप कराए सिया, चिंत पे आपे दे, नानक सो सा लाही है जे सब ना सार करे। महला पंजवा, कबीर राम ना चेते ओ फिर या लालच माहे, पाप करंता मर गया औद पुनी खिन माहे। कबीर काया काची कारवी, केवल काची तात, साबत रखै ता राम पाज नाहे ता बिरठी बात। कबीर केसो केसो कुकिया, ना सोइए आसार, रात दिवस के कुकने कबहू के सुने पुकार। कबीर काया कजली बन पया, मन कुंचर मैं मंत, अंकस ज्ञान रतन है खेवट बिरला संत। कबीर राम रतन मुख कोथरी, पारख आगे खोल, कोई आए मिला गो गाह की लेगो में गो मोल। कबीर राम नाम जान्यो नहीं, पाल्यो कटक कुटंब, तंदे ही मैं मर गयो बाहर पई ना बंब। कबीर आखी केरे माटके, पल पल गई बिहाए, मन जंजाल ना छोड़ी जम दिया दमामा आए। कबीर तारवर रूपी राम है, फल रूपी बैराग, छाया रूपी साध है, जिन तजया बाद विवाद। कबीर ऐसा बीज बोए बारह मास फलंत, शीतल छाया गहर फल पंखी केल करंत। कबीर दाता तरवर दया फल, उपकारी जीवंत, पंखी चले दिसावरी बिरखा सुफर फलंत। कबीर साधु संग प्राप्ति, लिखिया होए ललाट, मुक्त पदार्थ पाई है ठाक ना या कटकाट। कबीर एक कड़ी आदि करी, आदि हूं ते आद, भगतन सेती गोष्टे जो कीने सो लाभ। कबीर भांग माछली सुरा पान, जो जो प्राणी खाहे, तीर्थ व्रत नेम किए ते सबै रथा तल जाहे। नीचे लोहिन कर रहो ले साजन कट माहे, सब रस खेलो पीसो किसी लिखावो नाहे। आठ जाम चौ सठ करी, तो निरखत रह जियो, नीचे लोहिन क्यों करो सब कट देखो पियो। सुन सखी पी मह जियो बसे, जी में बसे के पियो, जियो पियो बूझो नहीं कट में जियो के पियो। कबीर बामन गुरु है जगत का, भगतन का गुर नाहे, अर्ज उर्ज के पचमुआ चारो बेदो माहे। हर है खांड रेत में बिखरी, हाथी चुनी ना जाए, कह कबीर गुर पली बुझाई कीटी होए कह खाए। कबीर जो तुहे तो साध ब्रह्म की, शीस काट कर गोए, खेलत खेलत हाल कर जो किश होए ता होए। कबीर जो तुहे तो साध ब्रह्म की, पाके से ती खेल, काची सरसों पेल के ना खल पही ना तेल। ढूंढत डोले अंध गत, अर चिंत नाही संत, कह नामा क्यों पाई है बिन भगतो भगवंत। हर सो हीरा छाड़ कै करे आन की आस, ते नर दो जग जाहेंगे सत पाखे रविदास। कबीर जो ग्रहो करे ता धर्म कर,

देही रोग ना लगई पल्ले सब किश पाए, फरीदा पंख प्राहुणी दुनी सुहावा बाग, नौमत वजी सुबह स्यों चलन का कर साज, फरीदा रात कथूरी वंडी है सुतिया मिला ना पाओ, जिन्ना नैन नींदरा वले तिन्ना मिलन को आओ, फरीदा मैं जानिया दुख मुझकू दुख सबाया जग, उचे चढ़ के देखिया ता कर कर ए हायग, महला पंजवा फरीदा पूम रंगावली मंज विसूला बाग, जो जन पीर निवाजे आतना चना लाग, महला पंजवा फरीदा उमर सुहावड़ी संग सुवनड़ी देह, विरले कई पाईन जिन्ना प्यारे ने, कंदी वहन न टाहे तोपी लेखा देवना, जिदर रबर जाए वहन तिदाऊ गौ करे, फरीदा दुखा सेती देह गया सूला सेती रात, खड़ा पुकारे पातनी बेड़ा कप्रवात, लम्मी लम्मी नदी वह कंदी के रहेत, बेड़े नो कप्र क्या करे जे पातन रह सुचेत, फरीदा गली सो सज्जन वी एक टूंडेंदी नाल हां, तुखा ज्यो माली कारण तिन्ना मां पिरी, फरीदा यो तन पौकना नित नित दुखी है कौन, कन्नी बुझे दे रहा किती वगे पौन, फरीदा रब खजूरी पकियां माखे नहीं वहन, जो जो मन्ने डीहड़ा सो उम्र हथ पवन, फरीदा तन सुका पिंजर थिया तलियां खूंडे काग, अजय सो रब ना बहोड़ो देख बंदे के भाग, कागा करंग ढंडोलिया सगला खाया मास, ए दो नैना मत छोहो फिर देखन की आस, कागा चूंडना पिंजरा बसै ता उडर जाहे, जित पिंजरा मेरा शह वसै मास ना ते दू खाए, फरीदा गोर निमाणी सड करे ने करिया कर आओ, सर पर मैं थे आवना मरनो ना डर आओ, एनी लोयनी देखदिया केती जल गई, फरीदा लोका आपो अपनी मैं अपनी पई, आप सवार है मैं मिले मैं मिलिया सुख होए, फरीदा जे तू मेरा होए रह सब जग तेरा होए, कंधी उत्तै रुखड़ा किचरक बन्ने तीर, फरीदा कच्चा पांडे रखी है किचर ताई नीर, फरीदा महल सखण रह गए वासा आया तल, गोरा से निमाणिया रैसन बैसन रूहा मल, आखी सेखा बंदगी चरण अज के कल, फरीदा मौतै दा बन्ना एवै दिसै ज्यों दरिया वै टाहा, अगै दोजक तपिया सुनिए हूल पवै कहा, एक नानो सब सोजी आई एक फिर देवे परवाह, अमल जे कीत्या दुनी वेच से दर गयो गाहा, फरीदा दरिया वै कन्ने बगला बैठा केल करे, केल करें दे हंजनो आ चिंते बाज पए, बाज पए तिस रब दे केला विसरिया, जो मन चेतना चेते सान सो गाली रब किया, साडे त्रैमण दे होरी चले पानी अन्न, आयो बंदा दुनी विच वत या सुनी बन, मलकल मौत जाए आवसी सब दरवाजे पन, तिन्ना प्यारिया पाइया अगै दिता बन, वेखो बंदा चलिया चौं जणिया दे कन, फरीदा अमल जे कीते दुनी विच दरगै आए कम, फरीदा हां बलिहारी तन पंखिया जंगल जिन्ना वास, कक्कर चुगन थल वसन रब ना छोड़न पास, फरीदा रुत फिरी वन कंबिया पत झड़े चढ़ पाहे, चारे कुंडा टूंडियां रहन किथाऊ नाहे, फरीदा पाड़ पटोला तज करी कंबरली पहरे ओ, जिन्नी वेसी सोह मिले से ही वेस करे ओ, महला तीजा काय पटोला पाड़ती कंबलड़ी पहरे, नान कर ही बैठिया सौ मिले जे नियत रास करे, महला पंजवा फरीदा गर्भ जिन्ना वड्याईया तन जोबन आगाह, खाली चले तनी स्यों टिब्बे ज्योमी हाहो, फरीदा तिन्ना मुख डरावने जिन्ना विसारे उन नाओ,
ਐਥੇ ਦੁੱਖ ਕਨੇਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਠੌਰ ਨਾ ਠਾਓ। ਫਰੀਦਾ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਨਾ ਜਾਗਿਓ ਹੋ, ਜੀਵਦੜੋ ਮੋਇਓ ਹੈ। ਜੇ ਤੈ ਰੱਬ ਵਿਸਾਰਿਆ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨਾ ਵਿਸਰਿਓ ਹੈ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਫਰੀਦਾ ਕੰਤ ਰੰਗਾਵਲਾ ਵੱਡਾ ਵੇ ਮੋਹਤਾਜ, ਅੱਲੈ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ ਇਹੋ ਸਚਾਵਾਂ ਸਾਜ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਫਰੀਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਇੱਕ ਕਰ, ਦਿਲ ਤੇ ਲਾਹੇ ਵਿਕਾਰ। ਅੱਲੈ ਪਾਵੈ ਸੋ ਪਲਾ ਤਾਂ ਲੱਭੀ ਦਰਬਾਰ।

दात दाती साहेब संधियां क्या चलै तिस नाल, इक जागन दे ना लहन इक ना सुत्यां दे उठाल। ढूंढेंदीए सुहाग को तौ तनकाई कोर, जिन्ना नाम सुहागणी तिन्ना झाक ना होर। सबर मंज कमाण ए सबर का निहुणो, सबर संदा बाण खालक खता ना करी। सबर अंदर साबरी तन ए वै जालेन, हुन जी खुदाई दै भेत न किसै देन। सबर एहो सुवाओ जे तू बंदा दिड़ करै, वद थी वै दरियाओ टुटना थी वै वाहड़ा। फरीदा दरवेसी गाखड़ी चोपड़ी परीत, इकन किने चाली है दरवेसा वी रीत। तन तपै तनूर ज्यों बालन हड बलन, पैरी थका सिर जुला जे मूह प्री मिलन। ताना तपाए तनूर ज्यों बालन हड ना बाल, सिर पैरी क्या फेड़िया अंदर प्री निहाल। हाउ टू डेंदी सज्जना।

कवण गुण कवण सो मणिया मंत कवण सो वे सोह करी जित वस आवै कंत निवण सो अखर खवण गुण जिहबा मणिया मंत ए त्रै भैने वे सकार ता वस आवी कंत मत होंदी होए इयाणा तान होंदे होए निताणा अण होंदे आप वंडाए को ऐसा भगत सदाए एक फिका ना गालाए सब नाम है सच्चा तनी हयाव ना कही ठाहे मानक सब अमोलवे सबना मन मानक ठाहन मूल मचांगवा जे तो प्रिया दिसे।

विचार जगत पिता है सर्व प्राण को आधार जन नानक भगत दार तुल ब्रह्म समसर एक जी क्या बखाना हां के बल बल बल बल सद बलिहार अमृत प्रवाह सर अतुल भंडार पर परे ही ते परे अपरे अपार पर आपनो पावन कर मंत्र ना दूसरो तार उपत पर लो एक है निमख तो कर आन नाही समसर उजियारो निर्मर कोट प्राप्त जाहे नाम लिए हर हर जन नानक भगत दार तुल ब्रह्म समसर एक जी क्या बखाना हां के बल बल बल बल सद बलिहार सगल पवन तारे एक थे किए बिस्थारे पूर रहो सर मैं आप है निरारे हार गुण नाही अंत पारे जी जंत सब थारे सगल को दाता एक है अलख मुरारे आप ही तारन तारे कुदरत है देखारे वर्ण चिहन नाही मुख नाम सारे जन नानक भगत दार तुल ब्रह्म समसर एक जी क्या बखाना हां के बल बल बल बल सद बलिहार सर्व गुण निधान कीमत ना ज्ञान ध्यान ऊचे ते ऊचो जानी जय प्रभ तेरो थान मन तन तेरो प्राण एक सूत है जहान कौन उपमा देओ बड़े ते बडान जाने कौन तेरो पेओ अलख्या पार देओ अकल कला है प्रभ सर्व को तान जन नानक भगत दार तुल ब्रह्म समसर एक जी क्या बखाना हां के बल बल बल बल सद बलिहार निरंकार आकार अशल पूर्ण अविनाशी हर खवंत अनंत रूप निर्मल बेगासी गुण गावे बेअंत अंत एक तिल नहीं पासी जा कहो हे कृपाल सुजन प्रभ तुम्हें मिलासी तन तन ते तन जन जे कृपाल हर हर पयो हर गुर नानक जन परसयो से जन मरण दो थे रहो सत सत हर सत सत सत्ते सत पणिए दूसरे अन्न अवर पुरख पौ रतन सुनिए अमृत हर को नाम लैत मन सब सुख पाए जेहे रसन चाखेओ तेहे जन तृप्त आगाए जे ठाकर सो प्रसन्न पयो सतसंग ते प्यार हर गुरु नानक जन परसेओ तिन सब कुल कियो उधार सच सभा दीवान सच सच्चे पै तरियो सच्चे तख्त निवास सच तपावस करियो सच सिरजियो संसार आपया पुल ना पुलो रतन नाम अप

श्री गुरु साहेब सब ऊपर करी कृपा, सत जोग जंत्र ऊपर श्री प्रहलाद भगत उदरियं, हस्त कमल माथे पर धरियं, अलख रूप जी लख्या ना जाई, साधक सिद्ध सगल सरनाई, गुर के बचन सत जी तारो, मानस जन्म देह निस्तारो, गुर जहाज खेवट गुरु, गुर बिन तरिया ना कोए, गुर प्रसाद प्रभ पाईए, गुर बिन मुक्त ना होए, गुर नानक निकट बसे बनवारी, तन लैणा थाप जोत जगतारी, लहणे पंथ कर्म का किया, अमरदास पल्ले कहो दिया, तिन श्री रामदास सोडी थर थप्यो, हर का नाम अखै निद अप्यो, अप्यो हर नाम अखै निद चहो जुग, गुर सेवा कर फल लहियं, बंदे जो चरण सरण सुख पावै, परमानंद गुरमुख कहियं, प्रतख देह पार ब्रह्म स्वामी, आद रूप कोखण परणं, सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी, श्री रामदास तारण तरणं, जेह अमृत बचन बाणी, साधु जन जप है कर बचित चाओ, आनंद नित मंगल गुर दर्शन सफल संसार, संसार सफल गंगा गुर दर्शन, परसन परम पवित्र गते, जीते जम लोक पतत जे प्राणी, हर जन सेव गुर ज्ञान रते, रग बंस तिलक सुंदर दशरथ, कार मुन बंछे जाकी सरणं, सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी, श्री रामदास तारण तरणं, संसार अगम सागर तुलहा, हर नाम गुरु मुख पाया, जग जन मरण पग्गा ए आई ही है प्रतीत, प्रतीत ही है आई जन जन कै, तिनको पदवी उच पई, तज माया मोह लोभ अर लालच, काम क्रोध की बिरथा गई, अवलोकिया ब्रह्म परम सब छुटकिया, दिव दृष्ट कारण करणं, सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी, श्री रामदास तारण तरणं, प्रताप सदा गुर का कट कट, प्रगास पया जस जन कै, एक पड़े सुने गावै, प्रभाते करे इशनान, इशनान करे प्रभात शुद्ध मन, गुर पूजा विद सहत करं, कंचन तन होए परस पारस कहो, ज्योत स्वरूपी ध्यान तरंग, जग जीवन जगन्नाथ जल थल मैं, रहया पूर बहुविध वर्णन, सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी, श्री रामदास तारण तरणं, जिनो बात निश्चल त्रू जानी, तेई जीव काल ते बचा, तिन तरयो समुंदर रुद्र खिन एक मैं, जल हर बिंब जुगत जगरचा, कुंडलनी सुरजी सतसंगत, परमानंद गुरु मुख मचा, श्री गुरु साहिब सब ऊपर, मन बच क्रम से भी है सच्चा, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो, कवल नैन मदर बैन कोट सैन संग सोब, कहत मां जसोद जिसे दही पात खाहे जियो, देख रूप यातन रूप मोह महा मग पई, किंकनी शब्द चुनतकार खेल पाहे जियो, काल कलम हुकम हाथ कहो कौन मेट सके, ईस बम ज्ञान ध्यान तरत ही है चाहे जियो, सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तुही, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो, राम नाम परम धाम शुद्ध बुद्ध निरीकार, बेसुमार सर्वर कौ काहे जियो, सुथर चित भगत हित
ਪੇਖ ਧਰਿਓ ਹਰ ਨਾਖ ਸਹਰਿਓ ਨਖ ਵਿਦਾਰ ਜੀਓ ਸੰਖ ਚੱਕਰ ਗਦਾ ਪਦਮ ਆਪ ਆਪ ਕੀਓ ਸ਼ਦਮ ਅਪਰੰਪਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਖੈ ਕੌਣ ਤਾਹੇ ਜੀਓ ਸਤ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੂਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿ ਜੀਓ ਪੀਤ ਬਸਨ ਕੁੰ ਦਸਨ ਪ੍ਰਿਆ ਸਹਿਤ ਕੰਠ ਮਾਲ ਮੁਕਟ ਸੀਸ ਮੋਰ ਪੰਖ ਚਾਹੇ ਜੀਓ ਬੇਵਜੀਰ ਵੱਡੇ ਤੀਰ ਧਰਮ ਅੰਗ ਲਖ ਅਗਮ ਖੇਲ ਕੀਆ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹੇ ਜੀਓ ਅਕਥ ਕਥਾ ਕਥੀ ਨਾ ਜਾਏ ਤੀਨ ਲੋਕ ਰਿਆ ਸਮਾਏ ਸੁਤੈ ਸਿਧ ਰੂਪ ਧਰਿਓ ਸਾਹਨ ਕੈ ਸਾਹੇ ਜੀਓ ਸਤ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੁਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿ ਜੀਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ ਬਲੈ ਛਲਨ ਸਬਲ ਮਲਨ ਭਗਤ ਫਲਨ ਕਾਨ ਕੁਵਰ ਨਿਹ ਕਲੰਕ ਬਜੀ ਡੰਕ ਚੜੂ ਦਲ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀਓ ਰਾਮ ਰਵਣ ਦੁਰਤ ਦਵਣ ਸਗਲ ਪਵਨ ਕੁਸਲ ਕਰਨ ਸਰ ਭੂਤ ਆਪ ਹੀ ਦੇਵਾਲ ਦੇਵ ਸਹਿਸ ਮੁਖ ਫਨਿੰਦ ਜੀਓ ਜਰਮ ਕਰਮ ਮੱਛ ਕੱਛ ਹੋ ਬਰਾਹਾ ਜਮਨਾ ਕੈ ਕੂਲ ਖੇਲ ਖੇਲਿਓ ਜਿਨ ਗਿੰਦ ਜੀਓ ਨਾਮ ਸਾ ਰਹੀਏ ਤਾਰ ਤਜ ਵਿਕਾਰ ਮਨ ਗਿਅੰਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਤ ਜੀਓ ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਮਾਨ ਨਿਜ ਨਿਧਾਨ ਸਚ ਜਾਨ ਮੰਤਰ ਇਹ ਨਿਸਬਾਸਰ ਹੋਏ ਕਲਿਆਣ ਲਹਿ ਪਰਮ ਗਤ ਜੀਓ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਜਨ ਜਨ ਸਿਉ

चरण कमल सदा से ओ दृढ़ता कर मत जियो। नाम सार हिये तार तज बिकार मन गे अंध, श्री गुरु श्री गुरु श्री गुरु सत जियो। सेवक कै भरपूर जुग जुग, वाहगुरु तेरा सब सदका। निरंकार प्रभ सदा सलामत, कह ना सकै को तू कद का। ब्रह्मा विष्णु सिरे तैं अगणत, तिनको मोह भया मन मद का। चौरासी लख जोन उपाई, रिजक दिया सब हूं कौ तद का। सेवक कै भरपूर जुग जुग, वाह गुरु तेरा सब सदका। वाहो वाहो का बड़ा तमाशा, आपे हसै आप ही चितवै, आपे चंद सूर परगासा। आपे जल आपे थल थम्मन, आपे किया कटकट बासा। आपे नर आपे फुनारी, आपे सार आप ही पासा। गुरमुख संगत सबै बेचारा, वाहो वाहो का बड़ा तमाशा। किया खेल बड़ मेल तमाशा, वाहे गुरु तेरी सब रचना। तू जल थल गगन।

निरंजन जचना, गुर प्रसाद पाइए परमार्थ सतसंगत सेती मन खचना। किया खेल बड़मेल तमाशा, वाह गुरु तेरी सब रचना। अगम अनंत अनाद आद जिस कोय न जाने, शिव ब्रंच तर ध्यान नित जिस वेद बखाने। निरंकार निर्वैर अवर नहीं दूसर कोई, पंजन गण समरथ तरन तारन प्रभ सोई। नाना प्रकार जिन जग कियो, जन मथरा रसना रसै। श्री सतनाम करता पुरख गुरु रामदास चित्तै बसै। गुरु समरथ गह करिया, त्रुव बुद्ध सुमत सुमारन को। फुन त्रम तुजा फहरंत सदा, अग पुंज तरंग निवारण को। मथुरा जन जान कही जी साच, सो और कशु ना विचारन को। हर नाम बोहित बड़ो कल मैं, पवसागर पार उतारन को। संतत ही सतसंगत संग, सो रंग रते जस गावत है। धर्म पंथ तरयो तरनी तर आप, रहे लिव तार ना तावत है। मथुरा पन भाग पले उनके, मन इच्छित ही फल पावत है। रव के सुत को तिन त्रास कहा, जो चरण गुरु चितलावत है। निर्मल नाम सदा परपूर्ण, शब्द तरंग प्रगटत दिन आगर। गहर गंभीर अथाह अत बड़ सुबर, सदा सब बेदर्त नागर। संत मराल करै कंतूहल, तिन जम त्रास मिट्यो दुख कागर। कल जब दुर्त दूर कर बे कौ, दर्शन गुरु सगल सुख सागर। जाको मन ध्यान तरै फिरत सगल जुग, कब होक को उपावै आत्म प्रगास कौ। वेद बाणी सहत बरंच जस गावै जाको, शिव मुन गहे नात जात कबलास कौ। जाको जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप, जटा जूट पेख किए फिरत उदास कौ। सो तिन सतगुर सुख पाए कृपा तारी जी, नाम की बढ़ाई दई गुर रामदास कौ। नाम निदान ध्यान अंतर्गत, तेज पुंज तेह लोग प्रगासे। देख दर्श पटक प्रम पजत, दुख परहर सुख सहज बेगासे। सेवक सित सेवक सिख सदा अतलुबत, आलस मुह जो कुसम सुभासे। विद्यमान गुर आप थप्यो थिर, साचो तख्त गुरु रामदास। तार्यो संसार माया मद मोहत, अमृत नाम दियो समरथ। फुन कीर्तवंत सदा सुख संपत, रिद अर सिद्ध न छोड़े साथ। दान बड़ो अतवंत महाबल, सेवक दास कयो एहो तथ। ताहे कहा परवाह काहू की, जा कै बसीस धरयो गुर हथ। तीन पवन पर पूर रहयो सोई, अपन सरस कियो ना जगत कोई। अपने आप ही ओ पायो, सुर नर असुर अंत नहीं पायो। पायो नहीं अंत सुरे असुर नर।

नारद ध्रुव प्रहलाद सुदामा पुब भगत हर के जुगण अमरीक जय देव त्रिलोचन नामा अवर कबीर पण तिन को अवतार भयो कल पिंतर जस जगत्र पर छायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मैं तैं हर परम पद पायो मनसा कर स्मरंत तुझै नर काम क्रोध मिट्यो जो तिन बाचा कर स्मरंत तुझै तिन दुख दरिद्र मिट्यो जो खिण कर्म कर तो दर्श परस पारस सरबल भट्ट जस गायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मैं तैं हर परम पद पायो जे सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटै खेन जे सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन जे सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावै जे सतगुर सिमरंत रिद सिद्ध नवनिध पावै सोई रामदास गुरबल पाण मिल संगत तन तन करो जे सतगुर लग प्र पाई है सो सतगुर सिमरो न रो जिन शब्द कमाए परम पद पायो सेवा करत ना छोड्यो पास ताते गौहर ज्ञान प्रकट उजियारो दुख दरिद्र अंधियार को नास कव कीर्त जो संत चरण मुड़ लागे तिन काम क्रोध जम को नहीं त्रास जिव अंगद अंग संग नानक गुर तिव गुर अमरदास कै गुर रामदास जिन सतगुर सेव पदार्थ पायो निसबासर हर चरण निवास ताते संगत सगन पाए पौ मान तुमली अगर प्रगट सुवास ध्रुव प्रहलाद कबीर त्रिलोचन नाम लैत उपजो जो प्रगास जिह पिखत अत होए रहस मन सोई संत सहार गुरु रामदास नानक नाम निरंजन जाना कीनी भगत प्रेम लिव लाई ताते अंगद अंग संग पयो सायर तिन शब्द सुरत की नींव रखाई गुर अमरदास की अकथ कथा है एक जीही कश कही ना जाई सोडी सरिट सगल तारन कहो अब गुर रामदास कहो मिली बढ़ाई हम अब गुण परे एक गुण नाही अमृत शाड बिख बिख खाई माया मोह परम पै पूले सुतदारा स्यों प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास रख सरनाई मोह मल बिवस कियो काम गै केस पछाड़ियो क्रोध खंड प्रचंड लोभ अपमान स्यों चाड़ियो जन्म काल कर जोड़ हुक्म जो होए सो मन्नै पव सागर बंदियो सिख तारे सो प्रसन्न सिर आत पात।

एको ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक महला नावा गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म अकार्थ कीन कहो नानक हर भज मना जेह बिद जल कौ मीन बिख्यन स्यों काहे रचियो निमख ना होहे उदास कहो नानक भज हर।

तन तन संपै सुख दियो, अर जेह नीके धाम, कहो नानक सुन रे मना, सिमरत काहे नाराम। सब सुख दाता राम है, दूसर नाहिन कोय, कहो नानक सुन रे मना, तह सिमरत गत होए। जह सिमरत गत पाई है, तेह पजरे तै मीत, कहो नानक सुन रे मना, औद कटत है नीत। पांच तत् को

कट कट में हरजू बसै संतन कहो पुकार कहो नानक ते भज मना पौने दे उतर है पार। सुख दुख जेह पर सह नहीं लोभ मोह अभमान कहो नानक सुन रे मना सो मूर्त भगवान। उस्तत निंदया नाहे जेह कंचन लोहो समान कहो नानक सुन रे मना मुक्त ताहे तै जान। हरख सोग जा कै नहीं बैरी मीत समान कहो नानक सुन रे मना मुक्त ताहे।

कहो नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहे बखान। जे बिखिया सगली तजी, लियो पेख बैराग। कहो नानक सुन रे मना, तेह नर माथे पाग। जे माया ममता तजी, सब ते पयो उदास। कहो नानक सुन रे मना, तह कट ब्रह्म।

और न लेत उधार, जो सुपना अर्पेख ना ऐसे जग को जान, इनमें कछ साचो नहीं नानक बिन भगवान। निस्दिन माया कारने प्राणी डोलत नीत, कोटन में नानक को नारायण जह चीत। जैसे जलते बुद बुदा उपजय बिन सह नीत, जग रचना तैसे रची कहो नानक सुन मीत। प्राणी कशु ना चेतई मद माया कै अंद, कहो नानक बिन हर भजन परत ताहे जम फंद। जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले है, कहो नानक सुन रे मना दुर्लभ मानुख दे है। माया कारण ता वही मूर्ख लोग या जान, कहो नानक बिन हर भजन बिरथा जन्म सिरान। जो प्राणी निस दिन पजै रूप राम तह जान, हर जन हर अंतर नहीं नानक साची मान। मन माया मैं फद रहयो बिसरयो गोविंद नाम, कहो नानक बिन

कहो नानक हर भजन बिन परत ताहे जम फंद। सुख मैं बहु संगी पै दुख मैं संग ना कोए। कहो नानक हर भज मना अंत सहाई होए। जन्म जन्म परमत फिरयो मिट्यो न जम को त्रास। कहो नानक हर भज मना निरपै पावै बास। जतन बहुत मैं कर रहे हो मिट्यो न मन को मान। दुर्मत स्यो नानक फदयो राख लेहो भगवान। बाल जवानी अर बिरद फुन तीन अवस्था जान। कहो नानक हर भजन बिन बिरथा सभी मान। करणो हो तो सोना कियो परयो लोभ कै फंद। नानक समयो रम गयो अब क्यों रोवत अंध। मन माया मैं रम रहे हो निकसत नाहिन मीत। नानक मूर्त चित्र ज्यों छाड़त नाहन पीत। नर चाहत कश और की और पई। चितवत रहे उठ गौर नानक फासी गल परी। जतन बहुत सुख के किए दुख को कियो ना कोए। कहो नानक सुन रे मना हर पा।

जगत पे खारी फिर तो है सबको दाता राम, कहो नानक मन सिमरत है पूर्ण हो वै काम। झूठे मान कहां करे जग सुपने ज्यों जान, इनमें कछ तेरो नहीं नानक कहो बखान। गर्व करत है देह को बिन सैशन में मीत, जह प्राणी हर जस कहो नानक तेह जग जीत। जेह कट सिमरन राम को सो नर मुक्ता जान, तेह नर हर अंतर नहीं नानक साची मान। एक भगत भगवान जह प्राणी कह नाहे मन, जैसे सुकर सुवान नानक मानो ताहे तन। स्वामी को गृह ज्यों सदा स्वान तजित नहीं नित, नानक एह बिदहर पयो एक मन होए एक चित। तीर्थ वर्त अरदान कर मन में तरै गुमान, नानक ने फल जात तह ज्यों कुंचर इशनान। सिर कंपियो पग डग मगे नैन जोत ते हीन, कहो नानक यह बिद पई तऊ नहर रसलीन। निज कर देखियो जगत में को काहू को नाहे, नानक थिर हर भगत है तह राखो मन माहे। जग रचना सब झूठ है जान लिहो रे मीत, कह नानक।

एहो मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोए, जो उपजियो सो बिरस है परों आज कै काल, नानक हर गुण गाए ले छाड़ सगल जंजाल, दोहरा बल छुटक्यो बंधन परे कशु न होत उपाय, नानक सब किश तुमरे हाथ में तुम ही होत सहाय, संग सखा सब तज गए को न निभयो साथ, कहो नानक ए बिपत मैं टेक एक रघुनाथ, नाम रहयो

राम नाम उर मैं गयो जा के सम नहीं कोए, जेह सिमरत संकट मिटे दर्श तुहारो होए। मुंदावणी महला पंजवा, थाल विच तिन वस्तु पईयो सत संतोख विचारो। अमृत नाम ठाकर का पयो जिसका सबस आधारो। जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए उधारो। एहे वस्त तजी नह जाई नित नित रख उर तारो। तम संसार चरण लगतरी है सब नानक ब्रह्म।

एक ओंकार सदगुर प्रसाद राग माला, राग एक संग पंच बरंगन, संग अलाप आठो नंदन, प्रथम राग पैरो वै करही, पंच राग नी संग उचरही, प्रथम पैर भी बेलावली, पुनिया की गावे बंगली, पुन असलेखी की पई बारी, ए पैरों की पंचो नारी, पंचम हरख दिशाख सुनावे, बंगालम मदमाद वगावे, ललत बिलावल गावही, अपनी अपनी पांत, अष्टपुत्र पैरव के गावे गायन पात्र। दुतिया माल कौसकिया लापे, संग रागनी पांचौ थापे, गोंड करी अर देव गंधारी, गंधारी सी हुती उचारी, तनासरी ए पांचौ गाई, माल राग कौसक संग लाई, मारू मस्त अंग मेवारा, परबल चंड कौसको भारा, खौ खटियो पौरा नद गाए, अष्टमाल कौसक संग लाए, पुन आयो हिंडोल, पंचनार संग अष्ट सुत, उठह तान कलोल, गायन तार मिला वही, तेलंगी देव करी आई, बसंती संदूर सुहाई, सरस अहीरी ले पार जा, संग लाई पांचो वार जा, सुरमानंद पास कर आए, चंद्रबिंब मंगलन सोहाए, सरसबान औ आहे बिनोदा, गावे सरस बसंत कमोदा, अष्टपुत्र मैं कहे सवारी, पुन आई दीपक की बारी,

उजरी संग दीपक के थाप कालंका कुंतल और अम्मा कमल कुसुम चंपक के नामा गौरा औ कानरा कल्याणा अष्टपुत्र दीपक के जाना सब मिल श्री राघव गावै पांचो संग बरंगन लावै बैरारी करनाटी तरी गवरी गावै आसावरी तेह पाछ सिंधवी आलापी श्री राग स्यो पांचो थापी सालू सारग सागरा और गोंड गंभीर अष्टपुत्र श्री राग के गोंड कुंभ हमीर खष्ट मेघ राग वै गावै पांचो संग बरंगन लावै सोरठ गोंड मलारी तुनी पुन गावै आसा गुनगुनी ऊचे सुरसू हो पुन कीनी मेघ राग स्यो पांचो चीनी बैरा तार गज तर के दारा जबली तर नट औ जल तारा पुन गावै शंकर औ श्यामा मेघ राग पुत्रन के नामा खष्ट राग उन गाए संग राग नीतीस सबै पुत्र रागन के अठारह दस बीस खष्ट राग उन गाए संग राग नीतीस सबै पुत्र रागन के अठारह दस बीस वाहे गुरु जी का खालसा वाहे

अरदास एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए फिरंगत गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नौ सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठ है शब्द खुजाए तेग बहादुर सिमर है कर नौन दयावै ताए सब थाई हुई सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज पंथ दे वाली सब थाई हुई सहाय दसा पातशाहियां के स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान करके खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। गुरु साहिब जी दे पंज प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्ते हठियां जपियां तपियां जिन्हां ने तेरा नाम जपिया वंड के छकिया देग चलाही तेग वाही देख के अंडिठ कीता तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई का ध्यान करके खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां ध्यान करके खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेसी दिते बंद बंद कटवाए चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चिराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई का ध्यान करके खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। आप जी दे गुरसिखां नूं गुरसिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिरदान नामदान श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान आप जी दे गुरसिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत पतकार आखा आप अकाल पुरख वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु नाम चितावै चितावन का सदका सर्व सुख होवै बिरद की पैज रहे पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय सत श्री अकाल पुरख जी का ध्यान करके खालसा साहिब बोलो श्री वाहिगुरु वाहिगुरु। हे महाराज श्री निरंकार ज्योति स्वरूप धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी दसा पातशाहियां के स्वरूप धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी दे हजूर ऐस वक्त अरदास बेनती है आप जी ने महान बख्शिश कीती है पातशाह जीओ आप जी दा ओट आसरा लैंदिया होया सेवक परिवार ने सहज पाठ आरंभ करवाया सी सहज पाठ दी सीडी दी सेवा कीती है सीडी बनाण दी सेवा करदिया अनेका भुल्लां होईयां होणगियां गुरु अते गुरु की संगत बख्शण योग है पाठ दा फल सेवक परिवार नूं बख्शण दी कृपालता करनी जी पाठी सिंह पासों पाठ करदिया अनेका भुल्लां होईयां होणगियां गुरु अते गुरु की संगत बख्शण योग है बख्शण दी कृपालता करनी साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी आप जी ने महान बख्शिश कीती है सहज पाठ दी निर्विघ्नता सहित समाप्ति हुई है सेवक परिवार वालों आप जी नूं सोहणे रुमाले पछाके हाजिर होए हन आप जी ने अंगीकार करने सेवकां दे पर्दे कजने सेवक परिवार नूं गुरसिखी ते नामदान दी दात बख्शिश करनी पातशाह चढ़दियां कला बख्शिश करनिया पातशाह कारोबार च बरकतां पाउणियां अंग संग सहाई होना छे पौड़ियां आनंद साहिब दा पाठ होया बाणी पढ़ी सुनी सचखंड विखे प्रवान करनी बाणी दा भाव सेवक परिवार दे हिरदियां विखे वसाउणा सेवक परिवार वालों पवित्र कड़ाह प्रसाद दी देग ते लंगर हाजिर है आप जी दर ते प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरते जो छके आप जी दा पवित्र नाम जपे सुख होवे नाम चित आवे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह दोहे

जी मान्यो प्रगट गुरा की देह, जो प्रभु को मिल बोच है खोज शब्द में ले, राज करेगा खालसा आकी रहे न कोए ख्वार हो।

0: बोले सोनिहाल सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ, सो कहो टल गुर सेवी अहनस सहज सुभाए, दर्शन परसे ऐ गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। टोडी महला पंजवां, माई मेरे मन को सुख, कोट आनंद राज सुख भुगवे, हर सिमरत बिनसे सब दुख। माई मेरे मन को सुख, कोट आनंद राज सुख भुगवे, हर सिमरत बिनसे सब दुख। रहाओ कोट जन्म के किल बिख नासे, सिमरत पावन तन मन सुख। देख स्वरूप पूर्ण भई आसा, दर्शन भेटत उत्तरी भुख। चार पदार्थ अष्ट महा सिद्ध, काम तेन पार जात हर हर रुख। नानक शरण गही सुख सागर, जन्म मरण फिर गर्भ ना दुख। चार पदार्थ अष्ट महा सिद्ध, काम तेन पार जात हर हर रुख। नानक शरण गही सुख सागर, जन्म मरण फिर गर्भ ना दुख। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: You are listening to SeekNet Radio, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.

मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मुह पखसार, असंख मोन लिवलाय तार, कुदरत कवन कहां विचार, वारिया ना जावा एक बार, जो तुद पहावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख मूर्ख अंध कोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गलबड़ हत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे, असंख मलेश मल पख खाहे, असंख निंदक